मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 30वीं तिथि तदनुसार 20 मई 2026 5:57 होने को हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं। समाचार अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये 3रा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच

क्रम थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुभारंभ कर रहे हैं अंबिका प्रसाद रचित देशगान से समूह स्वर में।

0: इस भक्ति पद के साथ ही हमारी आज की वंदना अब यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन। आलेख श्रीमती शैल शर्मा का है।
1: मनुष्य केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना, विचार और आत्मा का अद्भुत संगम है। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन, जल और विश्राम आवश्यक है, उसी प्रकार मन और आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए आत्मिक चिंतन अनिवार्य है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ रहा है, वहां आत्मा की आवाज धीमी पड़ गई है। ऐसे में आत्मिक चिंतन ही वो माध्यम है जो हमें स्वयं से पुनः जोड़ता है, हमारे जीवन को अर्थ, दिशा और संतुलन प्रदान करता है। आत्मिक चिंतन का अर्थ है अपने भीतर झांकना, अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का निरीक्षण करना। ये आत्मा से संवाद करने की प्रक्रिया है। जब मनुष्य कुछ समय अपने भीतर की शांति में बैठकर स्वयं से प्रश्न करता है, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं, तब वो आत्मिक चिंतन के मार्ग पर अग्रसर होता है। ये कोई बाहरी साधना नहीं बल्कि अंतर्यात्रा है। बाहरी दुनिया में सुख ढूंढने वाला व्यक्ति जब भीतर उतरता है, तब उसे एहसास होता है कि सुख तो उसी के भीतर था, बस धूल जमी थी इच्छाओं की, अहंकार की और मोह की। आज का मनुष्य भौतिक दृष्टि से संपन्न है, परंतु मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से अशांत है। उसके पास सब कुछ है, साधन, सुख सुविधाएं, तकनीक, पर शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं से संवाद करना बंद कर दिया है। वो अपने मोबाइल, काम और प्रतिस्पर्धा की दुनिया में इतना उलझ गया है कि अपनी आत्मा की आवाज सुन ही नहीं पाता। आत्मिक चिंतन हमें इस अंधी दौड़ से विराम देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलता या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन और सकारात्मकता है। जब हम भीतर की आंखें खोलते हैं, तब बाहरी अंधकार मिटने लगता है। आत्मिक चिंतन से मन की अशुद्धियां जैसे ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार धीरे धीरे मिटती हैं। व्यक्ति भीतर से हल्का महसूस करता है, निर्णय क्षमता में सुधार होता है। जब मन शांत होता है, तब व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है। चिंतन से विवेक जागृत होता है, जो भ्रम और आवेग को शांत करता है। जब मनुष्य स्वयं को समझ लेगा, वो दूसरों को चोट पहुंचाना बंद कर देगा। एक जागृत आत्मा हजारों आत्माओं को रोशनी दे सकती है। आत्मिक चिंतन कोई विलासिता नहीं बल्कि जीवन की आवश्यकता है। ये हमें जीवन के बाहरी तूफानों में भी स्थिर रखता है। जब मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है, तब उसका हर कर्म, हर शब्द और हर विचार प्रेम, शांति और करुणा से भर जाता है। आज समय है कि हम थोड़ी देर के लिए रुकें, भीतर झांकें और आत्मा की उस मृदु आवाज को सुने जो कहती है, मैं तुझ में ही हूं, तू मुझ में ही है। आत्मिक चिंतन से जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं बल्कि एक सुंदर अनुभव बन जाता है। यही चिंतन जीवन को सार्थक बनाता है। यही आत्मा की सच्ची पुकार है।

चिंतन अभी आपने सुना, आलेख था श्रीमती शैल शर्मा का। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 6:35 हुए हैं और ये समय है श्री रामचरित मानस गान का। 175, 175।

ऋषि वाल्मीकि ने श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को अपने आश्रम में पाकर स्वयं को धन्य माना। श्री राम ने ऋषिवर से किसी ऐसे ठौर का पता बताने का निवेदन किया जहां वे लोग कुछ समय के लिए निवास कर सकें। ऋषि के उद्गार इन शब्दों में फूट पड़े, जिनके हृदय में काम क्रोध मद मोह लोभ शोभ न हो, जो राग विराग छल कपट दंभ और माया से परे हों, हे रघुनाथ आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो पराई स्त्री को अपनी माता के समान आदर देते हों, जिन्हें पराया धन विष से भी घातक लगता है, जो दूसरों की संपत्ति देख हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति जिन्हें विशेष रूप से दुखी करती है, उनके हृदय आपके निवास के लिए उपयुक्त भवन स्वरूप हैं। इस विनय के बाद ऋषि वाल्मीकि ने चित्रकूट पर्वत को निवास के सर्वथा योग्य बताया, जहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थीं। ये ऐसा मनोरम स्थान है जहाँ तरह तरह के पशु पक्षी विचरण करते हैं, जहाँ अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया पतित पावनी गंगा की धारा ले आई थीं, जहाँ अत्रि समेत अन्य ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। हे राम, चित्रकूट को अपना निवास स्थान बनाकर उसे गौरव प्रदान कीजिए।

0: श्री रामचरित मानस गान अभी आपने सुना। आज की कड़ी में मुख्य स्वर कविता कृष्णमूर्ति का था और संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारा पशुधन इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है सतत हरे चारे हेतु नेपियर घास की खेती। जानकारी देते हुए डॉक्टर नरेंद्र लाखपाले।
1: किसान भाइयों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि चारा वाली फसलों में जो नेपियर घास है उसका हम कैसे उत्पादन कर सकते हैं। तो जैसा किसान भाई जानते हैं कि हरा चारा सीधे मानव उपयोग के इस्तेमाल में नहीं किया जा सकता, लेकिन वे प्रोटीन और वसा के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं जो कि मांस, अंडा, दूध तथा अन्य डेयरी उत्पादों जो कि पशु भेड़ बकरियों से प्राप्त होता है के माध्यम से मनुष्य तक पहुँचता है। दूध उत्पादन की कुल लागत का 60-70% भाग पशुओं के आहार के रूप में खर्च होता है, अतः चारा उत्पादन का अत्यधिक महत्व है। सभी वनस्पतिक भागों ताजा तथा संरक्षित जो पशुओं को खिला जा सके चारा कहलाता है। चारा फसलों में घास, चारा फसलें, फलियों तथा अन्य फसलों की खेती की जाती है और इनका उपयोग घास, चारा, चारागाह और साइलेज के रूप में किया जाता है। ऐसी फसलें जिनका उत्पादन चारा के रूप में पशुओं को खिलाने के लिए किया जाता है चारा वाली फसलें कहलाती हैं। हरा चारा इन फसलों को काटकर गाय, भैंस, घोड़े, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी आदि को खिलाने के लिए उपयोग किया जाता है। चारा फसलों को मुख्य रूप से अनाज वाले चारा, दलहनी चारा, चारागाह में लगाए जाने वाला चारा तथा चारे वाले पेड़ आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आज हम चर्चा करेंगे कि जो घास वाली फसल है नेपियर घास, जिसको हम चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं, उसकी खेती कैसे की जाती है इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। नेपियर घास तेजी से बढ़ने वाला तथा वर्ष में कई कटाई देने वाला बहुवर्षीय चारा फसल है। अधिक उपज, चारा गुणवत्ता तथा पाचनशीलता आदि गुणों के कारण यह किसानों के बीच में अत्यधिक लोकप्रिय है। चारा उत्पादन बरसात तथा गर्मी के महीने में प्राप्त होता है। ठंड के दिनों में इसकी वृद्धि कम हो जाती है। इसकी जड़ों को एक बार लगाकर उचित प्रबंधन द्वारा 2-3 वर्षों तक हरा चारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके चारे में शुष्क भार के आधार पर 8-9% क्रूड प्रोटीन पाई जाती है। इसके खेत की तैयारी के लिए शीघ्र बढ़वार तथा अत्यधिक उत्पादन के लिए जमीन में काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व अवशोषित करती है, अतः इसके लिए अच्छे जल निकास तथा अच्छी उर्वरकता वाली भूमि उपयुक्त होती है। भूमि की तैयारी हेतु एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2-3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर से करना चाहिए। इसकी जड़दार कल्लों या तनों के टुकड़ों द्वारा ही लगाया जाता है। सिंचित अवस्था में फरवरी मार्च तथा असिंचित अवस्था में जुलाई अगस्त में इसको रोपाई कर सकते हैं। बुआई 60-60 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। 1 हेक्टेयर के लिए 30,000-35,000 जड़दार कल्लों की आवश्यकता पड़ती है। रोपाई हेतु जड़ित कल्लों को जमीन में कुदाली द्वारा 45° के कोण पर 5 सेंटीमीटर गहरा गाड़कर मिट्टी से दबा देते हैं तथा उसके बाद एक गांठ वाली तनों को सुलाकर तथा 2 गांठ वाले तनों को 1 गांठ जमीन के अंदर तथा 1 गांठ जमीन के बाहर रखते हुए रोपाई करना चाहिए। इसको खाद और उर्वरक की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है तो 20-25 टन गोबर खाद बुआई के 25 दिन के पूर्व मृदा में मिलाना चाहिए। रोपाई के समय नत्रजन 60%, फास्फोरस 50% तथा पोटास 40% प्रत्येक कटाई के पश्चात 30 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर के प्रयोग से फसल की बढ़वार हेतु करें। इसकी निंदाई गुड़ाई हर कटाई के बाद और खाद डालने से पहले हल्की गुड़ाई करना चाहिए। रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करें। वर्षा ऋतु में आवश्यकता अनुसार तथा ठंड में 20-25 दिनों के अंतराल पर और गर्मी में 10-15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। प्रत्येक कटाई के पश्चात सिंचाई अवश्य करें। पहली कटाई बोने के रोपण करने के 60-75 दिनों बाद एवं अगली कटाई 40-50 दिनों के अंतराल में करें। वर्ष में 5-6 कटाई पर्याप्त होती है। प्रत्येक कटाई से 10-15 सेंटीमीटर ऊपर जमीन से करना चाहिए। इसकी जो उपज हमको प्राप्त होती है वो होती है 1,000-1,200 क्विंटल हरा चारा और इसके जो वो होता है पुनरुद्धार कई वर्षों तक लगातार कटाई करने पर जो मृत कल्ले हैं उनकी संख्या बढ़ते जाती है, अतः वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व मृत कल्लों को हटा देना चाहिए एवं इन्हीं पौधों को जड़ से निकालकर तथा तना निकाल कर नई जगह पर लगाया जा सकता है जो अन्य या अन्य किसानों को बेचा जा सकता है। नमस्कार।
0: सतत हरे चारे हेतु नेपियर घास की खेती, हमारा पशुधन में इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नरेंद्र लाखपाले। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में आइए अब आपको जानकारी दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स केन रात 8:30 पर और चर्चा का विषय है आज रात 9:30 पर। इन दोनों ही कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर सुनिएगा अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7:05 पर। प्रस्तुति देवव्रत भगत की होगी। श्रोता पत्रों पर केंद्रित कार्यक्रम आपके पत्र आप सुनेंगे आज सुबह 8:30 पर।

गांधी चर्चा। इस कार्यक्रम में आज सुबह 9 बजे सुनिएगा महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:45 और रात 8:15 पर कलाकार होंगे कमलेश शर्मा। इसी कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे श्वेता शेट्टी को और शाम 6:30 पर इसी कार्यक्रम में सुनिएगा नीलिमा शर्मा और साथियों की गाई कुछ रचनाएं। शास्त्रीय संगीत में आज सुबह 10 बजे और रात 10:30 पर होगा उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का गायन। ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो। ये कार्यक्रम सुनिएगा आज सुबह 11:05 पर।

0: कूपे, ये नाटक हम आपको सुनवाएंगे आज दोपहर 1:30 पर। लेखक श्री विष्णु प्रभाकर और निर्देशक होंगे श्री दीनानाथ। युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवावाणी में शाम 5:10 पर आजकल का विषय होगा उद्यमिता की ओर कदम, और होंगे क्रमपत्र मिला और यादें। चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात में होगा पत्रोत्तर कार्यक्रम चिट्ठी मिलिस, और गर्मी में पौधों में जल मांग के अनुसार सिंचाई व्यवस्था पर होगी चर्चा। साथ ही आज की सलाह में किसानों के लिए मछलियों के लाभदायक प्रजातियों का सही चुनाव, इस विषय पर सलाह देंगे बसंत सिंह, सहायक प्राध्यापक पॉलिटेक्निक मत्स्य पालन धमधा। NCERT दोपहर 12:00 और शाम 5:00 होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। चित्रपट संगीत सुनिएगा सुबह 9:15, सुबह 10:30, दोपहर 1:05, 2:00, 2:30, शाम 7:00 और रात 8:00। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने को हैं। समाचार अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। भारतं तथा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं, हरित प्रौद्योगिकीं, नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमंत्री श्री मोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक, और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विकव्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्धकला परम्परायाः उत्सवे भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्तः वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सेहरावत, बैजयंत पांडा, डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 73,80,179,000 किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्राड्गेज जालस्य पूर्णविद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, युनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रे स्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्यसर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघा परम्पराणि प्रवर्तयितुम् अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। IPL इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा समाप्त कर इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया।
4: ऑस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
3: रोम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में समझौता होने की संभावना है। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया।
5: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25-60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के AI संचालित होलोबॉक्स स्थापित किए जा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ी डोपिंग जांच में विफल रहे थे। अंकित ने 69वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान और पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। आरोपों को स्वीकार करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के प्रतिबंध की अवधि में 1 साल की कमी कर दी गई है। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश भीषण लू की चपेट में है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बांदा में तापमान लगातार 3रे दिन 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार रायपुर, मैं हूं देवव्रत भगत, लेकर आया हूं दिन की सबसे प्यारी शुरुआत नमस्कार रायपुर के साथ। दोस्तों, सुबह के वक्त रायपुर को अगर ध्यान से सुनिए ना, तो शहर केवल दिखाई नहीं देता, महसूस भी होता है और इसकी आवाज भी सुनाई देती है। वो कैसे? वो ऐसे कि सुबह होते ही रायपुर आवाजों के साथ जागने लगता है। कहीं चिड़ियों के चहचहाने की आवाज, तो कहीं मंदिर से आरती और घंटियों की आवाज, किसी गली में अखबार डालने वाली की साइकिल की घंटी बजती है, तो कहीं दूध वाले की आवाज दरवाजे तक पहुंचती है, घर की रसोई में बर्तनों की खनखनाहट सुनाई देती है, तो कहीं गैस पर चढ़ी चाय की केटली सीटी जैसी आवाज करने लगती है, और साथ में माँ की वो रोज वाली आवाज भी, जल्दी उठो देर हो जाएगी, और थोड़ी ही देर बाद दुकानों के शटर खुलने की आवाज भी आने लगती है। सड़क पर ऑटो और बाइक की आवाज बढ़ जाती है और देखते देखते पूरा शहर अपनी रफ्तार पकड़ लेता है। सुबह की यही छोटी छोटी आवाजें दरअसल जिंदगी को खूबसूरत बनाती है, और जब कोई किसी को उतने प्यार से देखे जैसे हम अपने शहर रायपुर को देखते हैं, तब बादल भी काजल लगने लगते हैं, अंबर आंचल सा महसूस होता है, और सूरज किसी बिंदिया की तरह चमकने लगती है।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: 10वीं या BSc पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था CPET रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
4: साथियों, अब वक्त है समय की उस खिड़की को खोलने का जहां कुछ यादें इतिहास बनकर आज भी हमारे साथ चल रही है। आज का दिन कई मायनों में खास रहा है। सोचिए, एक दौर ऐसा भी था जब समंदर पार जाना किसी सपने सा लगता था, लेकिन आज के ही दिन साल 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट तक की यात्रा की थी और यहीं से दुनिया के व्यापार और सफर का एक नया रास्ता खुला। आज के ही दिन दुनिया ने फैशन को की उस चीज को अपनाया जो कभी मजदूरों के कपड़े माने जाते थे और बाद में हर उम्र की पहचान बन गए। जी हाँ, साल 1873 में ब्लू जींस का पेटेंट कराया गया। वहीं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में लाल बाल पाल की मजबूत आवाज रहे बिपिन चंद्र पाल को भी आज के ही दिन देश ने खो दिया था। और साल 1995 में रूस ने मानव रहित अंतरिक्ष यान स्पेक्ट्र का सफल प्रक्षेपण कर अंतरिक्ष विज्ञान में एक और कदम आगे बढ़ाया। आज का दिन हिंदी साहित्य के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि आज के ही दिन साल 1900 में जन्म हुआ प्रकृति प्रेम और संवेदनाओं को शब्दों में पिरोने वाले महान कवि सुमित्रा नंदन पंत का। और उन्होंने कहा था कि सुंदरता देखने वाली की आंखों में नहीं, महसूस करने वाले के मन में होती है। यानी खूबसूरती केवल चेहरे में नहीं होती, वो एहसासों में भी होती है, बातों में भी और किसी के होने में भी। खैर, आज के इतिहास के बाद आपको बताते हैं एक ताजा खबर। कौन सी खबर बताएंगे नहीं, सुनाएंगे।

0: साथियों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में रायपुर में नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 सेवा का विस्तार और मोबाइल फॉरेंसिक वैन का शुभारंभ किया। इसे छत्तीसगढ़ में आपातकालीन सेवाओं और जांच व्यवस्था को आधुनिक तरीके से मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस विषय पर हमने बात की पुलिस अधीक्षक डायल 112 के गोपीचंद मेश्राम जी से। साथियों, छत्तीसगढ़ में अब आपातकालीन सहायता और अपराध जांच व्यवस्था को और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने रायपुर में अत्याधुनिक नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 सेवा और मोबाइल फॉरेंसिक वैन का शुभारंभ किया है। एक के नंबर सबोबर थीम पर आधारित इस सेवा के जरिए अब पुलिस, मेडिकल इमरजेंसी, आगजनी, सड़क दुर्घटना जैसी स्थितियों में तेजी से मदद मिलेगी। तो इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डायल 112 के पुलिस अधीक्षक श्री गोपीचंद मेश्राम जी। मेश्राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 की सेवा शुरू की गई है, आम लोगों के लिए इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या रहने वाला है?
1: ये जो सेवा है 2018 से ही प्रदेश में संचालित है
0: जी।
1: सबसे खुशखबरी की बात यह है कि पहले ये केवल 16 जिलों में संचालित था, अब ये सेवा प्रदेश के पूरे 33 जिलों में संचालित होगी।
0: बिल्कुल।
1: और ये दूसरे फेज का, जिसको हम नेक्स्ट जेन डायल 112 बोल रहे हैं
0: जी।
1: इसमें नए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। जैसे मैं बताऊं आपको कि पहले PRI लाइन्स का यूज किया जाता था, अब SIP लाइन का यूज किया जा रहा है। इससे कॉल्स की संख्या एक बार में हमारे हैंडल करने की क्षमता बढ़ी है। इसी तरीके से अब ये जो सिस्टम है इसमें लोकेशन रियल टाइम लेने के लिए 3 तरह के टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, जिससे हमको लोकेशन और प्रिसाइसली मिल जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई कॉलर यदि कहीं से कॉल कर रहा है तो हमको उसकी लोकेशन ढूंढने में अब और आसानी से मदद मिल जाएगी।
0: जी जी, मतलब मॉनिटरिंग हो पाएगी।
1: हाँ, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी इससे
0: जी जी।
1: और अब गाड़ियों की संख्या भी बढ़ चुकी है, 400 गाड़ियां पूरे प्रदेश में डायल 112 की होने से अब कवरेज एरिया भी हमारा बढ़ गया है
0: जी। सर, कई सारी नई चीजें इसमें सुनने को मिली है कि GPS सिस्टम भी है, वायरलेस रेडियो भी है, सोलर बैकअप, मोबाइल NVR, ये PTZ कैमरा, तो ये सब नई चीजें किस तरह से फायदेमंद होंगी?
1: जैसे PTZ कैमरा है, ये सभी जिलों में एक एक गाड़ियां दी गई है, मतलब 33 PTZ कैमरा है। ये अत्याधुनिक कैमरे हैं, यदि आपात स्थिति में इस तरह की गाड़ियां यदि घटना स्थल पे जाती हैं तो उस घटना स्थल का 360 डिग्री वीडियो रिकॉर्डिंग करने की इसकी क्षमता है
0: जी जी।
1: और इससे हमको घटना को और एनालाइज करने के लिए जो भी आपातकालीन सेवाओं से जुड़े हुए विभाग हैं उनको एनालाइज करने के लिए, क्विक रिस्पॉन्स करने के लिए मदद मिलेगी। इसी तरीके से ये जो सिस्टम है इसमें पहले से ही पुलिस, एम्बुलेंस और फायर की तो सर्विस थी, साथ में अब इसमें महिला संबंधी, बालकों से संबंधी, बच्चों की जो शिकायतें होती बाल हेल्पलाइन और रेलवे से रिलेटेड, NHI से रिलेटेड, यदि कोई नेशनल हाईवे से संबंधित कुछ इमरजेंसी सर्विसेज जनता चाहेंगे तो वो भी डायल 112 करके वो सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं
0: जी सर। और एक चीज इसमें ये भी देखने को मिल रही है कि पहले केवल लोग फोन कॉल करते थे, लेकिन अभी इसमें कुछ ऐप भी जोड़े गए हैं, जैसे व्हाट्सएप है, इनके और दूसरे ऐप हैं, इनके माध्यम से भी मदद ले सकेंगे। ये कितना महत्वपूर्ण बदलाव है?
1: ये जो है डायल 112 अब एक तो इंडिया 112 ऐप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है, उसमें आप लॉग इन करके भी सारी सर्विसेज ले सकते हैं। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम में हैं, हम व्हाट्सएप पे हैं, हम ईमेल के माध्यम से, ऐसे माध्यम से, मतलब जितने भी सोशल मीडिया जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है।
0: तो सर, कई बार ये शिकायत रहती थी कि समय पर मदद नहीं पहुंच पाती है, तो क्या नई व्यवस्था जो है वो इस भरोसे को मजबूत करेगी लोगों में?
1: देखिए, जब भी कोई डायल 112 में कॉल करेगा तो एक तो उसके कंप्लेंट को ऑनलाइन रजिस्टर किया जाता है और टाइम स्टैम्पिंग होती है। यदि किसी कॉलर ने 112 पे कॉल किया है, उसने यदि कोई शिकायत दर्ज कराई है, तो वो ऑनलाइन रजिस्टर होता है। ऑनलाइन रजिस्टर होने के बाद सबको डिस्पैच किया गया
0: जी
1: 112 के वाहनों में, उसका भी टाइम स्टैम्पिंग होता है। घटना जब गाड़ी पहुंचती है उसका टाइम स्टैम्पिंग होता है। पूरा डेटा, वो पूरा डेटा स्टेट सेंटर है चिप्स का, वहां पे स्टोर होता है। वो पूरा एक इवेंट का पूरा एक क्रोनोलॉजी हम मेंटेन करते हैं, तो भविष्य में कभी भी उस घटना से रिलेटेड कोई भी जानकारी यदि एनालाइज करना हम चाहें तो वो एनालिसिस के लिए हमारे पास उपलब्ध रहता है।
0: बिल्कुल। और क्या ये नई सेवा ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में भी उतनी ही प्रभावी रहेगी जितनी कि शहरी इलाकों में?
1: डायल 112 ने 2018 से लेके अब तक बहुत अच्छा काम किया है, और जिस तरीके से इसने पिछले वर्षों में काम किया है, उससे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी ये चाहे शहरी इलाके हो चाहे ग्रामीण इलाके, उसमें ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है, और गाड़ियां चूंकि अब अत्याधुनिक है तो रिस्पॉन्स टाइम में भी कमी आएगी, और घटनाओं को हैंडल करने की क्षमता पुलिस की बढ़ेगी।
0: सर, आम नागरिकों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा?
1: आम नागरिकों से यही हमारी अपील है कि डायल 112 की सेवाओं का लाभ आप अधिक से अधिक उठाएं, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की इमरजेंसी सर्विसेज को इंटीग्रेट किया गया है, और छत्तीसगढ़ शासन ये इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है कि इमरजेंसी सिचुएशंस में आम नागरिकों को हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी बेहतर सुविधा दे सकें।
0: बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू, धन्यवाद।

0: दोस्तों, प्रकृति के संतुलन और खाद्य उत्पादन में मधुमक्खियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर इसी विषय की जानकारी दे रहे हैं छत्तीसगढ़ स्टेट वाइल्डलाइफ बोर्ड के सदस्य और पर्यावरण प्रेमी मोहित साहू जी।
1: साथियों, आज विश्व मधुमक्खी दिवस है। मधुमक्खियां केवल शहद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि खेती, पर्यावरण और जैव विविधता को संतुलित करने में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि अगर मधुमक्खियों की संख्या कम होती है तो इसका सीधा असर खाद्य उत्पादन और प्रकृति पर भी पड़ सकता है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के मेंबर मोहित साहू जी। मोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
2: नमस्कार देवव्रत जी, सभी श्रोताओं का नमस्कार, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।
1: जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे सर कि आमतौर पे लोग जो हैं वो मधुमक्खियों को केवल शहद से जोड़कर देखते हैं, लेकिन पर्यावरण और खेती में उनकी भूमिका कितनी बड़ी है?
2: ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शहद तो देती है मक्खियां, सबसे ज्यादा अच्छा हमारा काम जो करती है हमारे खेतों के लिए, बाग बगीचों के लिए, फलदार पेड़ों के लिए, वो है पॉलिनेशन का, परागण की क्रिया जिसे बोलते हैं। और बिना परागण के जो है किसी भी फूल से फल नहीं बनता।
1: जी।

0: वो फल बनने की क्रिया के लिए परागण बहुत जरूरी है, और परागण का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी मधुमक्खियों के जिम्मे रहता है। दूसरे कीट पतंगे भी हैं लेकिन मधुमक्खियों का बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें।
1: जी बिल्कुल। और अभी आज के समय में मधुमक्खियों के सामने सबसे बड़े खतरे क्या हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन भी है और केमिकल खेती भी क्या इसकी वजह बन रहे हैं?
0: जी मधुमक्खियां का ये है जो हम लोग पेस्टिसाइड डालते हैं वो तो है ही है खतरा
1: जी।
0: जिनके जो हैबिटेट हम लोग नष्ट कर रहे हैं, जैसे पेड़ काटना है। और दूसरा एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि शहरों में खास करके जो हमारे मोबाइल टावर्स रहते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रहती है वो इनके इनका जो दिशा निर्धारण वाली जो इनकी क्षमता है उसको हैम्पर करती है, उसको कम करती है
1: जी जी।
0: उसको डिस्टर्ब करती है। तो ये अपने छत्ते से जब ये ढूंढने शहर ढूंढने निकलते हैं तो उसके उस स्थिति में अगर आसपास बहुत ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं तो उनका रास्ता भटकने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है और ये छत्ते के बाहर सर्वाइव नहीं कर पाती।
1: अभी
0: पतंगे तो रह लेते हैं बट ये छत्ते में अगर नहीं है तो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे।
1: छत्तीसगढ़ जैसे वन और कृषि प्रधान राज्य में मधुमक्खियों का संरक्षण कितना जरूरी हो जाता है?
0: बहुत जरूरी है, जैसा मैंने बताया पॉलिनेशन के लिए है, शहद के लिए तो है ही है
1: जी।
0: और सबसे बड़ी बात है कि हम जो वनों से जो इनका शहद का दोहन करते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के नाम पे लघु वनोपज
1: जी,
0: वो उसकी मात्रा नियंत्रित होनी चाहिए क्योंकि ये तो वहाँ जंगल में पॉलिनेशन काम करती है, साथ में ये फूड चेन भी है वहाँ के लिए। बहुत से पक्षी और दूसरे जानवर इनके शहद पर निर्भर करते हैं जो उनका बोलना चाहिए कि एनर्जी के लिए बहुत बड़ा एक उनके लिए भोजन का स्रोत है दूसरे एनिमल्स के लिए। तो वहाँ इनका एक लिमिटेड मात्रा में दोहन हो तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि वनों में इनकी उपस्थिति बहुत बहुत ज्यादा प्रासंगिक है मधुमक्खियों की।
1: तो सर क्या कोई ऐसी प्रक्रिया भी है जिससे मधुमक्खी के छत्ते को नुकसान पहुंचाए बिना ही शहद निकाल लिया जाए?
0: उसका एक तरीका है, देखिए जो हमारा एपियरी जो रहती है जिनमें मधुमक्खी पालन जो होता है
1: जी जी
0: वो एक हो सकता है रास्ता, क्योंकि उसमें क्या है कि जो नेचुरल छत्ते बनाते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते, आपकी पाली मधुमक्खियों से आपका काम चल जाता है
1: बिल्कुल।
0: और उसमें भी अलग अलग फ्लेवर के जो शहद रहता है औषधि के रूप में जो यूज होते हैं
1: जी,
0: तो आप उस प्रकार के आसपास वाले पौधे उगा लीजिए, उनके फूलों से जो शहद बनेगा वो औषधीय गुण उसमें रहते हैं
1: जी,
0: तो मधुमक्खी पालन एक अच्छा जरिया हो सकता है आएगा भी और एक मतलब इनके संरक्षण के तौर पे भी देखा जाए। तो
1: सर कई बार ये भी होता है कि लोग जो है मधुमक्खियों के छत्तों को नुकसान पहुंचा देते हैं या उन्हें खतरनाक मानते हैं, तो जागरूकता के स्तर पे भी कितनी जरूरत महसूस होती है?
0: बहुत बहुत अच्छा सवाल है, ये भी जागरूकता की बहुत जरूरत है क्योंकि बेसिक एक होता है जंगल का नियम या कोई भी जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका एक बेसिक नियम है कि वो जब तक उनको छेड़ो नहीं तब तक वो किसी को तंग नहीं करते
1: जी।
0: तो आप अनलेस आप उसको मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ेंगे या उसको किसी तरह से तंग करेंगे पत्थर मारेंगे
1: जी।
0: तो फिर वो अटैक करती है, अदरवाइज वो अपने रास्ते चलती है और किसी को तंग नहीं करती। हमारे कई बार बड़ी बिल्डिंग्स में देखा होगा आपने
1: जी जी,
0: छज्जे के बाहर बड़े बड़े छत्ते रहते हैं
1: जी जी,
0: वो जाइंट हनी भी रहती है, रॉक बी भी बोलते हैं उसको
1: जी जी,
0: एपिस अलाटा, वो ऐसी जगह पे अपने छत्ते बनाती है, सुख से रहती है, उसको ना तोड़े तो अपना छत्ते एक जगह से दूसरे जगह चेंज भी करते रहते हैं वो लोग।
1: अच्छा, कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर आम लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा?
0: मेरा संदेश यही है कि इनके संरक्षण पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए
1: जी,
0: हमारे खेतों में पेस्टिसाइड का यूज ना हो
1: जी,
0: इनके छत्तों को ना तोड़ा जाए और वनोपज जो है लघु वनोपज उसमें शहद का दोहन सीमित मात्रा में किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। आप अपना शहद तो मधुमक्खी पाल के भी अपना जरूरत पूरा कर सकते हैं और खासकर बच्चों से निवेदन है कि छत्तों से दूर रहें, खेल खेल में इसको छेड़े ना।
1: बिल्कुल मोहित साहू जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सभी श्रोताओं का, धन्यवाद, नमस्कार।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मो प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चर ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
4: कक्षा छठवीं में बेहतर शैक्षणिक माहौल और आगे बढ़ने का अवसर पाने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रवेश परीक्षा और इससे जुड़ी जानकारी दे रही हैं आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग की सहायक संचालक श्वेता कश्यप जी।
5: छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छठवीं में प्रवेश का एक अच्छा मौका है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 26 जुलाई 2026 को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी और इस विषय पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की सहायक संचालक श्वेता कश्यप जी। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
6: जी धन्यवाद।
5: हम सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये योजना है क्या।
6: जी, योजना जो है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है
5: जी,
6: जिसका मकसद अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के होनहार बच्चों की अच्छी शिक्षा है। साथ ही इसमें हमारे इस योजना के माध्यम से बेहतर स्कूली शिक्षा, अच्छे शिक्षक, साथ ही पढ़ाई का एक अच्छा माहौल दिया जाता है ताकि वहाँ पे विद्यार्थियों को प्रतियोगी वातावरण मिल पाए
5: जी जी।
6: और वे अपने भविष्य में एक बड़े मुकाम पर पहुंचे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, है ना, एक अच्छा अफसर बने, ताकि वे अपने और साथ साथ अपने समाज और गांव का नाम रोशन करें और एक मिसाल के रूप में समाज में प्रतिबिंबित हो।
5: बिल्कुल। और इस बार जो कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि बच्चे किस तरह से आवेदन कर सकते हैं और ये प्रक्रिया कितनी आसान रखी गई है।
6: जी, प्रक्रिया बहुत ही सरल है
5: जी।
6: ताकि दूर दराज में रहने वाले जो गांव के बच्चे हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। आवेदन जो है 15 मई से शुरू हो चुके हैं और इसकी अंतिम तारीख 20 जून है
5: जी जी।
6: और इसमें आवेदन जो होते हैं वो बच्चे अपने स्कूल से ही ले उसका फॉर्म और जमा भी कर सकते हैं। साथ ही हमारी जो विभागीय कार्यालय है वहाँ से भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ पे भी आवेदन जमा कर सकते हैं।
5: बिल्कुल। और इसकी जो प्रवेश परीक्षा है वो कब और कैसे आयोजित की जाएगी।
6: जी, प्रवेश परीक्षा 26 जुलाई 2026 को दिन रविवार के दिन आयोजित की जाएगी जिसका समय है दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक
5: जी जी। इसमें किस तरह से क्या जानकारी जो है वो मांगी जाएगी इस परीक्षा में।
6: बच्चों के जैसे बुनियादी ही जैसे पेपर का पैटर्न जो है
5: जी जी वही,
6: वो इसमें जो भी बच्चे सामान्य ज्ञान से जानकारी होगी, सामान्य समझ ही रहती है बच्चों की
5: जी जी।
6: किसी भी विषय पे उससे संबंधित जानकारी रहेगी और कोशिश की जाएगी
5: जी
6: कि
5: जी।
6: बच्चों को एक व्यवहारिक पैटर्न पे परीक्षा ली जाए
5: जी। बिल्कुल। और अक्सर कई बार ये देखा जाता है मैम कि गांव में कई बार ऐसा होता है कि प्रतिभाशाली बच्चों को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए योजना कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
6: जी देखिए कि हमारे यहाँ तो अधिकांश बच्चे ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों के बच्चे हैं
5: जी जी।
6: और ये बच्चे इतने अधिक प्रतिभाशाली होते हैं कि यदि हमें इन्हें एक बेहतर माहौल दे दे, एक बेहतर संसाधन दे दे, तो ये एक नए मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस योजना के माध्यम से अधिक बच्चे इस प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले, एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे माहौल और एक प्रतियोगी वातावरण में आए, ग्रामीण क्षेत्र से उठकर इस प्रतियोगी वातावरण में रहे ताकि वो अपने आत्मविश्वास बढ़ाएं, साथ ही बड़े पैमाने पर बच्चे इसमें अपनी सफलता हासिल करें।
5: बिल्कुल। और जो छात्र हैं या उनके अभिभावक हैं वो आवेदन करते समय कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखें।
6: जी, आवेदन करते समय सबसे जरूरी है कि जो हम फॉर्म भर रहे हैं वो साफ सुथरा हो, स्पष्ट लिखावट हो, साथ ही वो जो निर्धारित समय है 15 मई से लेकर 20 जून उस अवधि पे ही फॉर्म जमा कर दे, उससे पहले ही कर दे ताकि किसी भी प्रकार की उनकी एडमिशन या परीक्षा को लेके दुविधा ना हो या उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े।
5: और अगर इसमें ज्यादा जानकारी चाहिए तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं छात्र और अभिभावक?
6: जी, इसमें विद्यार्थी या अभिभावक चाहे तो हमारी जो ट्राइबल डिपार्टमेंट की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है tribal.cg.government.in, इसमें अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। वहाँ हर प्रकार की वहाँ पे जानकारी दी गई है।
5: बिल्कुल। और जैसे इस योजना में किसी बच्चे का चयन होता है तो उसके बाद उनको किस तरह का शैक्षणिक जो माहौल है वो मिलता है?
6: सबसे पहले तो बच्चों की शिक्षा के लिए जरूरी है कि उन्हें एक अनुकूल वातावरण मिले, उनका पढ़ाई का पैटर्न अच्छा हो, साथ ही उनके शिक्षक अच्छे हो, साथ ही उनमें अनुशासन रहे, एक प्रतियोगी माहौल क्रिएट हो।
5: जी।
6: तो हमारे यहाँ इस योजना के माध्यम से अलग अलग स्कूलों में इस प्रकार की जो बुनियादी जरूरतें हैं उसको पूरा करके बच्चों को एक बेहतर माहौल दिया जाता है।
5: बिल्कुल। और उन अभिभावकों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, खासकर उन परिवारों के लिए जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं?
6: जी, मैं यही बोलना चाहूंगी सभी अभिभावकों को कि बच्चों की पढ़ाई सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
5: जी, जी।
6: आगे यही बच्चे हमारी एक पीढ़ी बनेंगे, हमारे एक भविष्य हैं।
5: जी।
6: तो सभी अभिभावकों से निवेदन है कि अधिक से अधिक बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करवाएं, बच्चे फॉर्म भरे, एक बेहतर उनको मार्गदर्शन और माहौल मिले, एक ग्रामीण परिवेश से आगे बढ़कर एक शहरी क्षेत्र में जो शिक्षा, उच्च गुणवत्ता की जो शिक्षा दी जाती है,
5: जी,
6: उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करें, उसमें पढ़े और आगे अपने भविष्य को सुरक्षित।

0: श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं। साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, हमें मोबाइल के उपयोग के समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इस संबंध में बता रहे हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से एडिशनल DCP क्राइम रायपुर।
1: कुछ प्रमुख साइबर फ्रॉड के तरीकों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे प्रमुख तरीका में से एक है फेक वेबसाइट स्कैम। इसमें ठग असली वेबसाइट की तरह दिखने वाले हूबहू नकली वेबसाइट बना लेते हैं। इनका URL ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही दिखाई देता है, जैसे flipkart.com की जगह लिखा रहेगा flipkart.offers.in। इस प्रकार के वेबसाइट में बहुत कम कीमत में सामान बिक्री करने के लिए उपलब्ध होता है, या किसी बहुत फेमस होटल्स के ओरिजिनल वेबसाइट की तरह नकली साइट तैयार की जाती है और सस्ते दर पर रूम की बुकिंग होने का ऑफर दिया जाता है। जैसे ही आप ऐसे फर्जी वेबसाइट पर कोई सामान लेते हैं या होटल्स के रूम को बुक करते हैं और आप पेमेंट करते हैं, आपके साथ ठगी हो जाता है। आपके निजी बैंकिंग संबंधी जानकारियाँ भी चोरी होती है। आप सतर्क और जागरूक रहें, हमेशा आधिकारिक एप्लीकेशन या सुरक्षित साइट पर ही जाकर शॉपिंग करें या किसी होटल्स की रूम की बुकिंग करें। फिर भी किसी प्रकार की ठगी होती है तो आप 1930 पर कॉल कर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। साथियों,

हूँ, हम समय समय पर आपको साइबर क्राइम से जुड़ी जानकारियां इसलिए देते रहते हैं ताकि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें और डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही कभी कभी बड़ी परेशानी बन जाती है। इसलिए अनजान लिंक, फर्जी कॉल और लालच भरे मैसेज से बचिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और अपनों को भी सतर्क रहिए। और सुनिए नमस्कार रायपुर का ये अंतिम गीत।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं, समाचार प्रभात अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज की दृष्टि

0: @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
3: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
4: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
5: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
6: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है।

0: यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोक सत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur.

0: आपके पत्र के सभी श्रोताओं को दीपक
1: और अनुभा का
0: नमस्कार। अनुभा जी, देखिए मौसम है तो गर्मी का
1: जी,
0: लेकिन गर्मी के मौसम में भी कभी कभी बारिश हो जाती है, बादल गरजते हैं, मौसम खराब हो जाता है। मौसम के तेवर चाहे जो भी हो, हमारे श्रोताओं के पत्र निर्बाध रूप से हम तक पहुंच जाते हैं। तो ये पहला पोस्टकार्ड आपके हाथ में किसका है?
1: ये पहला पोस्टकार्ड है अमरपुर पेंड्रा से रेखा देवी और श्वेता देवी श्रीवास्तव का। लिखते हैं, 1 मई को प्रसारित इनसे मिलिए कार्यक्रम में हमारे छत्तीसगढ़ के नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा जी से दीपक हटवार की गई बातचीत शिक्षाप्रद लगी। श्री मिश्रा जी कलेक्टर के साथ साथ कई बड़े बड़े विभागों में भी काम किए। इन्होंने अपने कार्यों का अनुभव साझा किया, बहुत बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी केंद्र को साधुवाद।
0: प्रदेश के विभिन्न विभागों में पदस्थ रहते हुए जिन्होंने संपूर्ण जीवन जन सेवा को समर्पित किया, वे आज सेवानिवृत्ति के बाद भी प्रदेश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग को अपना दिशा निर्देश दे रहे हैं। श्री गणेश शंकर मिश्रा जी से ली गई ये भेंट वार्ता हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी लगी और उनके अनुभवों से हमें भी बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। इस पत्र के लिए आपको धन्यवाद।
1: शीतलानगर से शिवचंद्राकर लिखते हैं, जीवन एक कर्म खेती है, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेगा। जिंदगी कांटों का सफर है और हौसला फूल है। धैर्य साहस उम्मीद के साथ सुख दुख का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यही तो सुखद जीवन का मूल आधार है और संघर्ष ही जीवन जीने की कला है। कला ही इंसान को कलाकार बना देती है। जैसे लक्ष्य रखेंगे वैसे लक्षण स्वतः आएंगे। जीवन क्या है, इस पर केंद्रित 6 मई का प्रसारित चिंतन सफलता का राज खोल दिया। सुंदर आलेख हेतु AK चौहान और आलेख को पढ़ने हेतु दीपक हटवार जी, आप दोनों को हार्दिक बधाई।
0: चिंतन में जीवन से जुड़ी सारगर्भित बातें निहित होती हैं अनुभा जी,
1: जी।
0: और हमारे श्रोता प्रतिदिन सुबह सुबह इस चिंतन को बहुत ही ध्यान लगाकर सुनते हैं, उन विचारों को आत्मसात कर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत के लिए हमारा चिंतन आपके जीवन में कितना महत्व रखता है, आपके पत्र से पता चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दतरंगी से विश्राम और पार्वती यदु लिखते हैं, 7 मई के लोकसुर कार्यक्रम में लोक सुरों से पुराने गीतों का समावेश बेहद पसंद आया। स्वर गजानन तिवारी और गंगाबाई गेडाम के थे। दोनों कलाकारों का गायन मन को मोह लिया। आकाशवाणी रायपुर को दिल से धन्यवाद।
0: छत्तीसगढ़ी संगीत के समंदर में कुछ मोती ऐसे हैं अनुभा जी, जिनकी चमक आज भी हमें उनकी मधुरता का एहसास कराती है। और ऐसे कलाकारों की आवाज जब भी आकाशवाणी के माध्यम से जन जन के घरों में गूंजती है, तो हमें छत्तीसगढ़ी संगीत के सुनहरे दौर की याद आने लगती है, जब ऐसे कलाकार बहुत सक्रिय हुआ करते थे। कार्यक्रम को आपने गौर से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश और सचिन वर्मा लिखते हैं, 9 मई को कार्यक्रम बातों बातों में सुना। जनगणना निर्देशक श्री गोयल जी से जनगणना संबंधित अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई। श्री गोयल जी और आकाशवाणी का हार्दिक आभार।
0: जनगणना का महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ हो चुका है और समय समय पर इससे संबंधित जानकारी आकाशवाणी के माध्यम से हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं अनुभा जी, ताकि इस महत्वपूर्ण कार्य में सभी का भरपूर सहयोग मिले और ये कार्य अपने समय पर लक्ष्य के साथ पूर्ण हो। पत्र के लिए धन्यवाद।
1: बेमेदरा से सुरेश और पूर्णिमा सारथी लिखते हैं, 8 मई शुक्रवार की सुबह की पावन बेला में नमस्कार रायपुर का आगाज हुआ। अपनी मधुर वाणी और अनेकों सुविचारों के साथ सीमा शर्मा जी के द्वारा पुराने गीतों को प्रसारित करते हुए विभिन्न प्रकार की जानकारी हमें दी। दोपहर 12:30 पर राजकुमार जी के द्वारा सुर सिंगार की सुंदर प्रस्तुति रही। आकाशवाणी 90 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। आकाशवाणी हमारे जीवन की सच्चाई और कीर्तिमान को बयां करता है। आकाशवाणी ही एक ऐसा जरिया है जहां से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हमारे दायित्व को आकाशवाणी ही दर्शाती है। हमारे खान पान रहन सहन सही गलत का उचित मार्ग देता है आकाशवाणी, जिससे हमारे जीवन में बहुत से सकारात्मक बदलाव होते हैं। इन सभी बातों के लिए आकाशवाणी को हार्दिक बधाई।
0: आकाशवाणी से जुड़ी हुई आपकी दिनचर्या हमें बताती है कि आपके सुबह की शुरुआत नमस्कार रायपुर से होती है। ये शुरुआत आपके जीवन में नई उमंग, नई खुशियां लेकर आती है और यही खुशियां हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। पत्र के लिए धन्यवाद
1: दीपक जी। पोस्ट कार्ड्स के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं ईमेल।
0: ये पहला ईमेल किसका है?
1: ये पहला ईमेल है रायपुर से रतन जैन और कोकिला जैन का। ये लिखते हैं, परिचर्चा अतीत की धरोहर और उसका संरक्षण जिम्मेदारी किसकी। 11 मई को सुनने को मिली। प्रतिभागी थे राहुल सिंह, पुरातत्वविद रमेश नैयर, प्रभाकर चौबे वरिष्ठ पत्रकार और हसन खान। सभी प्रबुद्ध जनों ने एक मत से अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ये प्राचीन अनमोल धरोहर हमारी संस्कृति है, हमारा गौरव है। यदि हम अपनी धरोहरों और स्मारकों को संरक्षित नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। एक उत्कृष्ट और सारगर्भित परिचर्चा में अपनी सहभागिता निभाने के लिए सभी प्रबुद्ध जनों को साधुवाद।
0: छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक पुरातत्व स्थलों की भूमि है अनुभा जी, और इस भूमि में हमें हमारे अतीत ने बहुत सारे उपहार दिए हैं और इन उपहारों को सहेज कर रखना आज की पीढ़ी की जिम्मेदारी है। और छत्तीसगढ़ के विभिन्न पर्यटन स्थल ऐसे हैं और दर्शनीय स्थल ऐसे हैं जहां पर ऐसे स्मारकों का मिलना आज की पीढ़ी के लिए अपने अतीत को बहुत नज़दीक से देखने का एक सुअवसर है और इसे देखने के साथ साथ अपने ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ इसके संरक्षण और संवर्धन की भी हम सब की जिम्मेदारी का एहसास इस परिचर्चा ने कराया, जिसे आपने गौर से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बघेरा दुर्ग से बीएल वैष्णव लिखते हैं, 10 मई को देश की वाणी आकाशवाणी के अंतर्गत पूर्व सहायक निदेशक श्री विश्वास केलकर जी से दीपक हटवार जी ने आकाशवाणी में उनकी जीवन यात्रा को उनसे बातचीत कर हम श्रोताओं तक पहुंचाया। केलकर जी ने संगीत के माध्यम से अपनी यात्रा यूपीएससी से सेवा की शुरुआत की। केलकर जी ने उस पल को भी याद किया, एक गीत की रचना को, गीत के बोल थे आओ आशा के दीप जलाएं। अपने यादगार पलों में उन्होंने इंदौर के सबसे बड़े यादगार पलों को भी याद किया और उन्होंने भोपाल आकाशवाणी से सेवानिवृत्त होकर सबसे अच्छी बात ये कही कि आकाशवाणी में मेरा सेवा देना मेरा अहोभाग्य था। सबके लिए उन्होंने ईश्वर, माता पिता, गुरु दोस्तों को भी याद किया। उनके अच्छे जीवन सेवा काल को हम श्रोताओं तक पहुंचाए उसके लिए श्री विश्वास केलकर जी, दीपक हटवार जी और आकाशवाणी को बहुत बहुत बधाई।
0: देश की वाणी आकाशवाणी का ये बहुत लंबा सफर जो है वो अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है अनुभा जी, और इस सफर के इस महत्वपूर्ण अंक में विश्वास केलकर जी ने आकाशवाणी में बिताए अपने सुनहरे दिनों को याद किया और उनकी स्मृतियों में आकाशवाणी रायपुर का भी एक कालखंड रहा है अनुभा जी, और आकाशवाणी रायपुर में खासकर संगीत के क्षेत्र में उन्होंने जो योगदान दिया है उनके वे गीत हम आज भी सुनते हैं। इस पत्र के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं।
1: अगला मेल सुझावी है दीपक जी, इसे लिखा है लुका उपाली छतवन जिला बलौदा बाजार से पुनीत राम सूर्यवंशी और निर्मला सिंह ने। ये लिखते हैं, कुछ कार्यक्रमों के कार्यक्रम धुन बदल दिए गए हैं, जैसे चौपाल, घर आंगन आदि। वो धुन हम लोगों को अच्छी नहीं लगती। हम लोगों का सुझाव है कि फिर से पुराने वाले कार्यक्रम की धुनों को बजाया जाए।
0: अनुभा जी, दरअसल जो पुरानी धुने थी ना, उसकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी में काफी अंतर आ गया था और वो स्पष्टता उसकी कम हो गई थी। यही कारण है कि उन धुनों को उसी धुन में हमने फिर से बनाया है। साज थोड़े से जरूर आपको अलग लगते हैं लेकिन ट्यून वही है, और ये जो नई धुन है इसमें पूरी आपको स्पष्ट डिजिटल क्वालिटी मिल रही होगी, तो उस क्वालिटी का ध्यान रखकर इसे बनाया गया है।
1: जी। गंडई टिकरी पारा से दीपक कुमार देवांगन, जयश्री देवांगन लिखते हैं, पारिवारिक धारावाहिक अजी सुनिए, लेखिका प्रमदा ठाकुर, प्रस्तुतकर्ता समीर शुक्ल, प्रतिभागी संजय पांडे, श्याम वर्मा, सुमिता रॉय बर्मन, आप तीनों की भूमिका बहुत पसंद आई। पति पत्नी की नोक झोंक अच्छी लगी, फिर रमेश की एंट्री भी बहुत अच्छी लगी। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए प्रतिभागी व लेखिका सभी को हार्दिक बधाई।
0: पारिवारिक धारावाहिक अजी सुनिए आज भी हमारे श्रोता उतनी ही लगन के साथ सुनते हैं और उनकी सुबह इसे सुनते सुनते खुशनुमा हो जाती है, तो थोड़ा हंसना और थोड़ा मुस्कुराना भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप यूं ही मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कर ही भदर से पुरुषोत्तम निर्मलकर और शारदा निर्मलकर लिखते हैं। 12 मई के बिहनिया 8:30 बजे छत्तीसगढ़ी साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम मोर भुइया में छत्तीसगढ़ के जयंती यादव जिले नेमीचंद साहू जी के गोठ बात क्रम हमर संस्कृति हमर कलाकार मां सुने बर मिलिस जिला सुन के मन प्रफुल्लित होगिस हावे। अतिक सुंदर गोठ बात ला जयंती यादव जी संग साहू जिला तहे दिल ले धन्यवाद। लोकगीत के हर सुरमा नारी के कहानी है, सुख दुख के हर रंग मा रंगे ऐसन उखर जिनगानी है, घर के सिंगार उही है, ममता करुणा दया के निशानी है। छत्तीसगढ़ के माटी मा नारी अमर कहानी है, प्रकृति और नारी दोनों एक दूसर के पूरक आए। प्रकृति जिहां पूरा चराचर जीव जगत के सृजन गाड़ी आए, उही नारी जन्म देवैया महतारी आए। प्रकृति बिना जिंदगी नहीं चले, उसने नारी बिना परिवार के अस्तित्व नहीं है। मनभावन प्रस्तुति पर आकाशवाणी रायपुर व टीम ला अंतसले बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है नानघाट काटल बोर्ड से भाग सिंह भाग्यश्री राजपूत का, कनेरी से सनत कुमार यादव, गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर और कचरीबाई देवांगन का।
0: नारी की महिमा का गुणगान करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायिका जयंती यादव जी से नेमीचंद साहू जी ने जो 3 भागों में बातचीत की है अनुभा जी, उसकी समीक्षा में देखिए कितने सारे पत्र अभी भी आ रहे हैं।
1: हाँ।
0: और जयंती यादव जी ने इस लंबी बातचीत के माध्यम से उन दिनों में उनके साथ जो जो सांगीतिक घटनाएं घटी हैं और जिन जिन कलाकारों के साथ उन्होंने प्रस्तुतियां दी हैं, काम किया है, बहुत ही विस्तार से उन्होंने और बड़े स्वाभाविक ढंग से बताया अनुभा जी, वाकई उसे सुनकर हमारे श्रोताओं को बहुत आनंद आया। आपके पत्र से हमें पता चल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: केसिंगा ओडिशा से सुरेश अग्रवाल लिखते हैं, आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में गांधी चर्चा मेरे पसंदीदा कार्यक्रमों में एक अन्यतम कार्यक्रम है, क्योंकि गांधी जी और उनके उपदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए सदैव प्रासंगिक और प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। 13 मई को गांधी चर्चा के तहत मेरे समकालीन में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विचार और सुमति सीताराम सुनकर मन प्रफुल्लित हो उठा। धन्यवाद।
0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से गांधी जी के जीवन काल में जो बहुत ही प्रेरक घटनाएं घटी थी अनुभा जी, देश की आजादी के लिए उनके विचार आज भी प्रासंगिक है, खासकर अहिंसा को लेकर। तो गांधी चर्चा के माध्यम से प्रेरक विचारों से हमारे श्रोताओं का जीवन भी लाभान्वित होता रहेगा, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
1: घटारानी अंचल फुलझर से योगेश्वर साहू डोमेश्वरी साहू लिखते हैं, 13 मई की सुबह आपके पत्र कार्यक्रम लेकर आए श्री दीपक हटवार और सीमा शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत पोस्ट कार्ड से की गई। आपके पत्र कार्यक्रम का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि श्रोताओं के विचार जानने और सुनने को मिलते हैं। सुझावी पत्रों से कार्यक्रम में निखार आता है। इस दिन की प्रस्तुति बेहद अच्छी लगी। धन्यवाद।
0: भाई देखिए, आपके पत्र कार्यक्रम में श्रोता केवल किसी कार्यक्रम की तारीफ ही नहीं भेजते अनुभा
1: जी,
0: बल्कि समीक्षा में कुछ ऐसे विचार भी हम तक प्रेषित करते हैं जिन्हें पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगता है, और इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे श्रोता कितना अच्छा लिखते हैं। तो इस पत्र के लिए आपको धन्यवाद।
1: धरसीमा से छेदूलाल यादव सीता यादव लिखते हैं, 14 मई को प्रगति के सोपान कार्यक्रम में लखपति दीदी भारत सरकार द्वारा महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए चलाए जा रही योजना के बारे में प्रस्तुतकर्ता रमाशंकर जी ने विस्तार से जानकारी दी कि किस तरह महिलाएं समूह बनाकर अपने स्वयं के व्यवसाय को आगे बढ़ा सकती हैं, जिसमें एक महिला समूह के रमाशंकर जी ने भेंट कर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि एक छोटे से किराना दुकान को पहले छोटे छोटे समूह के माध्यम से कर्ज प्राप्त कर आज बड़े व्यवसाय कर रही हैं और समाज सेवा के साथ अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रही हैं। ये कार्यक्रम ये संदेश देता है, सरकार द्वारा चलाए जा रहे लखपति दीदी योजना का लाभ उठाएं और स्वावलंबी बने। उपयोगी जानकारी हेतु रमाशंकर जी को बहुत बहुत बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है भिलाई से उत्तम सिंह और मोरस जंघेल का।
0: नारी शक्ति की प्रगति की कहानी बयां कर रहा है आपका ये पत्र, जो हमें बताता है कि अब हमारे गांव-गांव में भी महिलाएं आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है और खासकर अपने पैरों पर खड़े होकर स्वावलंबन के साथ लोगों को एक नई राह दिखा रही हैं। इन पत्रों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा लिखते हैं, जीवन में सफलता का रहस्य आने वाले अवसर के लिए तैयार रहना है। 15 मई को नवा बिहान में श्री रूप नारायण सिन्हा से योग से रोग एवं नशा मुक्ति श्री नेमीचंद साहू जी की भेंटवार्ता में सुनने को मिली, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रही। सफल प्रस्तुति के लिए धन्यवाद।
0: उपयोगी ये भेंटवार्ता सभी के लिए थी अनुभा जी, और अगर हम अपने जीवन में योग को अपना लें, अपने दैनिक जीवन का अंग इसे बना लें, तो वाकई बहुत से रोग अपने आप हमसे कोसों दूर हो जाएंगे। तो योग हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पत्र के लिए आपको धन्यवाद।
1: ग्राम पंचायत बठेना पाटन से बलकरण वर्मा और ज्योति वर्मा लिखते हैं, 16 मई को कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में डॉक्टर सुनील दास से

0: भेंट वार्ता सुनी। भेंट करता थे रमाशंकर जी। डॉक्टर दास राष्ट्रीय आयुष मिशन में संयुक्त संचालक स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ शासन में बहुत ही अच्छा अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। उद्देश्य घटक पद्धति में योगदान विषय पर बहुत ही विस्तार पूर्वक जानकारी दी, जो हमें ज्ञानवर्धक लगी। सफल जानकारी के लिए हार्दिक बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये ईमेल है। सोमनी राजनांदगांव से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, रायपुर से भारती और वरुण राठौर का।
1: डॉक्टर की सलाह के हर अंक में स्वास्थ्य वर्धक जानकारियां होती हैं, ताकि हमारे श्रोता अपने जीवन की सबसे अनमोल जो दौलत है वो है हमारा शरीर, और अपने शरीर के प्रति हमें सदैव सजग रहना चाहिए। यही सीख डॉक्टर की सलाह के हर अंक से हमें मिलती है, जिसे आप गौर से सुन रहे हैं। पत्र के लिए धन्यवाद।
0: बिनौरी फिंगेश्वर से टीकम राम साहू और हेमलता साहू लिखते हैं, 16 मई को उरांव जनजाति के बारे में सुनिन लखनलाल भौर्य और तपन बैनर्जी के साथ आकाशवाणी ला बहुत बहुत बधाई।
1: कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं अनुभा जी, जिनका पुनः प्रसारण भी हमारे श्रोताओं के ज्ञान में काफी वृद्धि करता है, और वैसी ये श्रृंखला है जिसे हमारे श्रोता सुन रहे हैं। पत्र के लिए धन्यवाद।
0: लक्ष्मी नारायण यदु ग्राम मर्रा कोना नानघाट से लिखते हैं, मैं विगत 40 वर्षों से आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण सुन रहा हूं। ये पत्र पहली बार लिख रहा हूं। सभी कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आते हैं। अभी जनगणना कार्य के दौरान जनगणना कर्मी मेरे घर आए थे, उनके 34 सवालों के कॉलम में रेडियो उपयोग का सवाल भी था, जिसके उत्तर में मैंने परंपरागत रेडियो सेट बताया। फिर वे लोग मेरा रेडियो सेट देखकर हतप्रभ रह गए और कहने लगे, पूरे गांव में एक अकेला रेडियो सुनता है। ये पल मुझे गौरवान्वित कर गया। दरअसल आकाशवाणी रायपुर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि गंभीर स्वास्थ्य समस्या के दौरान बिस्तर के पास रखा ये रेडियो ही मनोरंजन का एकमात्र सहारा रहा है। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं और सुबह वंदना से लेकर अंतिम सभा तक कार्यक्रम सुनता हूं, जिसमें नमस्कार रायपुर, सभी फरमाइशी कार्यक्रम, युववाणी, मोर भुइया, बिंदिया, घर आंगन, चौपाल, समाचार आदि सभी कार्यक्रम मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान का प्रसार भी करते हैं। आकाशवाणी रायपुर का बहुत बहुत धन्यवाद, और बेहतरीन प्रस्तुतिकरण के लिए सभी सम्माननीय प्रस्तुतकर्ताओं को हार्दिक बधाई।
1: अनुभा जी, देखिए कितने सारे लोग हैं जिनके जीवन में रेडियो का कितना महत्वपूर्ण स्थान है।
0: जी हाँ,
1: है ना। और रेडियो रूपी ये साथी आज भी उनका साथ निभा रहा है, और बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में, शहरों में, गांव में आज भी हमारे बहुत सारे श्रोता रेडियो से अपने सुबह की शुरुआत करते हैं, और रेडियो से ही उनके पूरे दिन का समापन होता है। तो आप आकाशवाणी के कार्यक्रमों से यूं ही जुड़े रहें, और आपके हर दिन को हम विविध कार्यक्रमों के साथ, नवीनता के साथ, नई उमंग और नए उत्साह के साथ सजाते रहेंगे। पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वैभव जैन चिराग जैन रायपुर से लिखते हैं, बातों बातों में 16 मई को सुना। विषय था गर्मी के मौसम में लू से पीड़ित के लक्षण, सावधानी और बचाव। पहुना थे डॉक्टर विमल किशोर रॉय, भेंट करता थे राहुल सिन्हा, प्रस्तुति विकल्प शुक्ला की थी। डॉक्टर साहब ने बताया कि लू से बचने के लिए दोपहर में घर से बाहर ना निकलें, ताजे भोजन का सेवन करें। एक उपयोगी और महत्वपूर्ण बातचीत के लिए रायपुर आकाशवाणी को साधुवाद।
1: देखिए, इन दिनों गर्मी का मौसम है और लू से बचना सभी के लिए बहुत जरूरी है अनुभा जी।
0: जी हाँ।
1: और लू से बचने के लिए उपाय समय समय पर बताए जाते हैं, जिनका पालन यदि हम करें तो अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। पत्र के लिए धन्यवाद।
0: गांव तेंदु भाटा मगरलोड से पोषण कुमार निषाद और शिवा निषाद लिखते हैं, 16 मई शनिवार को चिंतन कार्यक्रम सुना। आलेख निशा रहटगांवकर का था, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही हमारे जीवन में खुशी और दुख के भी दो पहलू हैं। यदि हमारे जीवन में दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए, सामने वाले के दुख को देखना चाहिए। हमसे बदतर जीवन भी लोग जी रहे हैं, इसलिए जीवन में दुख से घबराना नहीं चाहिए। जैसे भी हो दुख कट जाता है, और कई लोग तो हमसे भी कई ज्यादा दुखी हैं। अच्छे चिंतन के लिए वाचक दीपक हटवार जी को हृदय से धन्यवाद।
1: देखिए, इन्होंने चिंतन में कही गई बातों का सार लिखकर भेजा अनुभा जी, और वाकई चिंतन हमें दुख की घड़ी में भी हिम्मत के साथ खड़े रहकर जीवन का सामना करने की प्रेरणा देता है, जिसको आपने आत्मसात करने की बात कही है। पत्र के लिए धन्यवाद।
0: चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह और अनुभव सिंह लिखते हैं, 17 मई को कानून की बात के तहत जेलों में निरुद्ध विचाराधीन दंडित व्यक्ति

0: और दंडित व्यक्ति के विचार अधिकार अधिवक्ता सौरभ शेंद्रे जी से कानूनी मुद्दे पर अत्यंत महत्वपूर्ण रोचक जानकारी सुनने को मिली। ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
1: कानून की बात के हर अंक में हमारे श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी होती है, उपयोगी जानकारी होती है अनुभा जी, जिसे सुनकर वे अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं। तो यूं ही आप हमारे प्रसारणों से जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पीडब्ल्यूडी कॉलोनी बालोद से सनत यादव लिखते हैं, आकाशवाणी रायपुर द्वारा सुबह की सभा में प्रादेशिक समाचार प्रसारण प्रारंभ किया जाना एक अत्यंत सराहनीय पहल है। इससे प्रदेश के श्रोताओं को स्थानीय और महत्वपूर्ण समाचार सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, किंतु वर्तमान में सुबह 9:55 पर निर्धारित समाचार प्रसारण का समय अधिकांश श्रोताओं के लिए सुविधाजनक प्रतीत नहीं होता। प्रातःकालीन समय में लोग दैनिक कार्यों की तैयारी के दौरान समाचार सुनना अधिक पसंद करते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि सुबह प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार का समय परिवर्तित कर प्रातः 7:05 पर किया जाए। साथ ही यदि दोपहर 1:10 पर भी प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा तो श्रोताओं को एक निश्चित अंतराल के बाद पुनः समाचार सुनने का अवसर प्राप्त होगा। इससे समाचारों की पहुंच और उपयोगिता दोनों में वृद्धि होगी और अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकेंगे। आशा है मेरे इस सुझाव पर सकारात्मक विचार किया जाएगा।
1: इस तरह के सुझाव पहले भी आए हैं अनुभा जी, फिलहाल आपके इस सुझाव को नोट कर हम समाचार अनुभाग तक पहुँचा देंगे।
0: गंडई पंडरिया से रविंद्र रौनक सेन लिखते हैं, मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव सुख और दुख आते जाते रहते हैं। धूप और छांव की तरह से जीवन में आगे बढ़ने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने का सफर तय करते रहना चाहिए। सफलता हासिल जरूर होगी और ऐसे में हमें घबराना नहीं चाहिए। विगत कई वर्षों बाद आकाशवाणी रायपुर में अपनी सेवा दे रहे कार्यक्रम अधिकारी आदरणीय समीर शुक्ल जी के सुमधुर आवाज देश की वाणी आकाशवाणी कार्यक्रम में 17 तारीख दिन रविवार को नमस्कार रायपुर कार्यक्रम के अंतर्गत ये सुनने को मिली। हमें वो पुराने दिन आज भी याद हैं जब समीर शुक्ल भैया जी नमस्कार रायपुर कार्यक्रम, फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ कार्यक्रम को आनंदमय प्रस्तुति से संवारा करते थे। कार्यक्रम को सुनकर दिल आनंदित हो गया, जिसे सुनने के लिए हम लोग अपने रेडियो के पास बैठकर दिल से आनंद लिया करते थे। समीर शुक्ल जी ने अपने जीवन की अमूल्य बातों को बड़े ही सुंदर विस्तार पूर्वक हम सब श्रोताओं तक कार्यक्रम के माध्यम से साझा किए, दिल गदगद हो गया। समीर शुक्ल जी ने काफी लंबे अंतराल तक अपना सेवा भाव आकाशवाणी रायपुर को दिया, जो वाकई काबिले तारीफ रहा, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष योगदान दीपक हटवार जी का भी रहा। बड़ा ही सुंदर भावपूर्वक प्रस्तुति कार्यक्रम को सुनकर दिल आनंदित हो गया। ऐसे सुंदर मनभावन शानदार प्रस्तुति के लिए दीपक हटवार जी और समीर शुक्ल जी के साथ साथ समस्त आकाशवाणी रायपुर परिवार को दिल से धन्यवाद प्रेषित करते हैं। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है, मगरलोड से उमेद कुमार देविका निषाद का, पिपरिया से कमलकांत दीपा रिमझिम गुप्ता, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक के आर साहू, दुर्ग से भवानी शंकर वर्मा और भाटापारा से बचकमल और मोतीलाल यादव का।
1: देश की वाणी आकाशवाणी के इस बार के अंक में आकाशवाणी के पूर्व कार्यक्रम अधिशासी समीर शुक्ल जी ने अपने बहुत सारे अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए अनुभा जी, और इनमें उनके द्वारा निर्मित पुरस्कृत कार्यक्रमों का भी उन्होंने जिक्र किया जिन्हें आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार मिले थे
0: जी।
1: तो ऐसे व्यक्तित्व से जब मुलाकात होती है तो वाकई पुराने दिनों की यादें ताज़ा भी होती हैं और हमारा हृदय भी गौरव से परिपूर्ण हो जाता है। इन सभी पत्रों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: लोरमी ग्राम करुहा नार से गोमती रजक और काजल रजक लिखते हैं, 12 मई के छत्तीसगढ़ी फरमाइशी कार्यक्रम आप मन के गीत कार्यक्रम में हमर मयारू दीदी सीमा शर्मा जी श्रोता संगवारी मन ले भेजे गए ई मेल पाती और नाव शामिल कर हमर पसंद के बहुत सुघर सुघर गीत सुनाइन, जेखर मनमोहक प्रस्तुति पर आकाशवाणी परिवार ला हमर कोरी कोरी बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है, धमतरी से रामचंद माखीजा सविता माखीजा, नेवई उतई से विक्की और उर्वशी देवांगन का। लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी और प्रमिला मरावी लिखते हैं, 13 मई के ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो कार्यक्रम में संगवारी मनले भेजे गए ई मेल औनाव शामिल कर हमर पसंद के बहुत सुघर सुघर गीत सुनाइन, जेखर मनमोहक प्रस्तुति पर सुषमा मिश्रा और आकाशवाणी परिवार ला अंतसले मया भरे बधाई। ग्राम भड़गा कोदवा गुड़ान से श्याम सिंह मरावी राजकुमारी मरावी लिखते हैं, 16 मई के फिल्मी फरमाइशी कार्यक्रम आपके मीत ये गीत में श्रोताओं के द्वारा भेजे गए ईमेल और अधिक से अधिक नाम को शामिल कर हमारी पसंद के खूबसूरत गीत सुनवाए गए, जिसकी लाजवाब प्रस्तुति के लिए तारकेश्वरी जी और आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है समडिल नवापारा से मुकेश और दीपक गुप्ता का। कोई ग्राम भंगीटोला से ननकाराम धुर्वे और जामुनबाई धुर्वे लिखते हैं, 14 मई के ईमेल भेजें, फिल्म संगीत सुने कार्यक्रम में श्रोताओं के द्वारा भेजे गए ईमेल और अधिक से अधिक नाम को शामिल कर बेहतरीन गीत सुनवाए गए, लाजवाब प्रस्तुति के लिए सौम्या रिजवी और आकाशवाणी परिवार को बहुत धन्यवाद। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है पोटिया कलादुर्ग से संजय सुजाता साहू, टेकापार बालोद से चिंताराम रवि प्रकाश यादव, फुलझर घटारानी से यामिनी और मुस्कान साहू और गणेश धाम परसोली से जितेंद्र दास और मिलव दास मानिकपुरी का। बाजारवाड़ महासमुंद से भीष्मदास नर्मदा हिरमनी लिखते हैं, हम सभी का पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो में बहुत सुंदर गीत और अधिक से अधिक ईमेल शामिल किए गए, मन गदगद हो गया, धन्यवाद। हजदा नंबर 2 से कमलेश साहू और जितेंद्र साहू लिखते हैं, 18 मई को हमारा पसंदीदा कार्यक्रम फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो सुनने को मिला, जिसे प्रस्तुत किया तारकेश्वरी आसुदानी जी ने, श्रोताओं से बातचीत की और उनकी पसंद के गीत सुनाए जो हमें बहुत अच्छा लगा, शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई।
1: भाई देखिए, हमारे इतने सारे फरमाइशी कार्यक्रम हैं और इतने सारे फरमाइशी कार्यक्रमों में इतने सारे श्रोताओं की फरमाइश आती है, वो तो अपनी जगह है, इन फरमाइशी कार्यक्रमों की तारीफ में भी इतने सारे मेल आते हैं अनुभा जी, तो इससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे ये सभी श्रोता कितना ध्यान लगाकर फरमाइशी कार्यक्रमों का इंतजार करते हैं, रेडियो के करीब आ जाते हैं और आपकी और हमारी समीपता के प्रतीक हैं ये इतने सारे ईमेल जो हमें प्राप्त हुए हैं, तो हमारे फरमाइशी कार्यक्रमों के प्रति आपके इस स्नेह का हृदय से स्वागत करते हुए इन सभी पत्रों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब घड़ी का इशारा है कि ईमेल आईडी हम बता दें, raiapkepatra1@gmail.com। पोस्टकार्ड भेजने के लिए पता है कार्यक्रम आपके पत्र द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97 आकाशवाणी रायपुर पिन कोड 492001। तो अगले बुधवार आपके पत्रों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, अनुमति दीजिए दीपक
0: और अनुभा को, नमस्कार।

आपके पत्र श्रोता पत्रों पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 305.8 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजने को हैं, अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं, गांधी चर्चा। इस कार्यक्रम में सुनिए महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ।

0: श्रोताओं, गांधी चर्चा में आज सुनिए जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड के दोषी जनरल डायर के बारे में गांधी जी के विचार।
1: आर्मी काउंसिल ने जनरल डायर को समझ की भूल का दोषी ठहराया और परामर्श दिया कि उसे सरकारी सेना में कहीं नौकरी ना मिले। मिस्टर मॉन्टेगू ने भी जनरल डायर के आचरण की कड़ी आलोचना करने में कोई बात उठा नहीं रखी। इस पर भी किसी कारणवश मुझे ये कहे बिना रहा नहीं जाता कि जनरल डायर ही सबसे बड़ा अपराधी नहीं है, उसकी बर्बरता स्पष्ट है। आर्मी काउंसिल के सामने जनरल डायर ने अपने बचाव की जो बातें कही हैं उनमें से हर एक में उसकी महानीच तथा असैनिक कायरता के चिन्ह पाए जाते हैं। निहत्थे स्त्री पुरुष और बच्चों को जो खेल तमाशा तथा छुट्टी मनाने का ही काम जानते थे उसने बागी सेना बताया है। जनरल डायर ने इसलिए अपने को पंजाब का रक्षक बताया है कि उसने घिरे हुए आदमियों को खरहों की तरह गोलियों से मार डाला। ऐसा मनुष्य योद्धा कहलाने की योग्य नहीं है, उसके कार्य में कोई वीरता नहीं पाई जाती, उसने कोई जोखिम नहीं उठाई। बिना छेड़छाड़ के और बिना सूचना दिए ही उसने गोलियां चलाईं, ये समझ की भूल नहीं है। कल्पित विपद के सामने ये उसकी थरथराहट है। इससे बहुत बुरी अयोग्यता तथा कठोर हृदयता ही प्रकट होती है। किंतु जनरल डायर पर जो खर्च किया गया है वह बहुत करके बेमार्ग हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि जनरल डायर की गोलीबारी भयंकर थी। उसकी करतूत से जितने निर्दोष आदमी मरे वह घटना भी बड़ी शोकजनक थी। किंतु पीछे धीरे धीरे जो अत्याचार, जो बेइज्जती और जो धरपकड़ हुई वह बहुत बुरी और आत्मा का नाश करने वाली थी। और जिन अफसरों ने ये कार्य किया उन्हें जलियांवाला बाग में हत्याएं करने वाले जनरल डायर की अपेक्षा अधिक दोषी समझना चाहिए। जनरल डायर ने तो थोड़े से आदमियों को ही मार डाला, पर इसके बाद अत्याचार करने वाले अफसरों ने राष्ट्र के प्राण हर लिए। कर्नल फ्रैंक जॉनसन बड़ा भारी अपराधी है, पर कौन आदमी इसका नाम लेता है? इसने निर्दोष लाहौर में आतंक फैला दिया और अपनी निष्ठुर आज्ञा से फौजी कानून के समस्त अफसरों को कड़ी कार्रवाई करने को बाध्य किया। किंतु मुझे इस जॉनसन पर भी उतना कहना नहीं है। पंजाब तथा भारत के समस्त मनुष्यों का पहला कर्तव्य है कि वे जनरल ओब्रायन, मिस्टर वासमर्थ स्मिथ, रॉय श्रीराम तथा मिस्टर मलिक खां को नौकरी से निकाल बाहर कराएं। ये भी अभी तक सरकारी नौकरी में बने हैं। इनका दोष वैसा ही सिद्ध हुआ है जैसा जनरल डायर पर सिद्ध किया गया है। यदि हम संतुष्ट होकर पंजाब के शासन को अन्य अत्याचारियों से परिष्कृत करना भूल जाएं, तो हम अपने कर्तव्य में चूक जाएंगे। ये केवल मंच पर से व्याख्यान देने या प्रस्ताव पास करने से नहीं होगा। यदि हम सरकारी कर्मचारियों पर प्रभाव डालकर उन्हें ये दिखाना चाहें कि वह प्रजा के मालिक नहीं बल्कि रक्षक और नौकर हैं, जो बुरा आचरण करने पर अपने पद पर रह नहीं सकते, तो हमें खूब कड़े उपाय का अवलंबन करना चाहिए।

गांधी चर्चा में आप सुन रहे थे जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड के दोषी जनरल डायर के बारे में गांधी जी के विचार। श्रोताओं, अगले अंक में हम आपको सुनवाएंगे जोसेफ डोक के बारे में गांधी जी के विचार।

0: गांधी चर्चा। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ। वाचक स्वर प्रकाश उदय और रमाशंकर के थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। शब्द रचना हसरत जयपुरी की, धुन शंकर जयकिशन की है और फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर।

राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत गीत सुनिए, सलील चौधरी के संगीत से सजा हुआ। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की, और फिल्म का नाम है छाया।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दी
1: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: हमसाया फिल्म का गीत सुनिए, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत हसरत जयपुरी का है और संगीत है OP नैयर का।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: याद

0: बहुत कुछ कहने को मन करता है।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर। सुनिए

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन।

0: समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज़ में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। संगीत ओपी नैयर का ही है और फिल्म का नाम है मेरे सनम।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी की रचना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म का नाम है जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। इसी कार्यक्रम में कुछ और गीत हम आपको सुनवाएंगे 10:30 से। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:40 हुए हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं कमलेश शर्मा।

से भी मुलायम है मेरे गीत, लेकिन तू

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया, शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
2: कमलेश शर्मा के स्वर में सुनिए ये गजल।

0: सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे कमलेश शर्मा की आवाज में गजलें। इसी कार्यक्रम में कुछ और रचनाएं हम आपको सुनवाएंगे। कलाकार होंगे कमलेश शर्मा। रात 8:15 पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। 9:55 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य।

और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में लगने वाला स्थानीय शुल्क बढ़ाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, जैविक खेती की आवश्यकता पर बल दिया। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में स्थानीय शुल्क बढ़ाने का आदेश जारी किया है। ये नई दरें सरकारी स्कूलों के साथ साथ स्वामी आत्मानंद स्कूलों और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में भी लागू होंगी। जारी आदेश के अनुसार हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों का स्थानीय शुल्क अब 410 रूपये से बढ़ाकर 500 रूपये कर दिया गया है। वहीं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को अब 445 रूपये की जगह 550 रूपये शुल्क देना होगा। विभाग के अनुसार नई शुल्क दरें आगामी शिक्षा सत्र से लागू की जाएंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आगामी नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया गया। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर जोर देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए और उन्हें खत्म किया जाए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए जैविक खेती पर अधिक जोर देने की आवश्यकता पर बल दिया।

0: चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने सब्सिडी वाले उर्वरकों के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी और राज्यों से नकली और घटिया गुणवत्ता वाले उर्वरकों के आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में विभिन्न केमिस्ट संगठनों ने आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसके चलते छत्तीसगढ़ में करीब 18,000 मेडिकल स्टोर आज संभवतः बंद रहेंगे। इनमें थोक और फुटकर दोनों तरह की दुकानें शामिल हैं। विभिन्न जिलों में प्रशासन ने आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए मेडिकल स्टोर्स की आपातकालीन संपर्क सूची जारी की है। इसके साथ ही जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों, धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर और रेडक्रॉस संचालित मेडिकल स्टोरों को भी आवश्यक सेवाओं के लिए खुला रखने की सहमति दी गई है। प्रशासन ने बताया कि आपातकालीन स्थिति में सरकारी अस्पतालों, जन औषधि केंद्रों, धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स और अन्य औषधि केंद्रों से दवाइयां प्राप्त की जा सकती हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास वृद्धि होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका पूर्वी उत्तर प्रदेश से मणिपुर तक बनी हुई है, वहीं एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा भी विस्तारित है। इसके असर से प्रदेश में गर्मी के बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म लहर चलने की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 के आदर्श उत्तर जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी किसी प्रश्न या उसके आदर्श उत्तर पर अपने दावा आपत्ति 25 मई तक माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय रायपुर में जमा करा सकते हैं। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र राजनांदगांव द्वारा आज सुबह 10 बजे से अंबागढ़ चौकी तहसील कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और दुर्ग में 22 मई को जिला स्तरीय रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में लगने वाला स्थानीय शुल्क बढ़ाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, जैविक खेती की आवश्यकता पर बल दिया और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं सुमिरन तेरो करूं अल्लाह, और द्रुत 3 ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं तुम दाता दयानी।

चित्रपट संगीत में लीजिए अब सुनिए गुलशन बावरा का लिखा गीत, किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। संगीत राहुल देव बर्मन का है और फिल्म का नाम है खेल खेल में।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। एक सूचना सुनिए, आगामी शुक्रवार 22 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा खेती किसानी के समय किसानों को होने वाले चर्म रोग एवं सावधानियां। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मृत्युंजय सिंह, चर्म रोग विशेषज्ञ रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 22 मई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही संध्या 7:30 से किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई और इस सूचना के बाद आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। संगीत राजेश रोशन का है और फिल्म का नाम है दूसरा।

0: यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए, प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक। महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया, मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया, डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
2: जोशीला फिल्म का गीत सुनिए, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत साहिर लुधियानवी का है और संगीत है राहुल देव परमन का।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। संगीत बासु मनोहारी का है और फिल्म का नाम है सबसे बड़ा रुपया।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को हैं, समाचार अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक

0: गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोने के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
2: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी। नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे से बंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान का संचालन रोक दिया गया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए, ईमेल भेजो, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ, ये कार्यक्रम।

कार्यक्रम सुनैया जम्मो श्रोता संगवारी मनला आज के कार्यक्रम ले अनुभा अग्रवाल के मयाले भरे राम राम।

त आवो संगी हो कार्यक्रम ला शुरू करथन अउ देखथन पहली गीत पर हमला कोन कोन संगवारी मन ईमेल पठोइन हे। ए हमर संगवारी मन हे ग्राम धरदेई सरगांव ले चंदूलाल पटवा, सुनीता हर्ष कुमार पटवा, सहसपुर पेडारा कांपा ले राम कुमार सत्यम अउ राम किशन साहू, पलारी रोहासी ले डगेसर राम अउ फूलबती साहू, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर ले हैं छन्नूलाल पुष्पलता अर्पिता अभिनव बलदाऊ, बाजारपारा बेमेतरा ले भरतलाल लव कुमार अउ लकी सिन्हा, धमतरी ले हैं रामचंद माखीजा, काफिर भाई सविता स्वाति माखीजा, ग्रामनेवई उतैले विक्की उर्वशी जतिन जयंत औ कुनिका देवांगन, टेकापार बालोद ले चिंताराम औ रवि प्रकाश यादव, धुर्रा बांधा भाटापारा ले हैं प्रमोद देवकुमार नवीन औ युवराज साहू, गंडई टिकरीपारा ले जागेश्वर कचरीबाई दीपक कुमार जयश्री देवांगन, मदनपुर ले हैं श्रवण कुमार साहू योगेश औ राहुल साहू औ कमल बिहार रायपुर ले हैं रतन जैन कोकिला जैन औ वैभव जैन। आप सब सुनना चाहत हो चंदाराम साहू और झुमुकलाल देवांगन के गाए ये गीत ला।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सहसपुर लोरमिले छोटकू साहू मोहितराम लोकेश औसतीबाई साहू शहीद नगर खमतराई रायपुर ले हैं हीरा साहू पोटियाकला दुर्गले संजय सुजाता साहू भीमखोज तरपोंगी ले संतोष हितेश होमेश लक्ष्मी प्रतिभा गुप्ता नरगोड़ा छत्तीसगढ़ ले हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी जोगेशपुरी ट्विंकल मीनाक्षी गोस्वामी सिवनी खुर्द रेंगाखार ले मनशाराम पटेल बुधियाबाई भानुप्रताप पायल पटेल ग्राम फुलझर घटारानी गरियाबंद ले योगेश्वर डुमेश्वरी यामी मुस्कान हर्षिता साहू भूत कछार लोरमी ले हैं दुर्गेश मरकाम निर्मला दीपक मरकाम रोहासी पलारी ले श्याम लाला रामदास युवराज साहू अवामा खोड़ा रेंगाखार ले देवी सिंह नेताम राजेंद्र सिंह दक्ष प्रिया अवगीत सरगम नेताम। आप सब सुनना चाहत हो गजानन कन्नौजे और साथी मन के गाए ये गीतला।

गंगाबाई गेटाम और साथी मन के गाए गीत ला सुने पर हमला फरमाइश पठोइन हैं। जवाहरनगर दुर्गले आरसी कामड़े, करुणा और विपुल कामड़े, अड़ार नानघाटले राहुल गोपी वर्मा, बागबहरा भदरसीले हैं पन्नालाल सेन, खुशबू तारा कौशल सेन, पीपरपारा पालचुआ मुंगेलीले, उत्तरा परमेश्वरी भानुप्रिया योगिता दिवाकर, ग्राम पंचायत भदरसीले हैं घनाराम सेन, दीपेश गीतेश और निर्मला सेन, ग्राम खोंगला उदयपुर सरगुजा ले हैं जीवधन सिंह पैकरा, धुरनी करिश्मा कलेश्वर सिंह पैकरा, रिंगनीले दिनेश वर्मा करुणा वर्मा, ग्राम नेवई उतैले विक्की उर्वशी जतिन जयंती कुणिका देवांगन और टेका पार बालोद ले हैं चिंताराम यादव और रवि प्रकाश यादव। तो लेवा सुनाओ अपन पसंद माँ ये गीतला।

कार्यक्रम के अगला गीतला सुने पर हमला फरमाइशी ईमेल पठोइन हैं। दुर्गले सुनीता सुमन डमरू यादव, बिलाईगढ़ले रोशन कौशल्या, हेमलता उडिम्पल दिवांगन, रामबन बघेराले योगेश सारवा, आशा सारवा, पलारीले नीलू संजू ओम वैभव अवनिधि देवांगन, भाटापाराले हैं दानसिंह रावत दानू, पद्मिनी नीरज शुभम सौरभ रावत, धरसिंहवाले छेदूलाल यादव, सीता अर्चना और अरुणा यादव। आप सब सुनना चाहत हो गोरेलाल बर्मन रतन सबीहा और साथी मन के गाए ये गीतला।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र ले आप मन इस समय सुनत हो कार्यक्रम। ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।

कार्यक्रम के अगला गीत ला गावत हैं पूनम सारथी औ गोवर्धन सिन्हा औ फरमाइश हमर ये श्रोता मन के है हटौत बाजार लाहौद ले कमलनाथ पटेल राकेश कुमार समीर औ राजकुमारी पटेल भाटापारा ले बजकमल मोतीलाल यादव औ डॉक्टर बसंत भृगु पथरिया भरेवा ले चंदूलाल नारायणी नोमेश नेहा औवान्या सिंगरौल कोरासी भैंसा ले हैं पवन कुमार साहू क्रांति देवी औ पंकज सुष्मिता साहू पटेल नगर मलोटले डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी गगनदीप आरजू गुड्डू जाजोरिया बलौदा ले हैं दिलहरण गौतम अंजलि आनंद औ समृद्धि पटेल ग्राम तेंदुभाटा मगरलोड जिला धमतरी ले उमेद कुमार निषाद देविका पोषण औ नूतन सुरेंद्र सहसपुर मेघापारा ले छोटकू मोहित राम लोकेश रामकिशन औ दुलीचंद साहू कांकेर संबलपुर ले हैं फागुराम यादव ज्योति ओजस्वी यादव और चिरमिरी कुरासिया कालरी ले हैं इंद्रभान सिंह अनुभव सिंह ऋषभ सिंह और राम सहोदर।

ग्राम सलोनी घुमका ले हैं देवचरण साहू, हेमा साहू। ग्राम मड़ौदा जालबांधा ले पारखदास साहू, किरण साहू। ग्राम पथरिया धमधा ले शेष नारायण और पिंटू साहू। ग्राम नागर कोहरा राजनांदगांव ले झग्गर राम, जामुन देवी, समीक्षा और आराध्या साहू। यहीं ले हैं प्रेम, पूजा, दुष्यंत और प्रांजल साहू। डबरापारा सौंगा मगरलोड ले कोमल, तोषण, विनायक सेन। कोड़ापार अभनपुर ले नारायण सेन, पंकज कुमार सेन। ग्राम बोगाटोला मोहला मानपुर ले मालिकराम, सविता देवी सिन्हा, तारामती और मुनिंद कुमार सिन्हा। हसदा नंबर दो ले लक्ष्मी साहू, गीतांजलि, आकांक्षा साहू। ग्राम सहा मालगी ले सुखनंदन चंद्रवंशी, शिवरानी, आकाश चंद्रवंशी और प्रतिभा चंद्रवंशी। मालियान सरघना मेरठ ले हैं अनिल जैन, संयम मुस्कान और जिव्यम जैन। आप सब सुनना चाहत हो गौकरण सिंह लोधी और साथी मन के गाए ये गीतला।

0: फिरतराम साहू और किरण मरकाम के गाए गीत ला सुने बर आप मन हमला फरमाइशी ईमेल पठोए हो। ग्राम पंचायत घोंदला उदयपुर ले जीवधन सिंह पैकरा, धुरनी करिश्मा कलेश्वर सोमार साय पैकरा, बठेना पाटन ले बलकरण वर्मा सुजान वर्मा, लोरमी ग्राम चचेड़ी ले जगदीश सिंह मरावी, सावित्री चमन अमन और सुमित मरावी, ग्राम सिवनी खुर्द रेंगा खार ले हैं तातू राम पाल के, मथुराबाई हेमंत औ चंद्रहास पाल के, बाबा कुटी उफरा पाटन ले यमुना हेमलता तुलसी औ गोपी साहू, संतोषी नगर रायपुर ले हैं रोशन गोपाल आकाश औ साक्षी ठाकुर, भरदाकला साजा ले रोम कुमार साहू किरण साहू, जूट मिल रायगढ़ ले तुलसी सोनम मोहन रेशमा सोहन बगाड़िया, यवतमाल विदर्भ ले संतोष खड़से विनोद खड़से, आमा खुड़रा रेंगाखार ले हैं देवी सिंह नेताम और राजेंद्र सिंह नेताम।
1: मधुरा मना

दलेश्वर साहू और सुनीता आचार्य के गाय गीत ला सुने पर फरमाइश पठोइन है। रवेली फिंगेश्वर ले राम अवतार वर्मा, सौरभ और चंचल यादव, गोवर्धन रोड मथुरा ले हैं अनुश्री सूर्या, यामिनी और ज्योति सूर्या, ठेठवार पारा कनेरी ले सनत कुमार यादव, मड़ौदा जालबांधा ले दिलीप दास साहू, कौशल साहू, यहीं ले हैं सुहद्राबाई और माधुरी साहू, ग्राम उदान दनिया गंडई ले राम बिलास जंघेल, शांतिबाई तुषार कुमार और साहिल कुमार जंघेल, ग्राम सर महासमुंद ले बलराम सेन, इंदु सेन, खमार मुड़ा ले सतीश गिरी गोस्वामी, श्रेयांश गिरी गोस्वामी, ग्राम बठेना पाटन ले अंजलि और ज्योति वर्मा, सौंगा मगरलोड ले फनेश कुमार चंदन और सावित्री देवी चंदन। तो ले वो सुनाओ अपन पसंद मा ये गीत ला।

ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। ये कार्यक्रम अभी आप मन सुनत रहे हो। ये कार्यक्रम में गीत ला जोड़े रहीन वीर भान साहू। अब होवा थे हमर जाए के बेरा, तो विदा दो अपन संगवारी अनुभा अग्रवाल ला और छोंको हमर मयाले भरे राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में लगने वाला स्थानीय शुल्क बढ़ाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, जैविक खेती की आवश्यकता पर बल दिया। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में स्थानीय शुल्क बढ़ाने का आदेश जारी किया है। ये नई दरें सरकारी स्कूलों के साथ साथ स्वामी आत्मानंद स्कूलों और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में भी लागू होंगी। जारी आदेश के अनुसार हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों का स्थानीय शुल्क अब 410 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। वहीं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को अब 445 रुपये की जगह 550 रुपये शुल्क देना होगा। विभाग के अनुसार नई शुल्क दरें आगामी शिक्षा सत्र से लागू की जाएंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए जैविक खेती पर अधिक जोर देने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने सब्सिडी वाले उर्वरकों के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी और राज्यों से नकली और घटिया गुणवत्ता वाले उर्वरकों आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में विभिन्न केमिस्ट संगठनों ने आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसके चलते छत्तीसगढ़ में करीब 18,000 मेडिकल स्टोर आज संभवतः बंद रहेंगे। इनमें थोक और फुटकर दोनों तरह की दुकानें शामिल हैं। विभिन्न जिलों में प्रशासन ने आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए मेडिकल स्टोर की आपातकालीन संपर्क सूची जारी की है। इसके साथ ही जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों, धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर और रेडक्रॉस संचालित मेडिकल स्टोरों को भी आवश्यक सेवाओं के लिए खुला रखने की सहमति दी गई है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र विद्यार्थी 20 जून तक अपने विद्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत चयन के लिए 26 जुलाई को लिखित परीक्षा आयोजित होगी। ये योजना अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास वृद्धि होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका पूर्वी उत्तर प्रदेश से मणिपुर तक बनी हुई है। वहीं एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा भी विस्तारित है। इसके असर से प्रदेश में गर्मी बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म लहर चलने की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 के आदर्श उत्तर जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी किसी प्रश्न या उसके आदर्श उत्तर पर अपने दावा आपत्ति 25 मई तक माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय रायपुर में जमा कर सकते हैं। और दुर्ग में 22 मई को जिला स्तरीय रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जाएगा। ये आयोजन छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में लगने वाला स्थानीय शुल्क बढ़ाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, जैविक खेती की आवश्यकता पर बल दिया। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सरायपाली केंद्र है। ये प्रसारण आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
0: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अकरम आसमा फकीर।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
0: तो विमलेश जी, अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी, श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
0: जी जरूर श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
2: जी,
0: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
2: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
0: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
2: जी,
0: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में।
2: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलम्बिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
0: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
2: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है, जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
0: और आपने श्रोताओं, एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है, जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
2: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है, जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
0: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
2: जी,
0: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
2: जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षा वन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है। इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
2: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
0: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेजन नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
2: जी, तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी अमेजन वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं।
0: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
2: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जाँच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जाँच लेना चाहिए।
3: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
4: Hello children.
5: Hello ma'am.
6: Hello ma'am.
4: Hello, hello. How are you all?
5: We are fine ma'am.
7: I am fine ma'am.
8: How are you ma'am?
4: I am good. Thank you so much Vanya. All right. So children, today I am going to share something with you. Are you ready?
5: Yes, ma'am.
7: Yes, ma'am.
4: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
5: Yes, ma'am.
8: Pets are so lovely.
4: Right, Soham.
9: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
4: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
9: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
4: Wow, that's good. And what about you, Navya?
10: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
4: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
11: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
4: Oh, that's so exciting, isn't it?
5: Yes, ma'am.
4: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
5: Yes, ma'am.
4: Can you name some birds?
7: Sparrow.
4: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
8: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
4: Yes, peacock is a colorful bird.
11: Ma'am, parrot.
4: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
12: Any guesses?
4: Okay, I'll give you a clue. It calls... Absolutely right. Children, I remember a lovely story of a crow. Would you like to listen?
5: Yes, ma'am.
8: It will be fun.
4: So, I'll narrate the poem. Repeat after me. There once was a crow. He was black.
5: As you know.
4: How to be beautiful. He wanted to know. Colorful feathers. He wanted to grow. He found one peacock feather. He stuck it. In his tail. Then he found another. He picked up. All without fail. He stuck them. In his wings. Put one on his head. I am now beautiful. He danced and said. The other crows
6: laughed at him.
13: Oh, what a fool you are!
6: You are beautiful in black.
13: We love you.
4: So children, now listen to the same poem in a lovely song.
6: Okay.

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो दीदी
1: दीदी
0: अरे राजू स्कूल से आ गए तुम।
1: हाँ दीदी।
0: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
1: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
0: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
1: दीदी वो तो मैंने।
0: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
1: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
0: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
1: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
0: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
1: भोजन और पानी?
0: हाँ राजू। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ।
1: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
0: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: हाँ अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, लाइए खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: लो मालिक काका, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिक काका, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद मालिक काका।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा
2: जी। दे
0: चलिए दादाजी।

0: सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
0: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
4: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
3: हाँ दीदी,
4: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
3: दीदी ये तो बहुत ही गलत काम है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT अभी आप सुन रही थी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों का प्रसारण। 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं श्वेता शेट्टी। कार्यक्रम में पहले सुनिए श्वेता शेट्टी की आवाज में ये गीत, जिसे लिखा है शशिकांत मिश्रा ने।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं श्वेता शेट्टी को। एल्बम का नाम है साजना। अगला गीत सुनिए श्वेता शेट्टी की आवाज में, लिखा है यशपाल ने।

श्वेता शेट्टी की आवाज में अभी आपने सुना यशपाल तंवर का लिखा गीत। आइए अब सुनिए सुगम संगीत के इस कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति। श्वेता शेट्टी की आवाज में गीतकार हैं शशिकांत मिश्रा।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं श्वेता शेट्टी, एल्बम है साजना। सुनिए अगली प्रस्तुति जिसे लिखा है शशिकांत मिश्रा ने।

यशवंत तंवर का लिखा गीत अभी आपने सुना श्वेता शेट्टी की आवाज में। इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति सुनिए श्वेता शेट्टी की आवाज में, रचना शब्बीर अहमद की है।

0: सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी आपने सुना। कलाकार थी श्वेता शेट्टी। ये आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों का प्रसारण है। 1 बजने को है समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन क्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए सोनू निगम और साथियों की आवाजों में, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत अनु मलिक का है, फिल्म का नाम है मुझे कुछ कहना है।

0: Akashwani at 90.
1: चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए शाहिद माल्या की आवाज में इरशाद कामिल का लिखा गीत। फिल्म मौसम के इस गीत की धुन प्रीतम ने बनाई है।

शाहिद माल्या की आवाज़ में ये था फिल्म मौसम का गीत। गीत लिखा था इरशाद कामिल ने, संगीत प्रीतम का था। आइए अब सुने रब्बा मैं क्या करूं। इस फिल्म का गीत राज पंडित, विधि शर्मा और बेनी दयाल की आवाजों में। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत सलीम सुलेमान का है।

चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम के आखिर में लीजिए अब सुनिए लखविंदर वडालिया और नीति मोहन की आवाजों में फिल्म कोई जाने ना का ये गीत, जिसे लिखा है मनोज मुंतशिर और श्याम दीवाना ने, संगीत रोचक कोहली और विक्रम नेगी का है।

चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम विवरण का।

कार्यक्रम विवरण में आइए अब आपको बताएं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है और रात 8:30 पर सुनिएगा स्पोर्ट्स स्कैन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कूपे ये नाटक सुनिएगा अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1:30 पर। इस नाटक के लेखक हैं श्री विष्णु प्रभाकर और निर्देशक होंगे श्री दीनानाथ। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ होगा शाम 5:10 पर। युवाओं का कार्यक्रम युववाणी सुनिएगा हिंदी में। इसमें आजकल में बातचीत का विषय होगा उद्यमिता की ओर कदम। साथ ही सुनिएगा क्रम पत्र मिला और यादें भी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आप सुनेंगे नीलिमा शर्मा और साथियों को। सुगम संगीत के ही कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे कमलेश शर्मा। चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात में पत्रोत्तर क्रम चिट्ठी मिलिस और होगी चर्चा गर्मी में पौधों में जलमांग के अनुसार सिंचाई व्यवस्था। क्रम आज की सलाह में जानकारी का विषय होगा किसानों के लिए मछलियों की लाभदायक प्रजातियों का सही चुनाव। जानकारी देंगे बसंत सिंह सहायक प्राध्यापक पॉलिटेक्निक मत्स्य पालन धमधा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का गाया राग बिहाग में ख्याल। चित्रपट संगीत आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर शाम 7:00 रात 8:00 9:15 पर और रात 10:00 भी।

श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बता दें, आज रात 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन और रात 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे शाम 6:30 पर नीलिमा शर्मा और साथी, और रात 8:15 पर कमलेश शर्मा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का गाया राग बिहाग में ख्याल।

0: कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है नाटक कूपे। लेखक हैं श्री विष्णु प्रभाकर और निर्देशक हैं श्री दीनानाथ।
1: ये है मेरा कूपे। जूडिथ का प्रोग्राम अचानक बदल गया। मैं उसका टिकट वापस करने जा रहा था। आपको आपत्ति न हो तो?
2: मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके साथ तो 10 दिन तक साधना केंद्र में रही हूँ। एक अजनबी आदमी के साथ सफर करना मुझे बुरा नहीं लगता।
1: कूपे में भी?
2: क्यों, कूपे में क्या है? 2 बर्थ है, उन पर कोई भी 2 यात्री सफर कर सकते हैं। 2 स्त्री 2 पुरुष या 1 स्त्री 1 पुरुष।
1: जी हाँ, 1 स्त्री और 1 पुरुष 2 ही होंगे इस कूपे में। अच्छा सफर कटेगा।
2: हाँ, नींद अच्छी आएगी या शायद बिल्कुल नहीं आएगी।
1: आप में जीवट है, लेकिन 10 दिनों तक तो आप
2: वहाँ सबको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए था जैसा मैंने किया। साधना करने आए थे हम लोग।
3: अच्छा, मैम साहब आ गए। आप तो कह रहे थे।
1: सुनो कंडक्टर, 2 कप कॉफी मिलेगी? लेकिन रुको शांतना जी, अब तो डाइनिंग कार में चलने का वक्त हो गया है।
2: मैं नहीं जाऊंगी, रात को मैं नहीं खाती। कंडक्टर, मेरे लिए केवल 1 कॉफी।
3: जी हाँ मैम साहब, कॉफी आ जाएगी।
1: मैं तो डाइनिंग कार में जाऊंगा। 10 दिन तक मन और तन दोनों ही भूखे रहे। ना, अब और मन को नहीं मार सकता।
2: तुमने मारा ही कहा है, मारने का ढोंग किया। अच्छा जाओ, मैं ध्यान करने के बाद कुछ देर काम करूंगी।
1: ओके, लौट कर बातें होंगी।
2: ओके।
3: मैम साहब, ये रही कॉफी, कुछ और चाहिए?
2: नहीं शुक्रिया। अब जरा एकांत मिला। सोने से पहले अपनी डायरी लिख लूं। गुरुजी दूसरे महात्माओं से कितने भिन्न हैं। वो न प्रभाव डालने के हथकंडे जानते हैं, न दूसरों पर छा जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने एक सहज सत्य का आविष्कार कर लिया है, क्योंकि उनमें एक मोहिनी शक्ति पैदा हो गई है। वही शक्ति देश विदेश के नाना प्रकार से त्रस्त व्यक्तियों को अपने पास खींच लेती है। अज्ञात शांति की खोज में भटकते ये व्यक्ति कैसे सहज विश्वास से अपने जीवन की कहानी खोल कर रख देते हैं इनके सामने। वो जूडिथ जिसकी नीली आंखों में गहरे आकाश की झलक है, जिस सहज भाव से खिलखिलाती है, उसी सहज भाव से अपने मन की सारी परतें खोल कर रख देती है। उस दिन वो अपनी प्यारी प्यारी सी बच्ची के लिए मेरे पास से गुजरी तो मैंने मुस्कुराकर कहा, हेलो जूडी, कितनी प्यारी है तुम्हारी बच्ची। कल बहुत देर तक मुझसे बातें करती रही।
4: ये जिसके पास जाती है उसी की हो जाती है। मेरी तरह। अब गुरुजी के पास सोने की जिद कर रही।
2: अच्छा,
4: मानती ही नहीं, इसीलिए इसके पिता के पास ले जा रही हूँ।
2: क्या तुम्हारे पति भी यहाँ आए हुए हैं?
4: मेरी शादी नहीं हुई है।
2: क्या?
4: लेकिन इसके पिता बहुत सुंदर है, ऊपर की मंजिल में ही तो ठहरे हैं। उनसे ही इस लंबी यात्रा में मैंने ये सुंदर बच्ची प्राप्त की है।
2: आप कितने दिन से घूम रही हैं?
4: कई वर्ष हो गए।
2: आपके बहुत मित्र हैं।
4: स्वाभाविक है, अनेक देशों के अनेक युवकों के संपर्क में आई हूँ। उनको समझा परखा है, प्यार दिया है, पाया है।
2: बुरा तो नहीं मानोगी, तुम ग्रास, डोप, चरस, LSD आदि का सेवन करती हो?
4: करती हूँ। उनसे मुझे आनंद मिलता है, उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकती। वो अनुभव करने की वस्तु है, जैसे जैसे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, प्रतिभा मुक्त हो जाती है।
2: तो फिर वो क्या है जो तुम्हें खाए जा रहा है? क्या है जो तुम्हारे जैसे युवक युवतियों को दर दर भटकने के लिए विवश करता है? साधुओं महात्माओं योगियों के पास तुम क्या पाना चाहते हो?
4: बहुत दिनों तक ये सब करते करते मैंने अनुभव किया है कि नशे में जो आनंद मिलता है वो जैसे मैकेनिकल, जैसे उधार का आनंद है। एक महात्मा है, जो दैहिक सेक्स के द्वारा समाधि की ओर ले जाने का दावा करते हैं, लेकिन मैं बिना किसी की सहायता से अपने ही अंतर में से स्वर्ग जाने का मार्ग खोल लेना चाहती हूँ। सुना था भारत के योगी इस मार्ग को जानते हैं, इसलिए भटकती हूँ।
2: जितने लोगों से मैंने बात की है वो सभी इन अनुभवों से गुजर चुके थे। सेक्स, नशा, सब कुछ उनके लिए सहज है, फिर भी वो भटक रहे हैं। कितनी सच्ची है उनकी ये भटकन। कुछ है जो परिवार के शासन से परेशान है, कुछ को आज के शोषण की राजनीति त्रस्त करती है, वो उद्योगीकरण से प्राप्त ऐश्वर्य और विलास से ऊब चुके हैं। ये यांत्रिक और कृत्रिम जीवन उनको खोखला कर रहा है और वो उस आनंद की तलाश में है जो उन्हें शांति के स्वर्ग द्वार के भीतर पहुंच जाने की शक्ति दे। अब आती हूँ।
1: बाहर भी वर्षा होकर चुकी है, मौसम कितना सुहावना, कितना प्यारा है। अरे आप एक लिखे जा रही हैं? ओह, कैंप के अपने अनुभव लिख रही हैं शायद, देख सकता हूँ?
2: ये मेरी डायरी है।
1: तब नहीं देखूंगा, डायरी चोरी करके पढ़ने की चीज है।
2: बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं।
1: समझदारी की बातें तो अब आरंभ होंगी। खिड़की खोल दूं, वर्षा से भीगी हवा आने दो। मैं आपके पास बैठ सकता हूँ?
2: सब काम पूछकर ही करते हैं आप।
1: थैंक यू।

0: माय फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ सेक्स, मैं भी कह सकता हूँ लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ।
1: मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ।
0: नहीं है तो हो जाएंगी। मुझे किसी के साथ एकाकार होते देर नहीं होती। दुई का भाव मुझे सुहाता ही नहीं। एक ओंकार, एक सत्ता, एक चेतना।
1: काफी गहरे उतर चुके हैं आप।
0: गणित विज्ञान और आध्यात्म की तरह नशे, सेक्स और योग की मंजिल एक ही है, ब्रह्मानंद सरोवर में डुबकी लगाना। प्लीज, मैंने कहा ना, अकेले पीते अच्छा नहीं लगता। छोटा पैक लीजिए मेरे लिए, इस सुहावने मौसम के लिए।
1: मिस्टर सिंह, आप ऊपर नहीं जाना चाहते तो मैं जाती हूँ।
0: आप ऊपर कैसे जाएंगे?
1: जी हाँ, वो अधिकार तो जैसे आपका ही है। आप पुरुष है ना? मैं कहती हूँ ऊपर जाइए।
0: ना ना ना ना ना, नाराज ना होइए। अच्छा, मैं अब और नहीं पीऊंगा, आपके साथ बातें करूंगा। आप डाइनिंग कार में नहीं गई, वहां डिक था, वही जूडिथ के बच्चे का बाप। आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, आना चाह रहा था, लेकिन जब उसे पता लगा कि हम कूपे में हैं तो मुस्कुरा कर लौट गया। अरे, अब फिर नाराज हो रही है? प्लीज।
1: मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं, जरा थोड़ा पीछे हटिए ना, मैं लेटना चाहती हूँ, फिर अपना भाषण जारी रख सकते हैं आप। आप तो जूडिथ के साथ बहुत रहे हैं।
0: बहुत से देशों में साथ साथ घूमा हूँ। We have made love many times. लेकिन वहां गुरुजी का आदेश था, 10 दिन तक कुछ नहीं होना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण मौन। फिर दिख भी तो यही था, लेकिन लेकिन उसे जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई। जूडिथ को पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी के साथ रहे।
1: इसलिए शायद वो तुम्हारे साथ आकर भी लौट गई।
0: उसके लौट जाने से मुझे दुख हुआ था, लेकिन तुम मिल गई, तुम उससे भी आकर्षक हो, सबसे आकर्षक। तुम्हारी मांसल देह, तुम्हारी चमकती आंखें, तुम्हारे लंबे सुनहरी बाल।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बज चुके हैं।
0: प्लीज, अभी कुछ देर और बैठूंगा।
1: बैठे रहो।
0: तुम्हारी डायरी पढ़ सकता हूँ?
1: नहीं।
0: तुम्हें छू सकता हूँ?
1: नहीं।
0: मेरी प्रेम कहानियां सुनोगी?
1: नहीं।
0: क्यों?
1: क्योंकि सब एक जैसी होती हैं, वैसे ही जैसे तुम सब पुरुषों का व्यक्तित्व एक जैसा होता है। सोने का समय हो गया, जाओ सो जाओ और स्वप्न देखो।
0: मेरा मन तो तुमसे बातें करने को करता है।
1: बातें मुंह से की जाती हैं, हाथों से नहीं।
0: सांत्वना, सांत्वना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ सांत्वना।
1: मुझसे प्रेम करने वालों में एक और का इजाफा हुआ। लेकिन सरजीत, तुम सचमुच प्रेम करते होते तो जतलाते नहीं, प्रेम निर्लज्ज नहीं होता।
0: यानी नैतिक होता है। शरीर को बचाने के मुंह में तुम अच्छे तर्क कर लेती हो।
1: शरीर को बचाने का मुंह मुझे कभी नहीं रहा, परंतु वो मन से जुड़ा हुआ है। प्रेम का अर्थ केवल तन का मिलन नहीं है। जिन जूडिथ, मार्था और लिजा के लिए तन का मिलन सहज रहा है, वो भी मन के मिलने के लिए भटकती फिर रही हैं। न जाने कितनी गांठें पड़ी हैं उनके मन में। माँ बाप से विद्रोह, समाज से विद्रोह, अपने से विद्रोह, व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो ड्रग का सेवन करती हैं, स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने।
0: वही वही वही तो आनंद का मार्ग है। तुमने कभी अनुभव किया है उसे, उस आनंद को? मेरे पास है, पियोगी?
1: सरजीत, तुम सीमा को लांघते जा रहे हो, अब चले जाओ।
0: और न जाऊं तो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज सांत्वना, प्लीज।
1: नहीं नहीं, पीछे हटो, हटो पीछे।
0: मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा। किसी स्त्री ने मुझे आज तक पीछे नहीं हटाया।
1: लेकिन मैं हटा दूंगी। मर्द है तो उसे औरत चाहिए।
0: प्लीज
1: मत तेज पूंछ है, औरत उसके तेज को छीनने वाली है।
0: देखो,
1: ये दलीलें अब बासी हो चुकी
0: हैं। प्लीज,
1: तुम्हारे लिए नारी केवल एक वेश्या है।
0: मैं नहीं,
1: मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं।

0: सांत्वना।
1: कौन है आप? क्यों आए हैं इस समय?
2: क्षमा कीजिए, आप ठीक तो हैं?
1: बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही बीमार नजर आते हैं जो दूसरों के कंपार्टमेंट में झांकते फिरते हैं। कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो जाइए यहाँ से।
2: माफी चाहता हूँ, बराबर के कंपार्टमेंट में हूँ। लगा जैसे आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन यहाँ तो आपके पति का अतिरिक्त तो और कोई दिखाई नहीं देता।
1: तो फिर जाइए अपने कंपार्टमेंट में।
2: देखिए, मुझे नींद कम आती है। आप लोग शोर मचाएंगे तो बेवश होकर मुझे।
1: क्या मतलब है आपका?
2: आप सब समझती हैं, इस डिब्बे में केवल आप दोनों ही नहीं, आप जैसे जोड़े बहुत देखे हैं। इस उम्र में इतना आवेश नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ मुझे फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडक्टर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आराम से सो सके।
3: सचमुच मैम साहब, मैं तो डर गया था। कभी कभी फालतू आदमी भी चढ़ाते हैं।
1: मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए। मैं माफी चाहती हूँ।
2: ठीक है, मैं जाता हूँ। गुड नाइट।
3: दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए, कोई बात हो तो मैं पास ही में हूँ। मुझे बहुत दुख है दरअसल।
1: चुप रहो, ऊपर जाकर अपनी सीट पर बैठो।

0: सरजीत का इसमें कोई दोष नहीं है। उसका संबंध जूडेथ, मार्था और लिजा जैसी नारियों से रहा है, जिनके लिए देह ही सब कुछ है। लेकिन फिर विद्रोहियों का बाना पहने इधर उधर क्यों भटक रही हैं? अंतर में कहीं न कहीं खोज की वो चाह है जो इन्हें स्थूल आनंद से ऊपर उठाती है। मैंने मार्था से पूछा था, मार्था बुरा तो न मानोगी, एक बात पूछूं?
1: खुशी से पूछो।
0: तुम माँ बनने वाली हो ना?
1: हाँ।
0: इसके पिता कौन है?
1: मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है, मैं भी पुरुष की तरह प्यासी हूँ, मुझे भी तृप्ति चाहिए। पुरुष कोई भी हो, वो सर्वजीत भी हो सकता है, शायद वही है। लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो?
0: मैं जानना चाहती हूँ कि मुक्त साहचर्य और देह भोग के साथ सच्चे सुख की तलाश कैसे चल सकती है।
1: मुझे तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। शरीर के अस्वीकार की बात तुम लोगों में ही है, हम लोगों में समर्पण की प्यास है। समर्पित होकर हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। तुम्हारे लिए प्रेम एक बना बनाया सांचा है, विवाह किया और वो सांचा ओढ़ लिया।
0: नहीं, मैंने भी प्रेम विवाह किया था, उसी का परिणाम है मेरे दो बच्चे, उन्हीं के लिए मैं दूसरी बार विवाह नहीं कर रही।
1: लेकिन इससे क्या तुम्हारी देह की प्यास बुझ गई? इतने सारे वर्ष तुमने इस छद्म को पालने में लगा दिए। मैंने गुरुजी से बहुत बहस की है इस बारे में।
0: क्या उत्तर दिया उन्होंने?
1: देह की प्यास से उन्हें इनकार नहीं है, वो तो चाहते हैं कि साधना के इन 10 दिनों में परहेज किया जाए, उसके बाद जैसा अनुभव हो।
0: इसका अर्थ समझी?
1: समझी। वो कहना चाहते हैं जैसे जैसे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, देह भोग की प्यास वैसे वैसे शांत होती जाती है। सांत्वना, मैं नहीं जानती क्या होगा, मुझे चिंता नहीं कि वो प्यास शांत होती है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा अवश्य लगता है कि सच्चे सुख के प्राप्त हो जाने पर वो प्यास असंगत हो रहेगी।
0: फिर भी तुम कहती हो कि शरीर के अस्वीकार की बात हम ही लोगों में है।
1: अस्वीकार करने और असंगत हो रहने में अंतर है, क्या नहीं है?
0: कभी सोचा भी न था कि मुक्त देह मिलन के उपासक ये लोग इतनी गहराई में उतर सकते हैं। अस्वीकार करने और असंगत हो रहने का अंतर ही हम भूल चुके हैं, इसलिए अत्यधिक निषेध से परेशान होकर देह मिलन के लिए पागल हुए जा रहे हैं। मैंने भी जब चाहा है देह की प्यास बुझाई।
2: देह की इस प्यास को क्या तुमने अब भी बुझाना नहीं चाहा था?
0: कौन हो तुम?
2: मैं कौन हूं ये पूछने का साहस है तुमने? अपने अंतर में झांक कर देखो, वहीं से बोल रही हूं। बार बार दूसरों के अंतर में झांकती हो पर अपने को नहीं खोजती। विधवा हो, संतान के प्यार के आदर्श में बंधी तुम देह की प्यास को छिपाए फिरती हो, लेकिन क्या सर्वजीत के साथ

तुम्हारा मुक्त व्यवहार तुम्हारी देह की प्यास के ऊपर ही आधारित नहीं था। अगर ऐसा था तो मुझे रोकने वाला कौन था? तुम्हारा अपना अहम, जबरदस्ती शहीद बनने की लालसा। शब्दों के मायाजाल में फंसने की चेष्टा मत करो। ये ठीक है, छोटी उम्र के अपने दोनों बच्चों को मैं किसी की दया पर छोड़ने को तैयार नहीं थी, पर देह के मिलन को मैं अस्वीकार नहीं करती।

0: लेकिन तब तुम साधना केंद्र में क्यों गई थी? क्या वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम भी अशांत हो? तुम्हें देह को बचाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचाने को विवश भी हो। इसी द्वंद्व से तुम पीड़ित हो। तीव्र निषेध मन की चाह में से ही पैदा होता है। तुम्हें स्पष्ट कह देना चाहिए था कि सर्वजीत तुम्हारा पति नहीं है, ये मेरा छद्म है। इस छद्म को उतार फेंको।
1: ये छद्म है, छद्म। सुनो, कहाँ गई तुम? बोलो। कहीं कोई नहीं, ये मैं अपनी ही आवाज सुन रही हूँ। सचमुच मुझे सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए था कि सर्वजीत मेरा पति नहीं है। मैं डर गई। कंडक्टर और सहयात्री मुझे व्यभिचारी नहीं समझते और शायद स्टेपी से उतर जाने को विवश करते, या फिर कैसी है ये भूल भुलैया, कैसे मुक्ति मिलेगी इससे? क्या इसी मुक्ति की खोज में मैं साधना केंद्र में नहीं आई? इतने सहज होकर भी ये लोग भटक रहे हैं, द्वंद में फंसी मैं भी भटक रही हूँ। क्या इस भटकन का अंत देह के मिलन नहीं है? कहाँ है सत्य? कौन सा छद्म इन तर्कों को ठगे हुए है? कैसे मिलेगी इस द्वंद से मुक्ति?
2: छद्म, ये छद्म है, इस छद्म से मुक्ति पाओ। सहज होने में ही मुक्ति है। मुक्ति, मुक्ति।
3: बहुत देर हो गई तुम्हें लिखते हुए, अब सो जाओ। जो कुछ हुआ उसके लिए लज्जित हूँ।
0: नहीं सरजीत, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं।
3: तुम बहुत अच्छी हो।
0: सच?
3: मैंने प्रतिज्ञा की थी कि सच बोलूंगा, केवल सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ न बोलूंगा।
0: अच्छा, अब सो रही हूँ। गुड नाइट।
3: गुड नाइट।
4: बहुत देर से आई हो। कॉलेज तो कभी का बंद हो चुका था।
0: हाँ, कमल अंकल के घर चली गई थी।
4: इतनी रात तक क्या वहाँ कोई उत्सव था? हमें क्यों नहीं ले गए?
0: कुछ ऐसी बात थी बेटे, गंभीर बातें करनी थी ना, हड़ताल होने वाली है।
4: बहुत देर हो गई थी इसलिए मुझे डर भी लगा। भैया ने वहाँ फोन भी किया था लेकिन हर बार अंगेज मिला, शायद खराब था।
0: हाँ शायद, असल में हम बहुत जरूरी बातें कर रहे थे, शायद तुम्हारे अंकल ने रिसीवर उतार कर रख दिया था।
4: हाँ, यही जवाब हमें भी मिला था, हमने कंप्लेंट की थी। खाना खाओगे मामा?
0: मैं तो खाई बेटा, लगता है तुम लोगों ने अभी तक नहीं खाया। बड़े दुष्ट हो तुम, मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। बुलाओ अपने भैया को।
5: पढ़ने का नाटक कर रहा है लेकिन सुन रहा है हमारी बातें। इधर आओ बाबा।
0: माँ को जरा भी मुक्ति नहीं दोगे? मुक्ति तो मैं ही उन्हें नहीं दे पा रही। मैंने ही तो उन्हें अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बड़े हो गए हैं, सब कुछ समझते हैं। मुझे उनसे सब कुछ कह देना चाहिए, कहीं उनके किशोर मन में काट ना पड़ जाए। स्वयं मैं भी तो नहीं झेल पाती इस सर्वग्रासी एकांत को। मैंने ही जानबूझकर इसे अपने ऊपर नहीं लाद लिया है। क्या इसे मुक्ति पालूं? क्या वो मुक्ति होगी?
6: सांत्वना? सांत्वना, तुम सो गई?
0: तुम्हारा स्पर्श पाकर मुझे नींद आ ही जाती है।
6: सांत्वना, हम ये लुका छिपी का खेल बंद कर देना चाहिए।
0: हाँ, कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो फिर कोई और मार्ग नहीं रह जाएगा।
6: तुम शादी कर लो।
0: मैं शादी नहीं कर सकती विनोद, जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती।

0: धोखा तुम आप दे रही हो।
1: मैं धोखा नहीं दे रही, अपनी इच्छा से जो चाहती हूँ करती हूँ।
0: इच्छा मेरी भी तो हो सकती है, जैसे तुम चाहती हो कि तुम किसी का शिकार ना बनो, वैसे ही क्या मैं नहीं चाह सकता कि मैं तुम्हारा शिकार ना बनूं?
1: शिकार? तुम क्या कह रहे हो विनोद? विनोद!
2: सांत्वना, क्या है सांत्वना, किसे पुकार रही हो?
1: कुछ नहीं, सपना देख रही थी।
2: या अपने प्रेमियों की याद कर रही थी? विनोद, कमल,
1: तुम्हें ईर्ष्या होती है?
2: स्वाभाविक है, सारी रात यहाँ ऊपर के बर्थ पर लेटा लेटा।
1: तुम सब पुरुष एक जैसे होते हो। उनके एक मित्र थे, एक बार उनके साथ भी इसी तरह कूपे में सफर किया था। सारा समय तुम्हारी तरह न जाने क्या क्या बकते रहे, अपनी प्रेम कहानियां सुनाते रहे। बेचारे परवर्टेड।
2: अगर मैं यूरोपियन होता तो इस समय तुमसे पूछता, क्या उस रात उसके साथ तुमने प्रेम किया था?
1: आप नहीं पूछोगे?
2: बेकार है, हिंदुस्तानी प्रेम करना ही नहीं जानता।
1: ताने मत दो, मैं न तब समर्पित हुई थी और न अब हो सकूंगी।
2: जी में आता है कि नीचे उतरकर तुम्हारे शरीर को झंझोर डालूं और
1: फिर रुक क्यों गए?
2: जागने की राह देखता रहा, अब नहीं मानूंगा।
1: तुमने और उस पुलिस इंस्पेक्टर में अंतर ही क्या है, जिसने सवेरे सवेरे दूध लेने जाती हुई एक औरत के साथ बलात्कार किया?
2: तर्कों की ये ढाल तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगी।
1: जब दो शरीर सैकड़ों मीलों की मानसिक दूरी के साथ मिलते हैं तो उस अर्थहीन मिलन में न सौंदर्य होता है न सत्य, वो न तन को बांध पाता है न मन को। इसी को कहते हैं अपवित्र होना।
2: पवित्र अपवित्र की मुझे चिंता नहीं, चिंता तुम्हारी है। सारी रात तुम अपने से लड़ती रही हो, तुम्हारा यही छद मैं उतार फेंकना चाहता हूँ। सांत्वना, प्लीज।
1: इसे हटा, मैं कहती हूँ एक कदम भी आगे न बढ़। कौन आया? कौन हो तुम? क्या चाहते हो?
3: मैं सरजीत से मिलना चाहता हूँ। हेलो सरजीत। तुम्हारा नाम देखा तो आश्चर्य हुआ, विलायत से कब आए, कैसे हो? और मार्था? ओह, ये मार्था तो नहीं है?
1: मेरा नाम सांत्वना है।
3: ओह, देखता हूँ तुमने शादी कर ली है सरबजीत, भाई बधाई।
2: निगम, इनसे मिलो, ये है श्रीमती सांत्वना थापर। मैंने अभी तक शादी नहीं की है। तुम कहो कहाँ कहाँ रहे, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो।
3: हाँ, वो तो है, पर तुम हो भाग्यशाली, अभी तक तो विदेशी नारियों की चर्चा ही तुम्हारे पत्रों में रहती थी, अब भारतीय नारी भी आ गई। बधाई दूंगा, चुनाव एक्सलेंट है, वाह। माफ कीजिएगा मिसेस थापर, हम बहुत गहरे दोस्त हैं। यहाँ बैठ सकता हूँ ना सर जी?
1: ये कूपे है मिस्टर निगम, और अभी रात बीती नहीं है।
3: हो, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि कूपे में तीसरे के लिए स्थान नहीं होता।
1: मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, तब आप आ सकते हैं। अब आप
3: जा रहा हूँ, खेद है मैंने आपके एकांत में खलल डाला। और सरजीत एक बात याद रखो, ये भारत है, यहाँ शोर नहीं मचाना चाहिए, वो बाहर वाले को भी खींच लेता है।
1: दरवाजा खुला रहने दो।
2: क्यों?
1: मेरी इच्छा।
2: कूपे में एक की इच्छा नहीं चलती।
1: तो आप में भी समझने की शक्ति है? स्टेशन आ रहा है, मैं यहीं उतरूंगी।
2: अभी तो अंधेरा है, बाहर बूंदाबांदी हो रही है, और ये स्टेशन भी बहुत छोटा सा है।
1: बड़ी सुंदर जगह है ये।
2: सुंदर तो तुम हो, जगह नहीं, ये तो क्रूर है, विछोह का स्थान।
1: तुम्हारा ऐसा सोचना भी क्या एक छद्म ही नहीं है? जो तुम्हारी दृष्टि में विछोह का स्थान है, वो किसी के लिए मिलन का भी हो सकता है। तुम्हारे साथ फिल्मी डायलॉग के आदान प्रदान से तो यहाँ उतरना हजार गुना अच्छा है। अच्छा, जा रही हूँ, बुरा ना मानना, प्यार का तुम्हारे लिए एक ही अर्थ है, औरत की देह का उपभोग। अच्छा, नमस्कार। क्या सोच रहे हो, जवाब भी नहीं दोगे?
2: नमस्कार। तुम भाग रही हो सांत्वना, कब तक भागती रहोगी?
1: कंडक्टर, मैं यही उतर रही हूँ, जरा बक्सा उतारने में मदद करो।
4: जी अभी आया, लाइए, मैं उतारे देता हूँ, आप उतरिए।
1: ये लीजिए।
3: गई, अब तो मैं आ सकता हूँ, खूब बातें करेंगे दोनों, सामान ले।
2: क्या मेरी दशा उस मछुए जैसी नहीं है, जो एक तूफानी समुद्र में अपना जाल भी खोकर

खाली हाथ लौट आया था, लेकिन इसी लेकिन के कारण तो मैं भी साधना केंद्रों की खाक छानता फिर रहा हूं।

0: कूपे। अभी आपने श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे श्री दीनानाथ, सहायक श्री सुदर्शन कुमार और श्री कृष्ण कुमार नरूला। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री जैमिनी कुमार वीरेंद्र, मंजू मैनी, सरल लांगिया, शर्मिला मलखानी, हरि मेहता, अरुण माथुर, बीएल टंडन, दीपा पांडे और नरेश कुमार सूरी। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।
1: इस नाटक का प्रसारण आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से किया गया। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का पहला गीत अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत जतिन ललित का है, फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है।

अलका याग्निक, सोनू निगम और साथियों की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा गीत अभी आपने सुना। संगीत जतिन ललित का था। फिल्म थी जब प्यार किसी से होता है।

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಟ್ 90. आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
0: लीजिए अब सुनिए फिल्म हम तुम का गीत अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा है, संगीत जतिन ललित का है।

0: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MV3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
3: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
4: मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
5: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
6: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 40.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में। जीत फिल्म के इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का है।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुनिए फिल्म सिद्धि का गीत हरिहरन और चित्रा की आवाजों में। समीर ने इस गीत को लिखा है, संगीत है दिलीप सेन समीर सेन का।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़ते हों, फिर पढ़ के भुला जाते हों।
0: अरे तो सुने करना।
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी ना बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एकर असन कई ठन कार्यक्रम हवे जिला सुने बर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवे संझा कुन 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। लीजिए अब सुनिए फिल्म बिच्छू का गीत हरिहरण और स्वर्णलता की आवाजों में। समीर ने इस गीत को लिखा है, संगीत आनंद राज आनंद का है।

बिच्छू फिल्म का गीत अभी आपने सुना हरिहरन और स्वर्णलता की आवाजों में। गीत लिखा था समीर ने, संगीत आनंद राज आनंद का था। चित्रपट संगीत के अगले गीत से पहले श्रोताओं एक सूचना सुनिए। आगामी शुक्रवार यानी 22 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा खेती किसानी के समय किसानों को होने वाले चर्म रोग और सावधानियां। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मृत्युंजय सिंह, चर्मरोग विशेषज्ञ रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 400-3482, दूसरा फोन नंबर है 400-3483 और तीसरा फोन नंबर है 400

0-0-3-4-8-4 रायपुर का एसटीडी कोड है 0-7-7-1। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 22 मई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई और इस सूचना के बाद चित्रपट संगीत में आइए अब सुने मैं प्रेम की दीवानी हूँ इस फिल्म का गीत चित्रा और शान की आवाजों में। गीत लिखा है देव कोहली ने, संगीत अनु मलिक का है।

0: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सरायपाली केंद्र है। 3 बजे ही हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ इसी मीटर पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।
1: की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। वार्ता के दौरान भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित है। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सहउत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने हेतु सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बनी रह सकती है, जबकि असम, मेघालय, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक के आंतरिक और तटीय क्षेत्र, झारखंड, लक्षद्वीप और कर्नाटक में आंधी चलने और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। राजस्थान के अधिकांश जिले इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to discuss ways to boost India-Italy cooperation. With a focus on strengthening India-Italy relations, major pacts may be announced later in the day. Both leaders will exchange perspectives on a wide range of subjects. A series of programs will be held in Rome to mark the importance of the bilateral relations between the two countries. PM Modi's visit will also focus specially on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed during the meeting. In a social media post before the talks, Prime Minister Modi expressed hope that the talks will be focusing on strengthening India-Italy relations. Mr. Modi said that upon landing in Rome, he had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner, followed by a visit to the iconic Colosseum. He said both leaders exchanged perspectives on a wide range of subjects. The Prime Minister added that today's talks will continue the conversation on boosting India-Italy friendship. Prime Minister will be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. President Draupadi Murmu today said that to achieve the goal of a Viksit Bharat and take society to the pinnacle of progress, officers will often have to move forward by striving against the tide. She said this after a group of IAS officers from the 2024 batch called on her at Rashtrapati Bhavan today. The president said the young officers will have the unique opportunity to work in diverse fields and head teams of experts in specialized areas. Ms. Murmu said refraining from making a decision does not constitute morality. She emphasized that taking the right decisions in alignment with public interest and established order represents the true essence of morality. Defence Minister Rajnath Singh today held a meeting with his South Korean counterpart Ah Joo-bak in Seoul. During the meeting, they discussed ways to further deepen India-South Korea defence industry and strategic cooperation with a shared commitment towards regional peace, stability and technological collaboration. In a social media post, Mr. Singh said it was a highly productive meeting as India and South Korea exchanged agreements on promoting defence cyber cooperation. Defence Minister Rajnath Singh has complimented DRDO, public sector undertakings, defence cum production partners and industry for the successful development trials of ULPGM V3. He highlighted its effectiveness in air-to-ground mode for anti-tank role and air-to-air modes for drone, helicopter and other airborne targets. Mr. Singh termed it a strategic milestone achieved towards Atmanirbharta in defence. The Supreme Court today dismissed a petition challenging the centre's decision to undertake caste enumeration as part of the upcoming census, saying the issue falls within the policy domain of the government. A bench headed by Chief Justice Suryakant observed that the government needs to know the number of people belonging to backward classes to frame welfare measures for them. The bench said there was nothing wrong in collecting such data and declined to interfere in the matter. The National Commission for Women, or NCW, has taken suo motu cognizance of the reported suspicious death of a 33-year-old woman from Noida in Bhopal, Madhya Pradesh. Taking serious note of the matter, NCW Chairperson Vijaya Rahatkar has written to the Chief Secretary and Director General of Police of Madhya Pradesh, directing them to ensure a prompt, impartial and time-bound investigation. The Commission has also sought a detailed action taken report within 7 days. The NCW has further directed the authorities to ensure the safety and protection of the victim's family from any threats or intimidation. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders will take on Mumbai Indians at the iconic Eden Gardens in Kolkata. The match will begin at 7:30 p.m. As the league stage nears its end, five teams remain in contention for the lone remaining playoff spot. Royal Challengers Bengaluru, Gujarat Titans and Sunrisers Hyderabad have already qualified for the playoffs. And that is the end of this news bulletin.

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूँ प्रियांशी भटनागर आपके साथ कार्यक्रम मन भावन में, जहाँ दोपहर की इस शांत लय में आपके मन पसंद गीतों की सुरीली माला बनती है और मन भावन समर्पित है उन भावनाओं को, उन यादों को जो हर गीत के साथ फिर से मुस्कुरा उठती हैं। इस कार्यक्रम में आप हमें अपने प्रिय गीत और संदेश ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। कोई बात जो मन में ठहर गई हो, कोई संदेश, अपने मन पसंद गीत के साथ हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा प्रयास रहता है कि आपकी इन भावनाओं को हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बना सकें। तो श्रोताओं, देर किस बात की, हमें भेजिए अपना मनपसंद गीत, अपना संदेश, अपना नाम और शहर। हमारा ईमेल पता है fmgoldairdelhi@gmail.com और आप हमें व्हाट्सएप पर भी अपने प्रिय गीत भेज सकते हैं 9868868753 पर। मैं पुनः स्पष्ट करती हूँ, हमारा ईमेल है fmgoldairdelhi@gmail.com और आप हमें व्हाट्सएप पर अपने प्रिय गीत भेज सकते हैं 9868868753 पर। क्या पता कहीं अगला मनभावन पल आपके ही गीत से शुरू हो जाए।

संगीत की इस दिलकश लहर के बाद आइए सुनते हैं आपकी आवाज। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई ने संदेश भेजा है। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। नथाना पंजाब से हरजिंदर छींदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता ने भी हमें संदेश भेजा है। दिल्ली से पीतमपुरा से अनीता वर्मा जी ने। और हितेंद्र दास लिख रहे हैं आसाम से। तो आइए श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर सुनते हैं ये अगला खूबसूरत गीत।

आइए श्रोताओं, अब फिर आपके भेजे हुए कुछ संदेश पढ़ लें। जिला खरगांव सनावत से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाई जान, भाई राजकुमार बुराना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी हमारे साथ जुड़े हैं। गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने भी हमारे साथ जुड़े हैं। और अगला फरमाइशी गीत भेजा है मनकारा मंदिर बीडीए बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष, अमर, हितेश, राजेश, रूबी भारती, एकता, दिव्या, रचना, श्रीमती ओमवती भारती, खनक, शुगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह ने। तो आइए इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये बहुत ही मधुर गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय तैराक हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही हूँ। आकाशवाणी को 90 साल पूरे करने पर बहुत बहुत बहुत बधाई। 90 साल का कामयाब सफर तय करना कोई आसान बात नहीं है। आकाशवाणी मेरे लिए एक परिवार की तरह है। आपने मुझे आज तक अपने साथ जोड़ कर रखा है, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे जीवन की हर पड़ाव, सफलता, मेरे जीवन के संघर्ष, कोई भी चीज़ आपसे छुपे नहीं। आपने अपने कार्यक्रम के माध्यम से मुझे कई अवसर दिए कि मैं देश भर के श्रोताओं से जुड़ी रहूँ। आप मेरी आवाज़ बने, मैं इसके लिए आपकी कृतज्ञ हूँ।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां मैं प्रियांशी आपके साथ जुड़ी हूं कार्यक्रम मन भावन में आप सभी के मन पसंद गीतों और हार्दिक संदेशों के साथ। तो श्रोताओं, अगर आपने अभी भी नहीं लिख भेजा है तो जल्द ही करके लिख भेजिए अपना मन पसंद गीत, अपना संदेश, अपना नाम और शहर fmgoldair@gmail.com पर, या हमें व्हाट्सएप पर संदेश भेजें 9868687 पर। तो आइए तब तक आपके कुछ और संदेश पढ़ें और फिर सुनते हैं आपकी फरमाइश का गीत। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत भरत और कमल साहनी हमें लिख रहे हैं पंजाब से, महाराष्ट्र से विजय, रतनमाला, आरती गौरी और ओम कुमार, हिसार से राजकुमार जी और इनके साथ प्रमोद और पुष्पेंद्र भी जुड़े हैं, जालंधर से राजेश कुमार चौहान हमें लिख रहे हैं, आर्यनगर भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल और इनके साथ हैं मोरस, अनिल, अजीत, आयुष और नंदिनी, और सुर्खी कला से अमित, शुकन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलीन के साथ जुड़े हैं। नई दिल्ली से कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु जुड़े हैं और इन्होंने भी हमें अपना फरमाइशी गीत लिख भेजा है, और पंजाब के खेड़ा परिवार हमें लिख रहा है। इनमें हमारे साथ जुड़े हैं भूषण जी, विशु, विशाल, लाड़ी, शालिनी, देवनाशी, वाणी और बी खेड़ा। इनके साथ और भी जुड़े हैं जीवन सिंह और समस्त खेड़ा परिवार। तो आइए श्रोताओं, इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये मधुर गीत।

गीतों की इस मधुर छाप के बीच अब शामिल करते हैं आपकी बातें और आपके शहर। इंदिरा नगर भवरपुर से राधे श्याम देवांगन और चंपा देवांगन हमारे साथ जुड़े हैं। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अदान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं। शबनम, अकरम और तबरेज हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग और सोनाली हमारे साथ जुड़े हैं। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष, चैतन्य, मेघा और चंडीगढ़ से राहुल, रचिता और किशोरिधान हमारे साथ जुड़े हैं। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। और कस्बा गुन्नौर उत्तर प्रदेश से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा की फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये मधुर गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

नमस्कार श्रोताओं, हम जल्द ही लौट आए हैं फिर से आपके मनपसंद कार्यक्रम मन भावन में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं प्रियांशी और समय इशारा कर रहा है, पर आपके कुछ और संदेश भी जल्दी से पढ़ जाते हैं। गुवाहाटी असम से हरेन पांड्या, नरेन पांड्या, वीरेन पांड्या हमारे साथ जुड़े हैं। खामगांव से अनंता, रामेश्वर, शुभम, साक्षी, खुशी और समस्त वाडे परिवार हमारे साथ जुड़े हैं। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबिर राही और महराज जहान हमारे साथ जुड़े हैं। हरिद्वार से, मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश, नवृत्ति और संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। बाड़मेर राजस्थान से बबलेश, डैनी, मनीष, रामदेवरा से दिनेश, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से हमारे साथ खुदा बख्श खलीफा जुड़े हैं। गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली हमारे साथ जुड़े हैं, मुजफ्फर अली हमारे साथ जुड़े हैं। और एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीदवार से सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ और सिकंदरा राव से मुबीन और इशरत हमारे साथ जुड़े हैं। उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु हमारे साथ जुड़े हैं। नूर आयशा अहमद, इकबाल अहमद, अखलाक अहमद, आमना, आसमा, रबिया परी, आशु जूही सदफ और तेघड़ा बाजार से अदीबा, नन्हे राजा, फिरोज, शाह आलम, वाली आलम और समस्त बागवान फैमिली हमारे साथ जुड़ी है। तो आइए इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद और दुर्गेश्वरी जी का, नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुहेरकर हमें लिख रहे हैं, निर्मला जी, पीएस जी और विशाल जी इनके साथ जुड़े हैं, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा हमारे साथ जुड़े हैं, राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा हमारे साथ जुड़े हैं, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकास्ट्रो, रोजी, पर्ल और विलिस हमारे साथ जुड़े हैं, खंडवा से विजय महोबिया, कविता जी इनके साथ हैं, और शिवपुरम कॉलोनी से कमला देवी और अनय, अनाया और ईशु बाबा जुड़े हैं, शीतला चौक से विशाल और विवेक भी जुड़े हैं, अमरावती से हमारे साथ साधना रानी और किशोर गुप्ता जी भी जुड़े हैं, और रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से किशन मंजानी, नीलम स्वाति, संगीता, सरिता, सुमन महाजन और किशु भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। इटली के रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीति भागीदारी में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को मिलिट्री ऑनर दिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा से उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक रणनीतिक उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर यह नोटिस जारी किया है। चीन के राष्ट्रपति

शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज पेचिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से पेचिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बनी रह सकती है, जबकि असम, मेघालय, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन के लिए बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक के आंतरिक और तटीय क्षेत्र, झारखंड, लक्षद्वीप और कर्नाटक में आंधी आने और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel, and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with
1: Uranium Corporation of India Limited has invited online applications for the post of a graduate operational trainee, CRND, a Government of India enterprise under the Department of Atomic Energy, and is looking for a qualified Indian candidate for technical and operational assignments. The last date for online application is 23rd May 2026. Full details regarding the qualifications, pay scale, eligibility and selection procedure is available on the official website. Please do refer to www.uraniumcorp.in. I repeat, www.uraniumcorp.in. National Investigation Agency, NIA, has invited applications for 30 scientific and forensic posts on deputation a short-term contract basis. Vacancies include technical forensics psychologist, fingerprint expert, explosive expert, cyber forensic examiner and crime scene assistant. Selected candidates may be posted anywhere in India depending on requirements. Applications along with RPAS, vigilance clearance and supporting documents must be submitted through proper channel within 60 days from the date of publication of this advertisement. Eligibility criteria and recruitment rules are available at www.nia.gov.in. The Bureau of Civil Aviation Security, BCAS, under the Ministry of Civil Aviation, has announced 65 deputation vacancies for posts such as Senior Aviation Security Officer, Deputy Aviation Security Officer, Senior Aviation Security Assistant, Staff Car Driver and Dispatch Rider. These vacancies are open to officers from central state governments, CAPFS, PSUs, universities and autonomous organizations. Complete eligibility conditions, biodata format and recruitment details are available on the BCAS website. Refer to www.bcasindia.gov.in. Applications must be sent through proper channel within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Krishi Vigyan Kendra Chomu has invited applications for a post of a driver, one post under the ICAR supported scheme managed by Pragati Trust Jaipur. Candidates should have passed matriculation and possess valid driving license. Preference will be given to candidates having ITI qualification or experience in driving and motor mechanic work. The post carries pay level 3 as per the 7 CPC. Application forms, eligibility details and instructions are available on the official website, that is at www.jaipur1.kvk2.in. I repeat the website, it is www.jaipur1.kvk2.in. And now we have the employment news in Hindi.
2: नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता। आइए कुछ जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। श्री गुरु राम राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देहरादून, प्राचार्य पद के लिए ये विज्ञापन है। निर्धारित प्रारूप में महाविद्यालय के प्राचार्य पद अनारक्षित है, जो वहां पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। पात्रता, आयु, योग्यताएं, चयन प्रक्रिया एवं परिलब्धियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 2018 द्वारा निर्गत एवं राज्य सरकार विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत प्रावधानों के अनुरूप ही होंगे। उचित रीति से पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र मात्र स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक से सचिव प्रबंध समिति श्री गुरु राम राय पीजी कॉलेज देहरादून 248001 के पते पर आप 31 मई के पहले भेज दें। विलंब से प्राप्त या अधूरे आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के प्रारूप, आवेदन शुल्क एवं अन्य विस्तृत जानकारियों के लिए आप महाविद्यालय की वेबसाइट देख सकते हैं, जो है www.sgrrcollege.com। कोई भी परिशिष्ट शुद्धि पत्र सिर्फ और सिर्फ महाविद्यालय की वेबसाइट पर ही प्रविष्ट किया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय खनी विद्यालय, धनबाद। प्रत्यक्ष भर्ती के आधार पर कुछ अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम आपको बता दें, मुख्य चिकित्सा अधिकारी विशेषज्ञ UR के अंतर्गत ये आएंगे। एक स्थान रिक्त है, कुल एक पोस्ट है। ग्रुप ए में वेतन स्तर होगा 12। चिकित्सा अधिकारी एक स्थान UR में है और SC के लिए भी एक पद रिक्त है, OBC के लिए एक और EWS के लिए एक। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4 स्थान रिक्त हैं। ये भी ग्रुप ए के अंतर्गत आते हैं, वेतन स्तर होगा 10। वरिष्ठ परामर्शदाता एक स्थान UR में और कुल मिलाकर एक ही स्थान यहाँ पर रिक्त हुए, ग्रुप ए के अंतर्गत, वेतन स्तर होगा 12। परामर्शदाता एक स्थान UR के अंतर्गत आते हैं और कुल मिलाकर एक स्थान हुआ, ग्रुप ए, वेतन स्तर 10 के अंतर्गत ये आते हैं। वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी UR एक और कुल मिलाकर एक स्थान रिक्त हैं, ग्रुप ए के अंतर्गत आते हैं, वेतन स्तर 10 होगा। पूर्ण निवारण के लिए आप संस्थान की वेबसाइट देख सकते हैं, जहां से आपको समस्त जानकारी मिल जाएगी, www.litism.ac.in। आवेदन आप ऑनलाइन माध्यम से ही भेज सकते हैं, जो कि 13 जून 2026 रात 12 बजे से पहले जमा कर दें। इससे संबंधित कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और समस्त जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी। इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, यहाँ पर प्रतिनियुक्ति आधार पर विभिन्न पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। IIAC नई दिल्ली संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। भारतीय नागरिकों से पूरी तरह से प्रतिनियुक्ति आधार पर कुछ पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। सहायक रजिस्ट्रार की एक पद है पे लेवल 9 के अंतर्गत। सहायक रजिस्ट्रार लेखा की एक पद के लिए पे लेवल 9 के अंतर्गत आता है। निजी सचिव यहाँ पर 4 पद रिक्त हैं, पे लेवल 8। कार्यकारी सहायक, सहायक अनुभाग अधिकारी लेखा के लिए एक पद रिक्त है, ये है पे लेवल 7 के अंतर्गत। योग्यता, अनुभव और अन्य नियम एवं शर्तों का विवरण आप वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, जो है www.indiaiac.org, यहाँ पर देख सकते हैं। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के निदेशक द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर समूह ए पद को भरने के लिए ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। पद का नाम हम बता दें, उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी प्रतिनियुक्ति के आधार पर पे लेवल 11 के अंतर्गत ये आएंगे और पदों की संख्या 1 है। केंद्रीय राज्य संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस विभागों द्वारा अर्धसैनिक बलों सहित सशस्त्र बलों के ऐसे अधिकारी जो समकक्ष पद धारण करते हों अथवा पे बैंड 3 में 5 वर्ष की नियमित सेवा रखते हों, सुरक्षा आंदोलनों तथा कर्मचारियों की हड़तालों के प्रबंधन से संबंधित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक अनुसार इसे 2 वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है। संस्थान की वेबसाइट आप विजिट करें, www.sgpgims.org.in, यहां पर आपको समझ जानकारी मिल जाएगी। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही, कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
3: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देश विदेश के समाचार होंगे, क्षेत्रीय संवाददाताओं से रूबरू होंगे, इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी, आर्थिक जगत में क्या हलचल है वो भी जानेंगे, तो बहुत कुछ रहेगा इस कार्यक्रम में। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और मेरी सहयोगी हैं मेरे साथ सायरा मुज्तबा। हेलो सायरा।
2: हेलो प्रियंका। नमस्कार राधाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। एंड प्रियंका, क्या हाल है आपका इस गर्मी में?
1: बुरा हाल है, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है।
2: राइट, दैट्स वेरी ट्रू।
1: और अभी हम एसी रूम में बैठे हैं तो हमें इसका इतना अंदाजा नहीं हो रहा, पर जो बाहर घूम रहे हैं सायरा, आज सुबह मैं देख रही थी एक रेहड़ी वाला फल बेच रहा था, गली गली घूम रहा था, तो उसको देखकर उसकी मेहनत का अंदाजा हो रहा था कि रोटी के लिए एक इंसान क्या क्या करता है,
2: क्या क्या करता है। और सोचिए ना, क्या इत्तेफाक की बात है कि सेम यही थॉट आज मेरे when I was at the gas station at the petrol pump, और जो वहाँ पे जो औरतें आपकी you know women are also employed you know, तो जो fill कर रही थी, her face was actually all red you know, so I was just thinking this is what people you know people are you know literally reeling under the heat wave, लेकिन इंसान भाई रोटी कमाना है
1: तो इसलिए हम एसी में बैठते हैं। ठीक है, हमें बहुत सौगात मिली है ईश्वर की तरफ से, लेकिन जो गली गली घूमकर मेहनत करता है तो उसकी मेहनत को हमें सम्मान देना चाहिए।
2: दैट्स वेरी ट्रू। एंड एटलीस्ट दैट्स आई थिंक द बेसिक थिंग इज कि शब्द ही बहुत अच्छे हैं, सो व्हाट वी कैन डू इज प्रोबब्ली यू नो एटलीस्ट आई मेक इट अ पॉइंट टू ऑलवेज आस्क द स्ट्रीट वेंडर्स, और भैया कहाँ के हैं आप, यू नो जस्ट ट्राई टू स्मॉल कन्वर्सेशन
1: लेंगे तो उनको बहुत अच्छा एक अच्छा फील आता है।
2: Exactly.
1: इंसानियत लगता है जिंदा है।
2: That's very true. और हम लोग जिंदा दिली भी जिंदा रखते हैं
1: जी।
2: अपने शो में रोज के रोज एट 4:30 शार्प इन द स्टूडियो क्लॉक, एंड यस इट्स टाइम फॉर परिक्रमा। एंड प्रियंका हैज ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू इन टुडेज शो। हस्बैंड दस्तूर हम देश की परिक्रमा करेंगे, वी विल गो टू डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री एंड सी द इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैट आवर कॉरेस्पोंडेंट्स हैव टू शेयर फ्रॉम देयर, ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर। बट फर्स्ट प्रियंका, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi held talks with Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome to boost economic cooperation.
1: Pradhan Mantri Modi aur Giorgia Meloni ne ek saajha lekh mein Bharat Italy mahatvapurn ranneetik saajhedari aur aarthik pehlon ki jankari di.
2: DRDO completes trials of drone launched unmanned precision guided missile. Defense Minister terms it a strategic milestone.
1: सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की.
2: Severe heat wave grips north and central India. Temperature breaches 44 degree mark at several places.
1: और IPL क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा.
2: And now time for a segment, Dateline India. Priyanka, of course, today is a very important day that we're going to talk about. The topic is, of course, World Bee Day. And we all know, Priyanka,

0: इम्पोर्टेंस ऑफ बीज, और बहुत से यू नो साइंटिस्ट ये तक के कहते हैं कि जिस दिन इस दुनिया में मधुमक्खी खत्म हो गई, उस दिन ये दुनिया ही खत्म हो
1: दुनिया खत्म हो
0: जाएगी।
1: और मतलब आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है प्रकृति के लिहाज से अगर देखें।
0: वेरी ट्रू। सो वी ब्रिंग अ वेरी स्पेशल प्रोग्राम टुडे डेडिकेटेड टू सम ऑफ द स्मॉलेस्ट येट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिविंग क्रीचर्स ऑन आवर प्लैनेट, द बीज। टुडे द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स वर्ल्ड बी डे, and it's observed every year on 20th of May. This day reminds us the critical role that bees and other pollinators play in keeping people, nature and our planet healthy. And Priyanka, when we hear the word bee, we may think only of honey. But bees are far more than honey makers. These tiny bugs are silent workers behind much of the food that we eat, the flowers we admire and the ecosystems that sustain life itself. Over the next several minutes, we'll journey into the fascinating world of bees, their history with humans, their importance to agriculture and biodiversity, the dangers they face today, and what each one of us can do to help protect them.
1: बिल्कुल सही कहा सायरा, बहुत कुछ तथ्य जानेंगे मधुमक्खी से जुड़े। पर आपको बताएं कि जो विश्व मधुमक्खी दिवस 2018 से दुनिया भर में मनाया जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मधुमक्खियों और परागणों को के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आधिकारिक तौर पर 20 मई 2017 को विश्व मधुमक्खी दिवस घोषित किया था। लेकिन आखिर इस दिन को क्यों चुना गया? ये तारीख एंटन जानशा की जयंती है, जो आधुनिक मधुमक्खी पालन के प्रणेता थे और जिनका जन्म 18वीं सदी में स्लोवेनिया में हुआ था। एंटन जानशा एक ऐसे परिवार से आते थे जो मधुमक्खी पालन का काम करता था। उन्होंने अपना पूरा जीवन मधुमक्खियों को समझने और मधुमक्खी पालन के तरीकों को बेहतर बनाने में समर्पित कर दिया। उनके काम ने आधुनिक मधुमक्खी पालन, जिसे हम एपिकल्चर कहते हैं, उसकी नींव रखी, जो मधुमक्खी पालन का एक वैज्ञानिक तरीका है। विश्व मधुमक्खी दिवस मनाने का प्रस्ताव स्लोवेनिया ने रखा था, और इस बात को समझते हुए कि मधुमक्खियां न केवल किसानों या मधुमक्खी पालकों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए बेहद जरूरी है, और सचमुच वे हैं भी, क्योंकि मधुमक्खियों के बिना हमारी जो हम आहार लेते हैं उसका अगर हम अंदाजा लगाएं, नजारा देखें, तो बिल्कुल अलग होता अगर वो ना होती तो।
0: Absolutely, Priyanka. But let me begin with a simple question. What exactly do bees do? जैसे कि अभी हम लोग ने कहा कि लोगों को सब लगता है कि वो सिर्फ शहद बनाना है, बट मोस्ट बीज हु कलेक्ट यू नो दैट कलेक्ट नेक्टर एंड पॉलन फ्रॉम फ्लावर्स, दे मूव फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, दे ट्रांसफर द पॉलन बिटवीन प्लांट्स, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एंड पॉलिनेशन अलाउज प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस। अब आप बस तसव्वुर कीजिए कि अगर पॉलिनेशन ना हो तो क्या ना हो। विदाउट पॉलिनेशन मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वुड डिसअपीयर, क्रॉप यील्ड्स वुड फॉल एंड इकोसिस्टम्स वुड कोलैप्स। इन फैक्ट साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट नियरली 75% ऑफ द वर्ल्ड्स फूड क्रॉप्स डिपेंड एटलीस्ट पार्टली ऑन पॉलिनेटर्स। दैट मीन्स बीज हेल्प प्रोड्यूस अ वाइड वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स सच एज एप्पल्स, मैंगोज, स्ट्रॉबेरीज, क्यूकम्बर्स, आलमंड्स, कॉफी, कोको, यस इवन चॉकलेट डिपेंड्स ऑन पॉलिनेशन। So the next time you enjoy a cup of coffee or a piece of fruit, remember to thank a bee for that.
1: जी हाँ, अभी हमने जितनी कॉफी पी है, जितने फ्रूट्स खाए अभी तक, उसके लिए पहले धन्यवाद करते हैं मधुमक्खी को। लेकिन मधुमक्खियों से जुड़े बहुत ही दिलचस्प तथ्य भी हैं, वो भी आपको बताते हैं कि मधुमक्खियों के एक ही छत्ते में 60,000 तक मधुमक्खियां हो सकती हैं। काम करने वाली मधुमक्खियां मादा होती हैं और वे छत्ते में ज्यादातर काम करती हैं। एक मधुमक्खी वेंगल डांस नाम की खास हरकत होती है, जिसके जरिए वो दूसरी मधुमक्खियों को बताती है कि फूल कहाँ मिल सकते हैं। शहद कभी खराब नहीं होता। पुरातत्वविदों को प्राचीन मिस्र की हजारों वर्ष पुरानी कब्रों में खाने लायक शहद मिला है। और यही नहीं, सिर्फ एक पाउंड शहद बनाने के लिए एक मधुमक्खी को लगभग 20 लाख फूलों पर जाना पड़ता है। क्या ये कमाल की बात नहीं है सायरा?
0: Absolutely fascinating, and the relationship between humans and bees is very ancient. For thousands of years, people across cultures and civilizations have depended on bees for food, medicine, trade and livelihoods. Early humans hunted wild honey from forests and cliffs. Over time, societies developed organized beekeeping systems adapted to local climates and traditions. In many cultures, bees symbolize hard work, cooperation, prosperity, and harmony with nature.
1: दुनिया भर के ग्रामीण समुदायों में मधुमक्खी पालन परिवारों को आर्थिक रूप से मदद दी।

0: together and how innovation and traditional knowledge can work hand in hand for a sustainable future.
1: जैसे हमने शुरुआत में भी बताया था कि मधुमक्खियों के सामने क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे, तो चुनौतियां ढेर सारी हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन से फूलों के मौसम पर असर पड़ता है, कीटनाशक मधुमक्खी कॉलोनियों को नुकसान पहुंचाते हैं, वनों की कटाई से प्राकृतिक आवास कम हो जाते हैं, यहाँ तक कि प्रदूषण भी मधुमक्खियों की दिशा निर्देश क्षमता को कमजोर कर सकता है। मधुमक्खियां पर्यावरण के स्वास्थ्य की संवेदनशील संकेतक होती हैं। जब मधुमक्खियां गायब हो जाती हैं या तो ये एक चेतावनी का संकेत है कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है वो तनाव में है। और आम लोग क्या कर सकते हैं, यानी आप मैं हम सब क्या कर सकते हैं, सबसे पहले फूल लगाएं, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से बचें, स्थानीय शहद उत्पादकों का समर्थन करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, परागणकर्ताओं के महत्व के बारे में दूसरों को जागरूक करें।
0: And Priyanka, despite their importance, bees and many other pollinators are sadly declining worldwide. This decline is caused by several factors. Of course, habitat loss. As forests and grasslands disappear, bees lose places to live and feed. Pesticides, certain chemicals used in farming can poison bees or damage their nervous systems. Of course, climate change, because changing temperatures and unpredictable weather affect flowering patterns and food availability. Pollution, air pollution can interfere with bees' sense of smell, making it harder for them to find flowers. And of course, diseases and invasive species like bee colonies are increasingly threatened by pests and infections.
1: बिल्कुल, परागण करने वालों की संख्या में गिरावट से भी कई चीजों को खतरा है, जैसे खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पोषण और ग्रामीण आजीविका। यही कारण है कि मधुमक्खियों की सुरक्षा केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि ये मानव अस्तित्व का मुद्दा है।
0: One of the most inspiring messages of World Bee Day 2026 is that both traditional knowledge and modern innovation are needed to protect bees. Traditional beekeeping practices often work in harmony with nature. Meanwhile, modern technologies help monitor hive temperatures, bee health, disease outbreaks, and honey production.
1: सारा वैज्ञानिक ऐसी टिकाऊ कृषि पद्धतियों पर शोध कर रहे हैं जो खाद्य उत्पादन को बनाए रखते हुए परागणों की रक्षा करती हैं। इस वर्ष का आयोजन इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट 2026 और इंटरनेशनल ईयर ऑफ द विमेन फार्मर 2026 से भी जुड़ा है। ये पहले टिकाऊ कृषि और पर्यावरण संरक्षण में ग्रामीण समुदायों, पशुपालकों और महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देती हैं।
0: And some young listeners may be wondering, how can we help? Well, the answer is simple, that every action matters, no matter how small it is. Well, a few ideas are that we can grow bee-friendly plants like sunflowers, lavenders, marigolds, and jasmine. And we should learn about the biodiversity and share our knowledge with friends. Please use social media to spread awareness about the pollinator conservation.
1: तो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें कि अगर जहां मधुमक्खियां ना हो तो खेतों में कम फसलें होंगी, जंगलों में कम फूल, कम भोजन, कम जैव विविधता और एक कमजोर पर्यावरण होगा। अब एक अलग भविष्य की कल्पना करें, एक ऐसा भविष्य जहां खेत परागण अनुकूल हो, जहां समुदाय प्रकृति की रक्षा करें, जहां तकनीक सतत विकास का समर्थन करे और जहां लोग छोटे से छोटे जीवों का भी महत्व समझे। यही भविष्य है और यही संभव है।
0: बिल्कुल संभव है, ओनली इफ वी एक्ट टुगेदर। प्रियंका, द मैसेज ऑफ वर्ल्ड बी डे इज नॉट ओनली अबाउट इंसेक्ट्स, इट्स अबाउट कोऑपरेशन, बैलेंस, रिस्पेक्ट फॉर नेचर एंड अंडरस्टैंडिंग दैट ह्यूमन वेलबींग डिपेंड्स डीपली ऑन द हेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट। एंड एज वी कम टू द एंड ऑफ द सेगमेंट, लेट्स रिमेंबर दैट बीज मे बी टाइनी बट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू लाइफ ऑन अर्थ इज इनॉर्मस। दे नॉरिश इकोसिस्टम, सपोर्ट एग्रीकल्चर, सस्टेन लाइवली and connect humanity with nature in ways we often overlook.
1: और अब समय अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से रूबरू होने का। सायरा कहते हैं कि मेहनत की आंच पर पका सपना कभी अधूरा नहीं रहता। पटना की एक साधारण रसोई से निकली ऐसी ही एक कहानी आज हजारों लोगों के लिए भरोसे और अपनापन का स्वाद बन चुकी है। महज 20 रुपए के टिफिन से शुरू हुआ अम्मा किचन आज न सिर्फ एक सफल कारोबार है, बल्कि संघर्ष से आत्मनिर्भरता तक की प्रेरक मिसाल भी है। कैसे एक महिला ने मुश्किल हालात को हिम्मत से मात देकर अपनी पहचान बनाई, सुनते हैं इस खास रिपोर्ट में निधि श्री की।
2: पटना की व्यस्त गलियों के बीच एक ऐसा किचन भी है

0: जहां सिर्फ खाना नहीं बनता बल्कि हर थाली में मेहनत, अपनापन और संघर्ष की कहानी परोसी जाती है। ये कहानी है देवनी देवी की, जिन्हें लोग प्यार से अम्मा कहकर बुलाते हैं। करीब 20 साल पहले अम्मा ने छात्रों और नौकरी पेशा लोगों के लिए घर जैसा खाना बनाकर टिफिन सेवा शुरू की। उस दौर में एक टिफिन की कीमत महज 20 रुपए थी, लेकिन इरादा बड़ा था, लोगों तक घर के स्वाद और ममता का एहसास पहुंचाना। धीरे धीरे स्वाद के साथ भरोसा जुड़ता गया और एक छोटे कमरे से शुरू हुई ये पहल लोगों की जरूरत बन गई। आज अम्मा किचन रोजाना 300 से ज्यादा लोगों तक खाना पहुंचा रहा है और पटना में एक भरोसेमंद नाम बन चुका है।
1: कोई तरह के खाना, घर के खाना हम अच्छे से अच्छा बना लेते हैं, यही कला था। ऊपर वाला के नाम लिए सोच के हम इसको अम्मा किचन खोले थे।
0: अम्मा बताती हैं कि शुरुआत संघर्षों से भरी थी, कई बार परिस्थितियां कठिन हुई, परिवार का साथ भी शुरू में पूरी तरह नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मेहनत और लगन ने धीरे धीरे हालात बदले और परिवार भी इस सफर का हिस्सा बनता चला गया। आज अम्मा किचन सिर्फ एक कारोबार नहीं बल्कि कई परिवारों की आमदनी का सहारा भी है। परिवार के सहयोग से यहां 25 से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अम्मा के बेटे बताते हैं कि कभी छोटी शुरुआत करने वाला ये किचन आज करोड़ों के सालाना कारोबार तक पहुंच चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह अम्मा का संघर्ष और लोगों का विश्वास है। यहाँ खाना खाने वाले लोगों के लिए भी अम्मा किचन सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि घर से दूर घर जैसा एहसास है। एक छोटे से टिफिन सेंटर से शुरू हुई ये यात्रा आज आत्मनिर्भरता, संघर्ष और विश्वास की मिसाल बन चुकी है। ये कहानी बताती है कि जब हौसले मजबूत हों तो एक साधारण रसोई भी हजारों लोगों की जिंदगी में स्वाद के साथ उम्मीद खोल सकती है। परिक्रमा के लिए पटना से सत्यम कुमार के साथ निदेश्री।
2: Indeed, a very, very inspiring story of Amma's kitchen. And Priyanka, now from Patna, we head towards Bengaluru. Well, a new excavation at Hampi World Heritage Site by the Archaeological Department has discovered the existence of temples and other artifacts. Hampi was the capital of Vijayanagar Empire that ruled in South India from 1336 to 1646. Let's hear more from our correspondent.
3: The Hampi ruins, known for its enchanting single stone chariot and other monuments, is visited today by foreign and Indian tourists. Once a bustling capital of Vijayanagar Empire, it is today a protected monument and a UNESCO World Heritage Site next to Tungabhadra River. Under the direction of central government, the archaeological department has started excavation of a site near the Jain Basadi complex close to the elephant stables. This excavation has led to amazing discovery of a stone roof of a temple belonging to the Vijayanagar era. In its early stage of excavation, the archaeologists are hoping for unraveling a whole temple complex under the surface. During the excavation, they also unearthed a beautiful elephant sculpture near the Hazara Rama temple within Hampi. Speaking to Akashwani about this important development, the superintendent archaeologist from the department, K. Radhakrishna, has shared these details.
4: During excavation, we exposed a roof of a temple. After clearing the vegetation, removal of the soil, maybe a garbhagruha, it may 4.5 meter length and 4.3 meter width. Presently, only the roof is visible, and remaining wall portion and this foundation we have to expose.
3: Hampi is the treasure trove of historical monuments. Over 1,600 surviving remains of forts, temples, shrines, pillared halls, mandapas, gateways, stables, lotus mahal, and spectacular landscape with Tungabhadra River attracts several thousand tourists every year. The discovery of new temple roof has awakened a hope that as the excavation progresses, new aspects of the Vijayanagar Empire may unravel in the days to come. With Purnima in Hampi, this is Sudhindra for Parikrama in Bengaluru.
5: Saira, Karnataka ke jo madhya mein sthit hai Hampi, isko prachin itihas ke liye 1986 mein यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, तो हम लोग कितने समृद्ध हैं हर लिहाज से। अब बात करते हैं शिमला की कि वहां तकनीकी लिहाज से क्या कुछ हो रहा है खास। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए बहुआयामी प्रयास कर रही है। तकनीकी शिक्षा और वोकेशनल ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार प्रदाता के रूप में स्थापित करना है। इसके अतिरिक्त राज्य में सूक्ष्म लघु उद्यमों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट सुनते हैं प्रभा की और जानते हैं इसमें क्या है।
6: हिमाचल प्रदेश में युवाओं के नवोन्मेषी विचारों और उनके हुनर को मंच प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। विभिन्न तकनीकी संस्थानों के प्रशिक्षुओं को उद्यमशीलता की ओर प्रोत्साहित करने के लिए राज्य का उद्योग विभाग प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त बाजार की मांग के अनुरूप AI यानी

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे माध्यमों से प्रशिक्षुओं की सॉफ्ट स्किल्स को निखारा जा रहा है ताकि वे भविष्य के अवसरों का अधिकतम लाभ उठा सकें। प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। राज्य में एशियन डेवलपमेंट बैंक और अन्य संस्थाओं द्वारा कई परियोजनाएं वित्त पोषित की जा रही हैं। बागवानी, प्राकृतिक खेती और डेयरी तकनीक जैसे क्षेत्रों में विषय विशेषज्ञों की बढ़ती मांग को देखते हुए तकनीकी संस्थानों में इन विषयों का समावेश किया जा रहा है। वर्तमान समय की तकनीक की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुशल कार्यबल तैयार किया जा रहा है। क्षेत्र संबंधित समस्याओं के समाधान में इन संस्थानों के प्रशिक्षु उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं। नगर निगम मंडी में स्ट्रीट लाइटों से संबंधित समस्या के समाधान में ITI मंडी के प्रशिक्षुओं ने उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसके तहत नगर निगम मंडी को 496 स्ट्रीट लाइट्स उपलब्ध करवाई गई हैं, जिससे क्षेत्र की स्ट्रीट लाइट से संबंधित समस्या का समाधान सुनिश्चित हुआ है। इसके अलावा प्रदेश के युवाओं के लिए राज्य में स्किल अकेडमी और डिजिटल यूनिवर्सिटी भी स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण को केंद्र में रखकर प्रदेश में सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा दे रही है। निश्चित तौर पर प्रदेश की भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखकर तकनीकी विशेषज्ञता के साथ क्षेत्रीय स्तर की कार्य योजनाएं युवाओं के कौशल विकास को बढ़ाने में मददगार साबित होंगी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं प्रभा शर्मा।
1: और अब खेल के मैदान का रुख करते हैं। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया और इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बनी हुई हैं।
2: And if we look at the business world, Priyanka, well, benchmark domestic equity indices rebounded from earlier losses and ended with marginal gains today. Sensex rose 118 points to close at 75,318, while Nifty added 41 points to settle at 23,659. For more updates about the market activities, tune into Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 in the evening.
1: और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
3: In today's episode, we remember great nationalist Bipin Chandra Pal, who died on the 20th of May 1932. He's widely known as the part of the famous trio of Lal Bal Pal, comprising Lala Lajpat Rai and Bal Gangadhar Tilak.
4: Bipin Chandra Pal, popularly known as the Bengal Tiger, was considered one of the most independent and outspoken thinkers. In the wake of the partition of Bengal in 1905, the British government came out with repressive measures to contain students' participation in the struggle. One of them was the Carlisle Circular, which was issued by the Chief Secretary of Bengal, Thomas Carlyle. Bipin Chandra Pal protested strongly against the circular and advocated for education on nationalistic lines. In one of his lectures, he said,
3: "Why should politics be tabooed from our university and our schools? Do they do it in England? Is politics condemned even in the public schools of England? In the universities, do they not discuss patriotic and academical problems, but actually deal with the burning political questions of the day?"
4: Bipin Chandra continued to work for the nation till his death. We salute the great nationalist.
3: We also remember Andhra Kesari Tanguturi Prakasam, who died on the 20th of May 1957. Prakasam protested against the Simon Commission and took part in the Salt Satyagraha and the Quit India movement.
4: Prakasam was born on the 23rd of August 1872 in Guntur district of present-day Andhra Pradesh. In 1904, Prakasam went to study law in the United Kingdom. During his time in the UK, he interacted with Indian nationalist leaders like Dada Bhai Naroji, Ramesh Chandra Dutt and Lala Lajpat Rai. The nascent interest he developed in the Indian independence movement was then fueled when he returned to India and started practicing at the Madras High Court. Inspired by the speeches of Bipin Chandra Pal, who was campaigning in Madras during the early 1900s, Prakasam decided to give up his law practice and devote his life to the independence movement.
3: Prakasam took an active part in the protests against the Simon Commission and led the successful Salt March in the Madras Presidency. He was arrested for his participation.

0: Asian in the Quit India movement. He was popularly known as Andhra Kesari, the Lion of Andhra, for his valor during protests against the Simon Commission. He started the newspaper Swarajya in English, Tamil and Telugu. The newspaper served as a platform for his involvement in ground-level politics.
1: Prakasam was elected to the Madras Provincial Legislature in 1937 and served as the Revenue Minister. He won the elections again in 1946 and became the Chief Minister of Madras Presidency. Prakasam was also elected to the Constituent Assembly from Madras.
0: After independence, Prakasam worked towards the creation of the state of Andhra Pradesh on linguistic lines. He formed the Hyderabad State Praja Party in 1952. Prakasam was appointed as the first Chief Minister of the newly formed state of Andhra Pradesh in 1953. Till his death on the 20th of May 1957, Prakasam continued to work for the weaker sections of the society. We salute the great Indian.
1: We also remember Indian National Army member Lance Naik Hari Ram. A resident of Haryana, Hari Ram served in the 3rd Guerrilla Regiment of INA and was martyred in action near Indo-Burma borders on the 20th of May 1944. We salute the great son of the soil.
2: और अब आगे महान विभूतियों को याद करें तो इन पंक्तियों से शुरुआत करते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। जी हाँ, इन चंद पंक्तियों में अपने मन की बात कह देने वाले महान कवि सुमित्रा नंदन पंत की आज जयंती है। उनकी गिनती हिंदी कविता के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभ महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ की जाती है। सुमित्रा नंदन पंत बहुत ही संवेदनशील कवि थे और प्रकृति के बेहद करीब थे। अगर आप उनकी रचनाओं को पढ़ें तो ऐसा लगता है कि वे प्रकृति से बात कर रहे हों और शायद ही उनकी उनके लिए इसके अलावा कुछ भी और सोच पाना मुमकिन हो। जैसे कि इन पंक्तियों में झलकता है कि छोड़ ध्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन।
3: And yes, a very, very celebrated poet of 20th century, known for romanticism in his poems, which were inspired by nature, people, and the beauty they carry. And Priyanka, we are very fortunate that Akashvani Archives mein unhi ki awaaz mein hamare paas ek audio hai. Let's share it with our listeners.
4: आओ गाएं पिछले मूल्यों में पथराए मानव के मन को समझाएं पिछले मूल्यों में पथराए मानव के मन को समझाएं यह धरती के मन का पतझर निश्चरित्र अब नग्न दिगंतर यह धरती के मन का पतझर निश्चरित्र अब नग्न दिगंतर संशय त्रास अनास्था का तम नए ज्योति घट भर नहलाएं।
2: और अब आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक संगीत में प्रतिष्ठित नाम एमडी रामनाथन को आज हम याद कर रहे हैं। आज ही के दिन 1923 में केरल में उनका जन्म हुआ था। महान संगीतज्ञ थे और उनकी गायकी का अद्भुत अंदाज था। उनको इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई उनके बारे में क्या कहता है, वो सिर्फ संगीत में आनंद की अनुभूति करते थे। उन्हें 1974 में पद्मश्री से अलंकृत किया गया, 1975 में संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत किया गया। आइए सुनते हैं उनकी गायन की एक बानगी।

0: Today is also the birth anniversary of John Stuart Mill, a very renowned philosopher, political economist, politician and civil servant, one of the most influential thinkers in the history of liberalism and social liberalism. He contributed widely to social theory, and political economy. Dubbed as the most influential English-speaking philosopher of the 19th century by Stanford Encyclopedia of Philosophy, he conceived of liberty as justifying the freedom of the individual in opposition to unlimited state and social control.
1: और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा का भी आज जन्मदिन है. उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. इतना ही नहीं, वनडे मैच में 1000 रन बनाने वाली अंजुम चोपड़ा पहली भारतीय महिला क्रिकेटर रही हैं. और आज तेलुगु सिनेमा के अभिनेता जूनियर एनटीआर का जन्मदिन

हैं, उनका असली नाम नंदामूरी तारक रामा राव जूनियर है। और अगर हम बात करें कि जो एसएस राजा मौली द्वारा निर्देशित फिल्म आरआर के बारे में, उनका ये गीत जो उन पर फिल्माया गया था, उसे कौन भुला सकता है।

मीडियम वेव 3.08 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्स और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब आप हमारा प्रसारण डीटीएच और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: हाथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया अरचोका भेलकक्ष पेंडारी बोदरई शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के सूरजपुर में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये मोहनपुर हरिपुर सुंदरगंज बोझा मायापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर रामानुजगंज और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 26 है। ये मिंढारी प्रेमनगर भगवानपुर नवापारा चिनिया महावीरगंज रामपुर कनक कुंदीकला जामदोहर अखोरा बदौली जवा खाड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर लुंड्रा उदयपुर सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये पूर्णपा घंघरी सकालो सरगवा गुल्हाड़ी पड़ौली अमड़ी किशुनपुर मिर्गाडांड मनोहरपुर पंडरीपानी डांडगांव पेटला ललितपुर सरगा बरवाली बरडांड दांतीढाप कंडराजा बैगहवा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर जामचुआ बिलासपुर चरईमारा रानी कोम्बो हस्तिनापुर खड़ा माचा पीठा आमा राजा आमा महेशपुर झिमकी कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ मंडल के छाल धर्मजयगढ़ कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 133 है। ये गिरसा पोटिया आमगांव रुपुंगा तेजपुर बेहरामार बनहर अवरानारा पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा लालडी झुनकीडी कुकरी कादर डंग बोरा कोदवारी खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये बंगूरसिया नवागांव चक्रधरपुर जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़ बिलाई रायगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी नवापारा सरायपाली गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये पकरीत कोठारी गुड़ागढ़ फुरफुंदी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़ अमलोर ताराजह डडईपानी बुडार सिंहार छिंदौला लूठापारा नारीपानी डूमरघाट कोदोमाली मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार दोस्तों मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का।

आइए पहले हम आपको बताते हैं आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स स्कैन का समय होगा रात 8:30 पर। 9:30 पर सुनिएगा चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर होगा युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवावाणी। इसमें आजकल में चर्चा का विषय होगा उद्यमिता की ओर कदम। साथ ही सुनिएगा पत्र मिला और यादें। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 6:30 पर कलाकार होंगे नीलिमा शर्मा और साथी। इसी कार्यक्रम में 8:15 पर कलाकार होंगे कमलेश शर्मा। 7:21 पर किसान साथी सुन सकेंगे कार्यक्रम चौपाल। इसमें सुनिएगा चिट्ठी मिलिस और गर्मी में पौधों में जल मांग के अनुसार सिंचाई व्यवस्था विषय पर आज की बात में चर्चा। आज की सलाह का विषय होगा किसानों के लिए मछलियों के लाभदायक प्रजातियों का सही चुनाव। विशेषज्ञ होंगे बसंत सिंह, सहायक प्राध्यापक पॉलिटेक्निक मत्स्य पालन धमधा। 10:00 सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का गाया राग बिहाग में ख्याल। चित्रपट संगीत का आप आनंद ले सकेंगे शाम 7:00, 8:00 और रात 9:15 पर। ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। संदेश टू सोल्जर, ये कार्यक्रम सुनेगा कल शाम 4:00। कल रात 8:30 पर होगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर का समय होगा कल सुबह 7:05 पर। बच्चों के छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम बालवाटिका में कल सुबह 8:30 पर सुनिएगा हिंसा कभी भी अच्छा नहीं होए विषय पर बेरा के बाद में चर्चा। आवो सुनन कहिनी, इसमें सुनिएगा श्री भोलाराम सिन्हा से कहिनी। साथ ही सुनिएगा लैका मन की चिट्ठी और बालकी। प्रगति के सोपान में कल सुबह 9:00 सुनिएगा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम पर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर के मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज साहू से भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे रमाशंकर। लोक संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:40 पर और कल रात 8:15 पर कलाकार होंगे सीमा कौशिक और साथी। इसी कार्यक्रम में कल शाम 6:30 पर कलाकार होंगे गोरीलाल बर्मन और साथी। गैर फिल्मी गीत गजल और कव्वाली के कार्यक्रम स्वरधारा में कल सुबह 10:00 कलाकार होंगे जगजीत सिंह और मीनल जैन। श्रोताओं की पसंद पर आधारित ईमेल भेजें। फिल्म संगीत सुनने का समय होगा कल सुबह 11:05 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 5:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवावाणी।

0: दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है,
1: जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में।
0: युवाणी सुन रहे सभी युवा साथियों का कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और मैं हूं आज आपका साथी दीपक कुमार तिवारी
1: और मैं आपकी साथी मल्लिका सुभाषीष। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार। साथियों, आज के युवा सिर्फ नौकरी पाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहते बल्कि वे कुछ नया भी करना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने दीपक, और यही सोच उद्यमिता की नींव है। जब कोई युवा अपने विचारों को काम में बदलने का साहस करता है, जोखिम उठाता है और दूसरों के लिए भी मौके तैयार करता है, तब वही उद्यमी बन जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा मल्लिका। अक्सर लोग सोचते हैं कि उद्यमिता मतलब बड़ा बिजनेस, बड़ी कंपनी, बहुत सारा पैसा, लेकिन क्या उद्यमिता सिर्फ यही है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। उद्यमिता का मतलब केवल करोड़ों का बिजनेस करना नहीं है दोस्तों। अगर कोई अपने हुनर, मेहनत और सोच के दम पर कोई काम शुरू करता है तो वो भी उद्यमिता ही है।
0: यानी एक छोटी सी शुरुआत भी उद्यमिता हो सकती है।
1: बिल्कुल। अच्छा, मान लो कोई स्टूडेंट घर से ऑनलाइन नोट्स तैयार करके बेच रहा हो, या कोई स्टूडेंट घर से बने उत्पाद सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा रहा हो, या कोई किसान नई तकनीक से खेती कर रहा हो, ये सब उद्यमिता ही तो है।
0: मतलब उद्यमिता का असली संबंध साथियों सोच से है, सिर्फ पूंजी से नहीं, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और साथियों, एक समय था जब अधिकतर युवाओं का लक्ष्य सिर्फ सरकारी नौकरी पाना था।
1: था दीपक, पर आज भी लोग नौकरी का अपना महत्व समझते हैं, लेकिन अब युवाओं की सोच में बदलाव आ रहा है। वो ये समझने लगे हैं कि अगर अवसर नहीं मिल रहा तो अवसर बनाया भी जा सकता है।
0: और मल्लिका, शायद यही वजह है कि आज छोटे छोटे शहरों और गांवों से भी नए नए स्टार्टअप्स सामने आ रहे हैं।
1: बिल्कुल, इंटरनेट और डिजिटल तकनीक ने बहुत कुछ बदल दिया। अब किसी छोटे शहर का युवा भी अपने उत्पाद देश भर में बेच सकता है। सोशल मीडिया ने प्रतिभा को मंच दिया है।
0: बिल्कुल, और साथियों यही आत्मनिर्भरता की असली भावना भी है।
1: बिल्कुल दीपक, कई युवा ये सोचते रहते हैं कि हमारे पास कोई बड़ा आइडिया नहीं है, लेकिन सच कहूं तो बड़े उद्यम अक्सर छोटी समस्याओं के समाधान से ही शुरू होते हैं।
0: क्या बात है। अगर आप अपने आसपास ध्यान से देखें साथियों, तो हर जगह जरूरतें दिखाई देंगी आपको।
1: बिल्कुल, जैसे किसी इलाके में अच्छी कोचिंग नहीं है, कोई युवा ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: अगर लोगों को शुद्ध घरेलू भोजन नहीं मिल रहा तो टिफिन सर्विस शुरू की जा सकती है। अगर स्थानीय कला का बाजार नहीं मिल रहा तो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है।
0: यानी उद्यमिता का पहला कदम है समस्या को पहचानना और समाधान की तरफ सोचना।
1: बिल्कुल दोस्त, और इसके लिए सबसे जरूरी है शुरुआत करने का साहस।
0: मल्लिका, कई लोग कहते हैं कि बिना पैसे के बिजनेस शुरू नहीं हो सकता।
1: देखो दीपक, पूंजी जरूरी जरूर होती है, लेकिन शुरुआत के लिए हमेशा बहुत बड़ी रकम जरूरी नहीं होती। आज कई ऐसे काम हैं जो कम इन्वेस्टमेंट से शुरू हो सकते हैं।
0: बिल्कुल, जैसे ऑनलाइन सर्विसेज, कंटेंट क्रिएशन, हस्तशिल्प और फूड स्टार्टअप।
1: बिल्कुल, और आज सरकार की कई योजनाएं भी युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है। बैंक लोन, प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्टार्टअप सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध है।
0: बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी पूंजी होती है हमारा आत्मविश्वास।
1: सही कहा तुमने, अगर इंसान सीखने और मेहनत करने को तैयार है तो धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं।
0: एकदम सही कहा दोस्त। उद्यमिता की राह साथियों आसान नहीं होती है, कई बार मेहनत के बावजूद सफलता जल्दी नहीं मिलती।
1: और यही वो समय होता है दोस्तों जब इंसान की असली परीक्षा होती है। कई लोग एक असफल कोशिश के बाद रुक जाते हैं,
0: लेकिन सफल वही लोग होते हैं जो गिरकर फिर से उठते हैं।
1: बिल्कुल, असफलता हमें अनुभव देती है, ये बताती है कि कहाँ सुधार की जरूरत है।
0: और मुझे हमेशा ये लगता है कि उद्यमिता हमारे जीवन का सबसे बड़ा पाठ हमें सिखाती है, वो है धैर्य
1: और आत्मविश्वास भी।
0: बिल्कुल, अगर कोई युवा उद्यमिता की ओर कदम बढ़ाना चाहता है तो उसमें कौन सी खूबियां होनी चाहिए, आइए जानते हैं।
1: सबसे पहले सीखते रहने की आदत। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है दोस्तों, जो सीखना बंद कर देता है वो पीछे छूट जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और दूसरी बात, अनुशासन, अपने समय और काम को व्यवस्थित करना जरूरी है। और तीसरी बात दोस्तों, लोगों से संवाद करने की क्षमता, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स।
0: और मैं इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा मल्लिका।
1: हाँ,
0: वो है ईमानदारी।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि व्यापार सिर्फ सामान का नहीं होता बल्कि भरोसे का भी होता है।
1: सही कहा तुमने, लोग उसी व्यक्ति से जुड़ते हैं जिस पर उन्हें विश्वास हो।
0: बिल्कुल। और मल्लिका, आज कई युवा बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन शुरुआत करने से डरते हैं।
1: क्योंकि उन्हें लगता है कि शुरुआत बहुत बड़ी होनी चाहिए, जबकि सच ये है कि हर बड़ा कदम छोटी सी स्तर से ही शुरू होता है।
0: एक छोटा कदम, रोज की थोड़ी सी मेहनत और लगातार सीखना, यही आगे चलकर आपको बड़ी सफलता भी देता है।
1: और सबसे जरूरी बात दोस्तों, खुद की तुलना दूसरों से मत कीजिए, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है।
0: बिल्कुल दोस्तों, उद्यमिता सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, ये अपने सपनों पर भरोसा करने की ताकत भी है।
1: यह वह रास्ता है जहां इंसान खुद आगे बढ़ता है और दूसरों के लिए भी अवसर बनाता है।
0: अगर आपके अंदर कोई विचार है, कोई हुनर है, तो उसे सिर्फ सोचिए मत, उस दिशा में पहला कदम भी बढ़ाइए,
1: क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है जो कोशिश करने का साहस रखते हैं।

0: बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ शत प्रतिशत प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
1: असली नोट से क्यों खेल रहा है
2: ब्रो? ये फटा है।
3: सुन, फटे फटे पुराने नोट को
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
0: कुछ अल्फाज मुस्कान बनकर आते हैं, कुछ संदेश अपनेपन का एहसास दिलाते हैं। आपके इन्हीं प्यार भरे खतों और संदेशों के साथ शुरू करते हैं आपका और हमारा खास क्रम पत्र मिला।

0: तो चलो दीपक, बताओ खतों की इस दुनिया में पहला खत कहाँ से आया है?
1: बिल्कुल मलिका, ये पहला पत्र हमें आया है दरचूरा से ददुआ साहू भूरी रेखा और मोतीलाल साहू का। ये लिखते हैं, 1 मई की शाम क्रमार्दर्शन में ममता सोनी से अतुल कुमार की बातचीत हमने सुनी। विषय था जन शिक्षा संस्थान कौशल विकास मजदूर दिवस। इस विषय पर विस्तार से जानकारी इन्होंने हमें सुनवाई। हमारे कॉम्पियर साथी विदिशा वर्मा और मल्लिका सुभाषीष का कार्यक्रम बेहद पसंद आया। अच्छी प्रस्तुति के लिए इन्हें ढेर सारी बधाई। और मल्लिका, इन्होंने 11 मई के लिए भी हमें पत्र भेजा है, तो तुम्हारा ये जो तारीफ वाला पत्र है, ये कैसा लग रहा है सुन के?
0: क्रम पत्र मिला, मेरी तारीफ से शुरू हो तो दीपक तुम सोच लो कि ये क्रम मेरे लिए कितना खास बन जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 1 मई के कार्यक्रम के लिए अपनी प्रतिक्रिया, अपनी प्रशंसा हमें भेजी। इस दिन मार्गदर्शन में युवा कौशल प्रशिक्षण, श्री अतुल कुमार सिंह निर्देशक जन शिक्षण संस्थान से ममता सोनी की बातचीत आपने सुनी क्रम मार्गदर्शन में, जिसको आपने पसंद किया। साथ ही मेरी और विदिशा वर्मा की कार्यक्रम की प्रस्तुति आपको पसंद आई, हम आपकी बधाई स्वीकार करते हैं और माइक्रोफोन के जरिए युवाणी अनुभाग को भी आपकी बधाई प्रेषित करते हैं। दीपक, अगला पत्र कहां से आया है?
1: मलिका, ये अगला पत्र हमें आया है नर्मदा धाम सुरसुली से कैलाश यादव, सुरेश टीकेंद्र और योगेश यादव का। ये लिखते हैं, सोमवार 4 मई को युवाणी का कार्यक्रम हमने सुना, जिसमें क्रम सर्जना में सृष्टि बागरेचा से कविता पाठ सुनने को मिला, जो हमें बेहद प्रेरणादायक लगा। क्रम इंद्रधनुष में अभिनेत्री और निर्माता अनुष्का शर्मा से के बारे में, उनके करियर के बारे में जानकारी भी हमें सुनने को मिली, जो बेहद ही प्रेरणादायक लगी। कार्यक्रम में प्रसारित सभी गीतों ने हमारा मन मोह लिया और 4 मई की युवाणी के प्रेरणादायक शिक्षाप्रद और मनोरंजन परक प्रस्तुति के लिए मल्लिका सुभाषीष और शिया चक्रवर्ती के साथ साथ सृष्टि बागरेचा को भी ढेर सारी बधाई।
0: साथियों, आपने 4 मई का कार्यक्रम सुना और उसके लिए आपकी प्रशंसा हमें मिली, इसके लिए हम दिल से आपका धन्यवाद कहते हैं। उस दिन आजकल का विषय था डिजिटल युग में ध्यान भटकाव से कैसे बचे। साथ ही क्रम सर्जना में आपने श्रुति बागरेचा से कविता पाठ सुना और इंद्रधनुष क्रम में अनुष्का शर्मा के बारे में कई जानकारी दी गई और उनके फिल्म के गीत सुनाए गए जो आपको पसंद आए। हम आपकी बधाई स्वीकार करते हैं और माइक्रोफोन के जरिए श्रुति बागरेचा और श्रिया चक्रवर्ती को भी आपकी बधाई प्रेषित करते हैं। ऐसे ही कार्यक्रम सुनते रहिए और प्यारे प्यारे पत्र भेजते रहिए। अब दीपक, ये जो अगला पत्र आया है, ये आया है 6 मई के लिए, और ये पत्र जो है, इसमें इन्होंने लिखा, उस दिन आजकल की शुरुआत हुई तनाव को कैसे काबू करें, इस विषय के बारे में बातचीत करके। साथ में उस दिन कई सारे पत्रों को क्रम पत्रमला में शामिल किया गया और क्रम यादें में ढेर सारे प्यारे प्यारे गीत सुनवाए गए, और इस दिन कार्यक्रम प्रस्तुत किया था हमारे कंपेयर साथी दीपक तिवारी और सृष्टि तिवारी ने। और ये जो पत्र है, ये हमें भेजा है बेमितरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा, हेमलता, कमलकांत, वीरेंद्र, वृजकांत सारथी ने, और साथ ही इन्होंने 8 मई के लिए भी हमें बधाई पत्र भेजा है। तो दीपक, क्या कहना चाहोगे तुम?
1: यही कहना है मलिका कि तुम्हारी आवाज़ सुन लूं तो मिल जाता है सुकून दिल को, मेरे गमों का इलाज भी कितना सुरीला है।
0: क्या बात है,
1: श्रोताओं के आवाज़ का दौर तो लगातार हेलो युवाड़ी में सुनते ही हैं मलिका, पर आज क्रम पत्र मिला में हमारे श्रोताओं के इतने अच्छे ईमेल्स और पत्र हमारे सामने हैं, ऐसा लगता है कि हम कार्यक्रम सुनते रहें और हमारे श्रोता साथियों के जो भाव हैं वो हमें इस तरह मिलते हैं कि लगता है कि कार्यक्रम और अच्छा होता रहे। बहरहाल, आपने कार्यक्रम सुना, आपकी बधाई हम साथी सृष्टि तक पहुँचा रहे हैं। इसी तरह कार्यक्रम सुनते रहिए और अपने मोहब्बत से हमें नवाजते रहिए।
0: बिल्कुल। तो इसी के साथ साथियों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला पत्र कहाँ से आया है।
1: और मल्लिका, ये अगला पत्र आया है 8 मई की युवाणी के लिए शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन और बाड़ी वर्मा का। ये लिखते हैं, खेल चौपाल के अंतर्गत नवीन समाचार हमें मालूम हुए। कॉम्पियर साथी सौरव और सूर्या के द्वारा जिंदगी में सफलता और असफलता कैसे मिलती है, इस चर्चा ने हमें प्रभावित किया। अगर सीखना चाहो तो हर सफलता भी हमें कुछ न कुछ सिखाती है। सफलता का चिराग परिश्रम से ही जलता है और हमें प्रसन्नता भी सफलता से ही मिलती है। इन्होंने यह भी लिखा है कि बिना परिश्रम के मानव जीवन का कोई भी पाठ पूरा नहीं होता है। कार्यक्रम की सफलतापूर्वक प्रस्तुति के लिए सौरव शर्मा और सूर्या तिवारी को बहुत बहुत बधाई।
0: साथियों, उस दिन कार्यक्रम का जो विषय था वो था समस्या देखकर हार मत मानो, और आपने अपने पत्र में बहुत खूबसूरती से अपने विचार हमसे साझा किए हैं। आपने क्रम खेल चौपाल की तारीफ की और साथ ही उस दिन आपने क्रम ज्ञान सरिता सुना। ये दोनों ऐसे क्रम हैं दीपक जिससे हमारे श्रोताओं को कई नई जानकारी मिलती है।
1: बिल्कुल,
0: आपकी बधाई हम स्वीकार करते हैं और माइक्रोफोन के जरिए सौरभ और सूर्या को भी बधाई प्रेषित करते हैं।
1: और मलिका, ये अगला पत्र हमें मिला है चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी, रिहाना बेगम और मोहम्मद साजिद का। ये लिखते हैं, 15 मई को युवाणी के जश्न आवाज में डॉक्टर शीला श्रीधर से मलिका शुभाशीष की बातचीत जो हमें सुनवाई गई वो बेहद अच्छी लगी। डॉक्टर साहब ने अपने बीते दिनों की याद ताज़ा करते हुए बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बतलाई जिसे सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहिबा से इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए मलिका शुभाशीष को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज तो तुम्हारे नाम के बहुत सारे पत्र हैं, कैसा लग रहा है?
0: इससे समझ आ रहा है कि हमारे श्रोता साथी हम सभी कंपेयर से कितना प्यार करते हैं जो अपना समय निकाल के इतने खूबसूरत पत्र हमें लिखकर भेजते हैं।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, इस पत्र के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और ये क्रम जश्न आवाज़ हमारे दिल के बहुत करीब था क्योंकि ये आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के रूप में, जश्न के रूप में हम इस क्रम को मना रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: और उस दिन डॉक्टर शीला श्रीधर से जो हमारी बातचीत हुई वो काफ़ी अच्छी थी। मतलब उस दिन जब वो बात कर रहे थे ना दीपक, तो हमें हमारे पहले शुरुआती दिन याद आ रहे थे।
1: बिल्कुल,
0: तो साथियों आपके इस प्यार के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही कार्यक्रम सुनते रहिए और अपने पत्र में भेजते रहिए। अब इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ते हैं ईमेल की तरफ और देखते हैं हमें ईमेल कहां से आए हैं।
1: साथियों, ईमेल आया है करही भदर से पुरुषोत्तम निर्मलकर, गीतिका गुड़िया, श्रद्धा लोचन विद्यार्थी निर्मलकर का। 13 मई की युवाणी के लिए ये ईमेल हमें आया है अपेक्षा शुक्ला और रोशनी पांडे के लिए आया है मलिका। ये लिखते हैं कि जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उद्देश्य नहीं होगा तो व्यक्ति बिना लक्ष्य के भटकता रहेगा, मन की इच्छाओं को प्राप्त नहीं कर सकेगा। लेकिन जीवन में उद्देश्य का होना भी बेहद ज़रूरी है और उसी उद्देश्य को आधार बनाकर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बातचीत हुई, इसके लिए दोनों कंपेयर साथियों को बहुत बहुत बधाई। क्रम पत्र मिला की शुरुआत ईमेल से की गई, सभी पत्रों के उत्तर संतोषजनक भी लगे। साथ ही क्रम युगल गीत में मधुर गीत और युवाणी की बेहद अच्छी प्रस्तुति हमें लगी, इसके लिए कॉम्पियर साथी रोशनी पांडे और अपेक्षा शुक्ला को हार्दिक बधाई। और मलिका, इस दिन के लिए हमें इन साथियों ने भी ईमेल भेजा है। चांदनी चौक गंडी पंडरिया से पवन कुमार, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन ने। लोरमी ग्राम चचड़ी से कमलकांत, प्रमीला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी ने। परसा टोला से ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी तुषाणी और खुमेंद्र मसीहा ने। धरसीमा से छेदूलाल यादव, सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना, रानू, खुशी, प्रवीण कुमार साहू और इकबाल कुरैशी ने। दुर्गा पारा संतोषी नगर से हैं छन्नूलाल यादव, पुष्पलता, अर्पिता, अभिनव बलदाऊ, राजेश्वरी आस्था यादव, अनुराग अभिषेक और डुग्गू कान्हा यादव ने।
0: युवाणी कार्यक्रम के प्रति आपके स्नेह, प्रोत्साहन और सराहना भरे शब्दों के लिए हार्दिक धन्यवाद। 13 मई के कार्यक्रम को प्रस्तुत किया था हमारी कंपेयर साथी अपेक्षा शुक्ला और रोशनी पांडे ने। उस दिन आजकल का विषय था जीवन में उपदेश का महत्व क्या है, और साथ ही क्रम पत्र मिला और युगल गीत को आपने ध्यानपूर्वक सुना और अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया हमें भेजी, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपका ये उत्साह और सहयोग हमें निरंतर बेहतर प्रस्तुति के लिए प्रेरित करता है। रोशनी पांडे और अपेक्षा शुक्ला की ओर से हम आपकी बधाई स्वीकार करते हैं और उन्हें माइक्रोफोन के जरिए आपकी बधाई प्रेषित करते हैं।
1: तो मलिका, ये बताओ कि अगला ईमेल कहाँ से आया है?
0: ये अगला ईमेल जो है दीपक, ये आया है चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद कालेंद्री लहरे का। और ये पत्र भी है 13 मई के लिए। इसमें इन्होंने 13 मई के युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत आजकल क्रम पत्र मिला और क्रम युगल गीत सभी कार्यक्रमों की प्रशंसा की है। साथ ही इन्होंने 11 मई के कार्यक्रम के बारे में लिखा है कि 11 मई के हेलो युवाणी क्रम के संबंध में एक सुझाव है। मैंने जिस फिल्म के गीत की फरमाइश की थी उसके स्थान पर दीपक तिवारी द्वारा उसी फिल्म का दूसरा गीत सुनवाया गया। कार्यक्रम के दौरान दीपक ने यह भी पूछा कि मेरा फ़ोन कब लगा, तब मैंने बताया कि लगभग 6 महीने बाद मेरा फ़ोन कार्यक्रम से जुड़ पाया है। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया, ये अच्छी बात है, पर मेरी फरमाइश के अनुसार वही गीत सुनवाया जाता तो और अधिक खुशी होती। आपसे विनम्र निवेदन है कि श्रोताओं द्वारा जिस गीत की फरमाइश की जाए, हो सके तो उसी गीत को हमें सुनवाने का प्रयास करें। तो दीपक, क्या कहना चाहोगे?
1: मलिका, यही कहना है कि युवाणी कार्यक्रम के प्रति हमारे श्रोता साथियों के स्नेह और आत्मीयता के लिए उन्हें बहुत शुक्रिया। 13 मई के आजकल पत्र मिला और युगल गीत क्रम ने आपको प्रभावित किया, ये जानकर हमें भी खुशी हो रही है। साथ ही 11 तारीख को हेलो युवाणी क्रम भी आपने सुना और इसके लिए आपने सुझाव भी भेजा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। साथियों, आपने अपनी फरमाइश में 2 गीतों का उल्लेख किया था, उनमें से पहला गीत उस समय हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाया, इसलिए आपकी फरमाइश पर ही दूसरे गीत को हमने प्रसारित किया और हमें खुशी है कि कार्यक्रम के दौरान आपसे बातचीत का हमें अवसर मिला। लंबे समय के बाद आपने फ़ोन किया, आपकी भावनाओं और पसंद का हम पूरा सम्मान करते हैं। साथियों, भविष्य में हम श्रोताओं की फरमाइशों को यथासंभव उसी रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास भी करेंगे। इसी तरह अपनी मोहब्बत हम तक बनाए रखें, बहुत शुक्रिया।
0: चलिए साथियों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दीपक, अगला पत्र कहाँ से आया है।
1: मलिका, ये अगला ईमेल हमें आया है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल मोरस अनिल कुमार अजीत कुमार और आयुष नंदिनी जंघेल का। ये लिखते हैं, 15 तारीख की युवाड़ी कार्यक्रम को हमारे युवा साथी

0: का शुभाशीष और पलक तिवारी लेकर आए परिवार हमारी ताकत इस विषय पर बातचीत करते हुए आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर जश्न आवास के अंतर्गत डॉक्टर शीला शर्मा से विशेष चर्चा प्रस्तुत की गई। अपने समय में आकाशवाणी के युवानी कार्यक्रम की कॉम्पियर भी रह चुकी हैं। उन्होंने अपने समय की पुरानी यादों और अनुभवों को श्रोताओं के साथ साझा किया। कार्यक्रम सुनकर बहुत अच्छा लगा। इस विशेष बातचीत में हमारे कॉम्पियर साथी मल्लिका सुभाशीष ने बहुत सुंदर ढंग से चर्चा को आगे बढ़ाया। इसके बाद क्रम कवाली में बहुत अच्छी अच्छी कवालियाँ भी सुनने को मिली जो बेहद शानदार रहीं। इस दिन के सभी क्रम हमें अच्छे लगे। इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए मल्लिका सुभाशीष, पलक तिवारी और डॉक्टर शीला शर्मा को बहुत बहुत बधाई। और मल्लिका, इस दिन के लिए हमारे इन साथियों ने भी हमें ईमेल भेजा है। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जघेल ने भी हमें ईमेल भेजा है।
1: 15 तारीख के युवाणी कार्यक्रम को सुनने के पश्चात आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर जो आत्मीय प्रतिक्रिया भेजी उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ। श्रोताओं का स्नेह और प्रोत्साहन ही हमारे जैसे युवा प्रोत्साहनों के लिए एक प्रेरणा है। परिवार हमारी ताकत विषय पर प्रस्तुत चर्चा को आपने पसंद किया ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। परिवार हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है दोस्तों, और इसी भाव को श्रोताओं तक पहुंचाने का हमारा एक छोटा सा प्रयास था। साथ ही आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जश्न आवास के अंतर्गत आदरणीय डॉक्टर शीला श्रीधर से हुई विशेष बातचीत को आपने सराहाया, ये हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है। उनके अनुभव, पुरानी यादें और आकाशवाणी से जुड़ी स्मृतियां हम सभी के लिए प्रेरणादायक रहीं। मेरी प्रस्तुति और बातचीत के संचालन को आपने जिस स्नेह से सराहाया उसके लिए मैं विशेष रूप से आपकी आभारी हूँ। पलक तिवारी के साथ इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करना और श्रोताओं तक सुंदर अनुभव पहुँचाने का प्रयास हमारा सफल रहा। साथ ही आपने क्रम कव्वाली की प्रस्तुति की भी प्रशंसा की है। दोस्तों, एक बार पुनः आपकी आत्मीय शुभकामनाओं और बधाई के लिए हम आपका धन्यवाद कहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है मल्लिका कि पुराने हमारे श्रोता भी पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। युवाणी इतनी रंगीन रही इन्हीं श्रोताओं के कारण। तो आइए देखते हैं कि अगला ईमेल कहां से आया है। ये अगला ईमेल है मल्लिका, गेंदा टोला बाजार चौक नांदगांव से वीरेंद्र कुमार, अंजलि, योगिता, गजेंद्र गुप्ता का। दिनांक 7 मई दिन रविवार को हमें युवाणी कार्यक्रम सुनने को मिला। इस दिन का विषय था लक्ष्य निर्धारण और उसे हासिल करने की रणनीति, जिसे प्रस्तुत किया राजलक्ष्मी और अंजलि ने। कार्यक्रम में बताया गया कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना बहुत आवश्यक है, तभी हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। किसी भी कार्य को करने में धैर्य का होना भी जरूरी होता है, क्योंकि जल्दबाजी में कार्य बिगड़ जाता है। इन्हीं प्रेरणादायक बातों के साथ युवाणी कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके बाद हमें आज मेरी बारी है क्रम सुनने को मिला, जिसे हिमल पांडे प्रस्तुत कर रही थी। इस कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि जीवन में साहित्य और पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और समय निकालकर पढ़ने की आदत भी विकसित करनी चाहिए। हिमल पांडे से हमें कई प्रेरणादायक बातें भी सुनने को मिली, साथ ही उनके पसंदीदा गीत भी बहुत अच्छे लगे। इसी क्रम में हमें नए तराने फरमाइशी गीत भी सुनने को मिले जो बेहद मधुर और मनोरंजक लगे। इस दिन के सभी क्रम हमें बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगे। इतनी अच्छी और सफल प्रस्तुति के लिए राजलक्ष्मी, अंजलि और हिमल पांडे को बहुत बहुत बधाई। और मल्लिका, इस दिन के लिए इन साथियों ने भी मेल भेजा है। नांदघाट कातलबोर से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर और ऋतु राजपूत ने।
1: युवाणी कार्यक्रम के प्रति आपका स्नेह और अपनापन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 17 मई के कार्यक्रम को सुनकर आपने जो सुंदर प्रतिक्रिया भेजी उसके लिए आपका हार्दिक आभार। कार्यक्रम की शुरुआत में सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच की आवश्यकता पर जो बातचीत हुई आपने उसको पसंद किया। क्रम आज मेरी बारी में हिमल पांडे ने जो साहित्य, पुस्तकों और अध्ययन की आदत के महत्व को साझा कर अपने विचार आपके साथ बांटे उसको भी आपने प्रेरणादायक बताया। उनके अनुभवों और पसंदीदा गीतों को आपने पसंद किया, साथ ही नए तराने में फरमाइशी गीतों को आपने सराहा, यह जानकर पूरा युवाणी परिवार उत्साहित है। राजलक्ष्मी, अंजलि और हिमल पांडे की प्रस्तुति को आपने सम्मान और स्नेह दिया उसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार अपना प्यार, मार्गदर्शन और शुभकामनाएं बनाए रखें।
0: तो मलिका, अगला ईमेल हमें आया है हसदा नंबर 2 से कमलेश साहू, जीतेंद्र, दिलीप, प्रवीण, पायल, लक्ष्मी, गीतांजलि, आकांक्षा, पार्वती, टिकेश्वरी, नागेश्वरी और तुलसाराम साहू का। ये लिखते हैं 18 मई दिन सोमवार के युवाणी कार्यक्रम को हमारे कॉम्पियर साथी आरव शुक्ला और काजल साहू लेकर आए। मेहनत बनाम स्मार्ट वर्क इस विषय पर बातचीत बहुत ही प्रेरणादायक रही। कार्यक्रम में बताया गया कि जीवन

0: इस दिन के सभी क्रम बेहद अच्छे रहे। इतनी सुंदर और प्रभावशाली प्रस्तुति के लिए आर और शुक्ला, काजल साहू और ईशा पांडे को बहुत बहुत बधाई।
1: 18 मई के युववाणी कार्यक्रम को सुनकर आपने अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया भेजी, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम के विभिन्न क्रमों को आपने ध्यानपूर्वक सुना और अपने विचार हमारे साथ साझा किए, ये हमारे लिए अत्यंत खुशी की बात है। आरफ शुक्ला, काजल साहू, ईशा पांडे की प्रस्तुति को आपने जो स्नेह और प्रोत्साहन दिया, इसके लिए हम आपके विशेष रूप से आभारी हैं। आप जैसे श्रोताओं की प्रतिक्रिया हमें निरंतर बेहतर करने की प्रेरणा देती हैं। इसी प्रकार अपना स्नेह, सुझाव और आशीर्वाद हम पर बनाए रखें।
0: तो पत्रों और ईमेल्स का सिलसिला तो फिलहाल यहाँ पर खत्म होता है, पर हम साथियों आप सब से साझा करना चाहेंगे क्रम पत्र मिला के लिए पत्र भेजने का पता। इसे नोट कर लीजिए। पत्र मिला क्रम में पत्र भेजने के लिए हमारा एड्रेस है क्रम पत्र मिला, युवाणी अनुभाग, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, रायपुर। हमारा पिन कोड है 492001।
1: और जो श्रोता साथी हमें ईमेल भेजना चाहते हैं वो हमारा ईमेल एड्रेस लिख लीजिए, airyouth9@gmail.com। सब्जेक्ट में कोड Y1 लिखना ना भूलें। इसी के साथ क्रम पत्र मिला समाप्त होता है।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
0: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
2: 10वीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
3: दीपक, कभी तुमने नोटिस किया है जिंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या है?
4: सुबह जल्दी उठना।
3: वो तो रोज का काम है। मैं उस भरोसे की बात कर रही हूँ जो बिना सवाल किए किसी पर टिक जाए।
4: बिल्कुल मलिका, आजकल भरोसा भी तो ओटीपी की तरह हो गया है, थोड़ी देर में एक्सपायर।
3: वाकई हम युवाओं के रिश्तों में सबसे बड़ी कमी यही लगती है मुझे। हम साथ तो चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी से डरते हैं।
4: और जब जिम्मेदारी आती है तो हम कहते हैं कि अभी मैं अपने करियर पर फोकस कर रहा हूँ,
3: जबकि सच्चाई ये है कि हम कमिटमेंट से फोकस हटाते हैं।
4: असल में साथियों, रिश्ता वही होता है जहाँ एक इंसान दूसरे से कह सके कि मैं हूँ ना, घबराने की जरूरत नहीं है।
3: दिखावा ना शोर, बस दिल में दो लोगों से जुड़ाव।
4: बिल्कुल सही। हम युवाओं से एक छोटी सी बात जिनके साथ आप अपनी कमजोरियां भी शेयर कर सकें, वही आपका अपना होता है।
3: तो चलिए इसी भरोसे, इसी अपनापन और इसी खामोश मोहब्बत के नाम क्रम यादें का ये पहला नगमा।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों

होती है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सिलसिला से ये खूबसूरत गीत। लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की आवाज में, गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीत दिया था शिव हरी ने।
1: और पसंद था हमारे इन श्रोता साथियों का ग्राम गुढ़ाराज से मनोज साहू, चित्रेखा देवेंद्र, लवीना चंचल वासनी और गरिमा साहू का, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेश ट्विंकल गोस्वामी, भानपुरी मिश्रा से आत्माराम यादव, सुखदेव विदेशी, होमेश्वर मनेश्वर, लाक्षी तुलसी यादव, धरदेई सरगांव से हैं चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष कुमार, विनीत कुमार और कृष्ण कुमार पटवा। मलिका, आजकल हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं?
0: स्क्रीन देखते हैं।
1: और सबसे कम?
0: सामने वाले की आंखों को देखते हैं।
1: यही तो फर्क है हमारे और पिछले दौर के प्यार में।
0: बिल्कुल, आज बात शुरू होती है हाय, हेलो, सीन, टाइपिंग से,
1: लेकिन कभी एक दूसरे की आंखों में झांकने की फुर्सत नहीं होती हमें।
0: जबकि सच ये है कि कभी कभी आंखें वो कह जाती है जो शब्द नहीं कह पाते।
1: बिल्कुल, और हम युवाओं के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि हर नजर सवाल नहीं होती, कभी वो जवाब भी होती है।
0: और हर खामोशी दूरी नहीं, कभी वो गहराई भी होती है।
1: वाकई, और कभी कभी नैन इसलिए भी झुके होते हैं साथियों क्योंकि सामने वाला बहुत ज्यादा खास होता है।
0: तो अगली बार जब कोई चुप हो तुरंत जज मत कीजिएगा,
1: शायद वो आपको महसूस कर रहा हो
0: इन्हीं अनकही बातों, इन्हीं बोलती आंखों के एहसास के साथ।
1: अब पेश है एक ऐसा गीत जो आप सबको बेहद खास लगने वाला है।

0: साथियों, फिल्म बालिका वधू से अभी आप ये गीत सुन रहे थे। स्वर था अमित कुमार का, गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने।
1: फरमाइश आई थी दतरेंगी से नोखेलाल हीरामणि पारसमणि पुष्पेंद्र मणि वर्मा की, सोंगा मगरलोड से फनेश सावित्री देवी मोहित देविका रानी गजेंद्र हेयांश कुमार चंदन की, पथरिया भरेवा से चंदूलाल नारायणी नोमेश नेहा वान्या सिंगरौल की, टिकरापारा रायपुर से लता देवी चौहान की, महासमुंद से भीष्म दास नर्मदा हिरमणि दीपक लक्ष्य दास की। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां मंजिल से ज़्यादा रास्ते अच्छे लगने लगते हैं। ना कोई जल्दी, ना कोई शिकायत, बस चलते रहने का एक खूबसूरत एहसास।
0: बिल्कुल, और शायद इसीलिए सफ़र पर लिखे गए गीत हर दौर में अपने आप को ज़्यादा करीब महसूस लाते हैं। उनसे कहीं ना कहीं हमारी पुरानी कहानी भी जुड़ी हुई होती है। साथियों, कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ मीठी यादें और ढेर सारे अनजान रास्तों का अनुभव।
1: तो आइए इसी सुहाने एहसास के साथ सुनते हैं फिल्म परिचय से ये गीत, किशोर कुमार की दिलकश आवाज में, गीतकार गुलजार और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म परिचय से किशोर कुमार की आवाज़ में खूबसूरत गीत। गीत लिखा था गुलजार ने और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने।
1: फरमाइश आई थी महासमुंद से जीतू ध्रुव, केवल किरण दिव्यांशी खेमू ध्रुव की, जाल बांधा जिला राजनगांव से पारक दास, किरण सोनू रेशमा गुनीता साहू की, सलोनी राजनगांव से देवचरण हेमा वेदांत वैभव साहू की।
0: साथियों, बातचीत करते हुए कब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का, इसका तो हमें पता ही नहीं चला। पर जाने से पहले हम आपको बता देते हैं कल की युवा के आकर्षण। कल की युवाणी सजेगी छत्तीसगढ़ी में, जिसमें आप सुनेंगे क्रम संस्कृति के महक और क्रम माटी के गीत। इसी के साथ दीजिए आपके साथी दीपक कुमार तिवारी
1: और मल्लिका सुभाषीश को इजाजत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवावाणी, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
2: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में के मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
3: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर सुनना।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे हो?
1: हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। उप मुख्यमंत्री है आज रायपुर में डायल 112 फेज टू नेक्स्ट जनरेशन सेवा के करें शुभारंभ। 54 नवा इमरजेंसी गाड़ी ला हरियर झंडी दिखा के करें रवाना। स्कूल शिक्षा विभाग है अवैया शिक्षा सत्र पर सरकारी स्कूल मन में स्थानीय शुल्क बढ़ाए के करे है आदेश जारी। और दवाई के ऑनलाइन बिक्री के विरोध में आज छत्तीसगढ़ समेत देश भर में दवाई व्यापारी मन दुकान राखिन बंद। अब समाचार विस्तार ले। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हा आज रायपुर पुलिस परेड मैदान में डायल 112 फेस टू नेक्स्ट जनरेशन सेवा के शुभारंभ करीन। ये मौका मा उमन 54 नवा इमरजेंसी गाड़ी ला हरियर झंडी दिखा के रवाना करीन। उमन कहिन की पहली डायल 112 सेवा सिर्फ 16 जिला तक सीमित रहीस, जेखर बढ़वार अब प्रदेश के सबो 33 जिला में कर दे गए है। उमन यहू बतेन कि सबो गाड़ी में आधुनिक GPS सिस्टम, स्मार्ट कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम और डिजिटल कम्युनिकेशन तकनीक हवे। डायल 112 में पुलिस सहायता, फायर ब्रिगेड, मेडिकल इमरजेंसी, महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, आपदा प्रबंधन और हाईवे इमरजेंसी जैसन सबो आपातकालीन सेवा ले जा सकत है। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग अवैया शिक्षा सत्र पर सरकारी स्कूल मन में स्थानीय शुल्क बढ़ाए के आदेश जारी करे है। ये नवा दर सरकारी स्कूल के संगे संग आत्मानंद स्कूल और अनुदान मिले विद्यालय मन में घलो लागू हो ही। जारी आदेश के मुताबिक हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थी मन के स्थानीय शुल्क 410 रुपया ले बढ़ा के 500 रुपया करे गए है। उन्हें उच्चतम माध्यमिक स्कूल के लयिका मन ला 445 रुपया के जगह 550 रुपया देवर पढ़ी। विभाग के मुताबिक नवा दर अवैया शिक्षा सत्र ले लागू हो जाही। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहिन है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार ले उर्वरक लेना मुश्किल हो जाते। ओमन रासायनिक उर्वरक में निर्भरता कमती करे बर जैविक खेती में ज्यादा जोर दीन। श्री चौहान कहिन कि वैश्विक चुनौती के बादो केंद्र सरकार किसान मन पर पर्याप्त खातु आपूर्ति सुनिश्चित करे के प्रयास करत है। ओमन छूट वाले खातु के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दीन और राज्य ले नकली और घटिया किस्म के खातु के आपूर्ति करैया मन के खिलाफ कड़ा कार्रवाई करे बर किहिन है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक के अगुवाई करीन, जेमा अवैया नीट UG के फेर ले परीक्षा के तैयारी ला देखीन। परीक्षा के आयोजन में ईमानदारी और साफगोई के जरूरत में जोर देवा श्री प्रधान निर्देश दीन कि पाछू परीक्षा में जौन कमी रहीस तेला दुरियाए जाए। बैठक के बेरा सबो राज्य के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के संग मिलके बैठक करे के निर्देश देगीस, जेखर ले परीक्षा के व्यवस्था बने ढंग ले होवे। छत्तीसगढ़ के शहरी नागरिक सहकारी बैंक में आधुनिक बैंकिंग सुविधा के बढ़फार करे जाही। इस संबंध में सहकारिता आयुक्त और पंजीयक सहकारी संस्था महादेव कावरे रायपुर में समीक्षा बैठक करीन। बैठक में राज्य के 12 शहरी सहकारी बैंक के प्रतिनिधि संग्रीन, सहकारिता आयुक्त बैंक ला मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और आधार आधारित भुगतान प्रणाली जैसन सुविधा शुरू करे के निर्देश दिन है। एकर ले प्रदेश के सहकारी बैंक में डिजिटल सेवा ला बढ़ावा मिली और लोगन ला बने सुविधा मिल सकी। भारतीय सेना कोती ले अग्निवीर भर्ती के तहत अग्निवीर लिपिक और स्टोर कीपर टेक्निकल पद पर हुई परीक्षा के परिणाम घोषित कर दे गए है। ये परीक्षा में छत्तीसगढ़ के 20 उम्मीदवार मन ला सफलता मिले है। परीक्षा के नतीजा भारतीय सेना के वेबसाइट में हवे और सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के नोटिस बोर्ड में घलो देखे जा सकत है। पास हुए उम्मीदवार मल्ला काली 21 मई के बिहनिया 9 सबो दस्तावेज संग नवा रायपुर के सेना भर्ती कार्यालय में उपस्थित होए पर पढ़ी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था। अब आगु बढ़बो बांचे समाचार कोती। राज्यपाल रमन डेका आज लोकभवन में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के

प्रबंध संचालक विवेक आचार्य ले भेंट करीन। ये दौरान राज्य में पर्यटन वाले जगह के बढ़वार और पर्यटक मन बर बने सुविधा ल लेके गोट बात हुई। राज्यपाल है चित्रकूट जलप्रपात, गंगरेल बांध और बूका जलाशय में पर्यटन सुविधा के बढ़वार में जोर दीन। उमन की हिन की ये जगह में पर्यटक मन बर जरूरी सुविधा के बढ़वार करे जाए, संगे संग वरिष्ठ नागरिक मन बर ज्यादा सुविधा दे जाए। उन्हें कोरबा जिला के बूका जलाशय में क्रूज सेवा शुरू करे के सुझाव दीन। राज्यपाल ने आज लोक भवन में प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई के परिवार वाले मन भेंट करीन। ये दौरान राज्यपाल है तीजनबाई के हाल चाल जानीन और उखर जल्दी स्वस्थ होए के कामना करीन। तीजनबाई के परिवार वाले मन बतैन कि तीजनबाई के सम्मान में अवैया 7 अगस्त के एक समारोह रखे जाते, जेमा राज्यपाल ला मुख्य माई पहुना के रूप में शामिल होए बर न्योता दीन। दवाई की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में आने आने केमिस्ट संगठन मन आज देश भर में हड़ताल के आह्वान में छत्तीसगढ़ समेत देश भर में दवाई दुकान बंद राखी। बिलासपुर में जिला औषधि विक्रेता संघ के बैनर में दवाई व्यापारी मन रैली निकालीन। व्यापारी मन आरोप लगेन कि बिना जांच पड़ताल के ऑनलाइन दवाई बेचे जाते, जेखर ले मरीज मन के सुरक्षा ला खतरा हो सकत है। उन्हें छोटे दवाई दुकान के व्यापार में घलो असर हुआ थे। इस बीच जिला प्रशासन है सरकारी अस्पताल, जन औषधि केंद्र और धनवंतरी मेडिकल स्टोर में दवाई के उपलब्धता सुनिश्चित करीन है। आकाशवाणी के 90 बच्चर पूरा होए के मौका में आज बिलासपुर में आकाशवाणी केंद्र कोती ले वॉकथन राखेगी। एमा आकाशवाणी के कर्मचारी, उद्घोषक, अंपियर, श्रोता और शहर के नागरिक संग्रीन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर संजय अग्रवाल है बदलत बेरा में रेडियो के पहुंच और ओखर महत्ता के संबंध में अपन विचार साझा करीन। उन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह कहिन कि रेडियो जीवन के हर क्षेत्र ले जुड़े हैं और लोगन ला सरलग जोड़ा थे। एति आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन रेडियो के महत्व और वॉकथन के संबंध में जानकारी दीन। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 29 ले 31 मई तक राष्ट्रीय आम महोत्सव के आयोजन करे जाही। एमा आमा के 250 ले ज्यादा किस्म दिखाए जाही, संगे संग आमा के आने आने किस्म के प्रतियोगिता होही, जेमा छत्तीसगढ़ और आने राज्य के आम उत्पादक संगरी। ये मौका में आमा ले बने कतकुन व्यंजन के प्रदर्शनी लगाई जाही। आम महोत्सव में पंजीयन और प्रवेश मुफ्त में है। ये महोत्सव इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी छत्तीसगढ़ शासन और प्रकृति की ओर सोसाइटी को तिले जुर मिल के आयोजित करे जाते। अब थोरकुन समाचार सारमा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE है कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के जांचे उत्तर पुस्तिका के स्कैन करेंगे। प्रति बार अर्जी दे के आखिरी तारीख ला एक दिन बढ़ा दे है। उम्मीदवार अब 23 मई तक अर्जी दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा के आदर्श उत्तर जारी कर दे है। उम्मीदवार कोनो प्रश्न या उखर आदर्श उत्तर में अपन दावा आपत्ति 25 मई तक माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय रायपुर में जमा करा सकत हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल के जमानत याचिका खारिज कर दे है। बलौदा बाजार आगजनी कांड में गिरफ्तार होने के बाद श्री बघेल हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करे रही। धमतरी जिला के कोतवाली थाना क्षेत्र में सिहावा चौक तीर पाछू रतिया गश्त के बेरा चौपाइया गाड़ी के चपेट में आए ले एक प्रधान आरक्षक के मौत हो गए, उन्हें एक नगर सैनिक गंभीर रूप ले घायल हो गए है। और दुर्ग में 22 मई के जिला स्तरीय रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप लगाए जाही। छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में होवैया ये आयोजन में 10वीं ले लेके इंजीनियरिंग, नर्सिंग और मेडिकल योग्यता वाले उम्मीदवार मल्ला रोजगार के मौका मिलही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। उप मुख्यमंत्री है आज रायपुर में डायल 112 फेज 2 नेक्स्ट जनरेशन सेवा के करीन शुभारंभ। 54 नवा इमरजेंसी गाड़ी ला हरियर झंडी दिखा के करें रवाना। स्कूल शिक्षा विभाग अवैया शिक्षा सत्र पर सरकारी स्कूल मन में स्थानीय शुल्क बढ़ाए के करे है आदेश जारी। और दवाई के ऑनलाइन बिक्री के विरोध में आज छत्तीसगढ़ समेत देश भर में दवाई व्यापारी मन दुकान राखीन बंद। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य रोमनगरे इटली देशस्य प्रधानमंत्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह वार्तालापं कृतवान्। उभौ देशौ द्वैपाक्षिक संबंधं विशेषतः सामरिक सहभागित्वेन उन्नतिं कर्तुं निर्णयम् अकुर्वताम्। प्रधानमंत्रिणा श्रीमोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ भयोत्पादनं मानवतायै गभीर प्रतिरोधरूपेण पश्यतः। DRDO इति संघटनेन ड्रोन प्रक्षेपितस्य मानवरहित स्पष्टता निर्देशित प्रक्षेपास्त्रस्य परीक्षणं सम्पूरितम्। रक्षामन्त्रिणा एतद् व्यूहात्मकं सोपानत्वेन वर्णितम्। सर्वोच्चन्यायालयेन केन्द्रस्य जातिगणनायाः निर्णयस्य विरोधे याचिका अस्वीकृतम्। अपि च IPL क्रिकेट क्रीडायां ईडन गार्डन्स् इत्यत्र मुम्बई इण्डियन्स् दलं कोलकाता नैट् रैडर्स् दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य रोमनगरे इटली देशस्य प्रधानमंत्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह प्रतिनिधिस्तरीया वार्ता कृता, यस्योद्देश्यं प्रमुखक्षेत्रेषु भारत इटली देशयोः द्वैपाक्षिक संबंधान् इतोप्यधिकं सुदृढं कर्तुमासीत्। व्यापारस्य निवेशस्य तन्त्रज्ञानस्य रक्षायाः स्वक्षोर्जायाः सामरिक सहभागित्वस्य च क्षेत्रेषु सहकारस्य संवर्धनम् एव अस्य सम्मेलनस्य केन्द्रबिन्दुः आसीत्।
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: उभौ नेतारौ परस्पर हितस्य क्षेत्रीयस्य वैश्विकस्य च विकासेषु अपि चर्चितवन्तौ। भारत इटली देशयोः मध्ये चर्चां प्रतिबिम्बितं यत् वर्धमानं सामरिक सहभागित्वम् आर्थिक सहयोगस्य विस्ताराय जनानां सम्बन्धेषु च महत्त्वं प्रदत्तम्। प्रतिनिधिस्तरीया वार्तायाः अनन्तरम् उभौ नेतारौ संयुक्तं वक्तव्यं प्रदत्तवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना घोषितं यत् भारत इटली देशयोः द्वैपाक्षिक सम्बन्धं विशेष सामरिक सहभागित्वेन वर्धयितुं निर्णयः कृतः। श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ पक्षौ सहकारं वर्धयितुं विस्तृतं चर्चां कृतवन्तौ। भारत इटली नवान्वेषण केन्द्रस्य स्थापनार्थं च कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। सः अवदत् यत् भारत इटली रक्षा औद्योगिक मार्गचित्रं सैन्योपकरणानां सह विकासस्य सह उत्पादनस्य च मार्गं प्रशस्तम्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् उभौ देशौ नौवहन क्षेत्रेषु पत्तनानां आधुनिकीकरणे, रसद क्षेत्रे, नील अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मिलोनी इत्येषा अवदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च द्वैपाक्षिक सम्बन्धाः अधुना स्वस्य पूर्णक्षमतया साधयितुं समर्थाः सन्ति। गत केषुचित् वर्षेषु भारत इटली देशयोः मध्ये सम्बन्धाः अभूतपूर्वगत्या विस्तारिताः सन्ति, अधुना च निर्णायकं स्तरम् अवाप्नोत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा तस्य इटली देशीया समकक्षीया जियोर्जिया मेलोनी इत्युभाभ्याम लिखिते संयुक्त लेखे उभयोः देशयोः मध्ये संबंधः सौहार्दपूर्ण स्नेहात् विशेष सामरिक सहभागित्वेन विकसितः अस्ति, यस्य आधारः स्वातन्त्रस्य लोकतन्त्रस्य भविष्यस्य कृते संयुक्त दृष्ट्याधारित मूल्येषु च निहिता अस्ति, उभौ नेतारौ प्रकाशितवन्तः। नेतारौ उक्तवन्तः यत् यदा वैश्विक व्यवस्थायां गहन परिवर्तनं प्रचलति तदा भारत इटली सहभागित्वं उच्चतम राजनैतिक संस्थागत स्तरेषु नियमित आदान प्रदान द्वारा दर्शितमस्ति। एकविंश्यां शताब्द्यां समृद्धिः सुरक्षां च राष्ट्राणां नूतनाशयस्य ऊर्जा परिवर्तनस्य प्रबन्धस्य सामरिक सार्वभौमत्वस्य सुदृढीकरणस्य च क्षमतायाः उपरि परस्पर समन्वयं प्रतिबिम्बयति इति उभौ उक्तवन्तौ। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। रक्षानुसंधान विकास संघटनेन DRDO इत्यनेन देशस्य रक्षाक्षेत्राय एकं महत्वपूर्णोपलक्ष्यं साधितम्, यस्मिन् मानवरहितं वायुयानेन प्रक्षेपितं सटीक निर्देशित V3 प्रक्षेपास्त्रस्य अंतिम विकास परीक्षणानां सफलतया संपादितम्। आन्ध्रप्रदेशे कुर्नूलस्य समीपे DRDO परीक्षण परिधि मध्ये परीक्षणं जातम्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः DRDO संस्थायाः अभिनन्दनं कृत्वा रक्षाक्षेत्रे स्वावलम्बनार्थं प्राप्तं व्यूहात्मकं सोपानमिति वर्णितम्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य सियोल नगरे दक्षिण कोरिया देशस्य रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासनस्य मन्त्रिणा ली योंग चुल इत्यनेन सह मिलितवान्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय सन्देशे श्री सिंहः अवदत् यत् उपवेशने उभौ पक्षौ संयुक्त विकासस्य, संयुक्त उत्पादस्य, संयुक्त निर्यातस्य च मार्गाणां निर्माणार्थं सहभागी प्रयासानां उपयोगाय सहमतिं प्रकटितवन्तौ। सः अग्रे अवदत् यत् द्वयोः देशयोः नवान्वेषण व्यवस्थायाः समन्वयार्थं महत्वाकांक्षी काइंड एक्स उपक्रमस्य संभावनायाः उद्घाटनस्य मार्गचित्रस्य विषये अपि विचारः अभवत्। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य आगामि जनगणनायां जातिगणनां कर्तुं केन्द्रस्य निर्णयस्य विरोधे याचिका अस्वीकृतम्। उक्तं च यत् अयं विषयः सर्वकारस्य नीतिक्षेत्रस्यान्तर्गतम् आयाति। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य नेतृत्वे पीठेन उक्तं यत् सर्वकारेण तेषां कृते कल्याणकारी उपायान् कल्पयितुम् अनुन्नत वर्गेण सम्बद्धानां जनानां संख्या अवश्यमेव ज्ञातव्या। न्यायपीठेन उक्तं यत् एतादृशं दत्तांशसंग्रहणे किमपि अनुचितं नास्ति तथा च विषयेऽस्मिन् हस्तक्षेपं कर्तुं निराकृतम्। केन्द्रीय मार्ग परिवहन राजमार्ग मन्त्रिणा नितिन गडकरी वर्येण अद्य नवदिल्ल्यां मन्त्रालयस्य हिन्दी परामर्श समितेः सभायाः अध्यक्षा कृता। सामाजिकान्तर्जालीये पटले लिखिते लेखे श्री गडकरी वर्यः अवदत् यत् हिन्दी केवलं भाषा नास्ति, सा तु राष्ट्रस्य एकीकरणस्य प्रबल माध्यमरूपेण कार्यं करोति। केन्द्रीय मन्त्रिणा उक्तं यत् मन्त्रालयस्य अधिकतमं कार्यं हिन्दीभाषायाम् एव भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तुं तस्य प्रयासः अस्ति। भारत ऋतुविभागेन अस्मिन् सप्ताहे उत्तर पश्चिम भारते तथा मध्यभारते तीव्रतर उष्ण तरङ्गस्य स्थितेः सम्भावना प्रकटिता अस्ति। IMD इत्यस्यानुसारम् आगामिषु चतुर्षु दिनेषु दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थितिः भवितुमर्हति। अत्रांतरे असम, मेघालय, केरलम, माहे, उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, करैकल, अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु च श्वः यावत् प्रचंड वृष्टेः अपेक्षा अस्ति। अन्ते क्रीडा वार्तायां, IPL क्रिकेट क्रीडायां कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरस्य ईडन गार्डन्स इत्यत्र मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्ध सप्तवादने भविष्यति। राजस्थान रॉयल्स दलेन गतरात्रौ जयपुरे लखनऊ सुपर जायंट्स

0: इत्यमुं दलं सप्तस्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं नीलिमा शर्मा और साथी। कार्यक्रम में पहले सुनिए नीलिमा शर्मा की आवाज़ में शैवत बिजनौरी की ये गज़ल।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर सुनन।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मनपसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार थी नीलिमा शर्मा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 होने को हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे

0: प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
9: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
10: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
9: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
7: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
11: यह आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य के विभिन्न जिलों में आज डायल 112 सेवा का शुभारंभ किया गया। मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए स्थानीय शुल्क में बढ़ोतरी की। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में केमिस्ट संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आज छत्तीसगढ़ में भी दिखा असर। और अग्निवीर भर्ती के तहत लिपिक और स्टोर कीपर टेक्निकल पदों के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के कई जिलों में आज मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने डायल 112 फेज टू नेक्स्ट जनरेशन सेवा का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में इस सेवा का शुभारंभ करते हुए 54 नए इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि सभी वाहन अत्याधुनिक GPS सिस्टम, स्मार्ट कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम और डिजिटल कम्युनिकेशन तकनीक से लैस है।
12: उस गाड़ी में जीपीएस सिस्टम भी है, कमांड के आने पर लोकेशन साथ में आएगा और उसमें एक मोबाइल भी उस गाड़ियों के साथ है, उसमें अनेक प्रकार के कैमरे लगे हुए हैं। तो इन सारी बातों के साथ ये इक्विप्ड नई गाड़ियां हैं। ये गाड़ियां निकल करके आज से ही 112 डायल करने पर रिस्पॉन्स टाइम के समय में ही आपके पास पहुंच जाए, इसके लिए बहुत अच्छी शुरुआत हुई है।
11: वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ के पुराना पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में 16 आधुनिक आपातकालीन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने भी बलौदाबाजार स्थित रक्षित केंद्र परिसर से डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता कम करने के लिए जैविक खेती पर अधिक जोर देने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने सब्सिडी वाले उर्वरकों के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी और राज्यों से नकली और घटिया गुणवत्ता वाले उर्वरकों के आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में स्थानीय शुल्क बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। यह नई दरें सरकारी स्कूलों के साथ साथ स्वामी आत्मानंद स्कूलों और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में भी लागू होंगी। जारी आदेश के अनुसार हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों का स्थानीय शुल्क अब 410 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। वहीं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को अब 445 रुपये की जगह 550 रुपये शुल्क देना होगा। विभाग के अनुसार नई शुल्क दरें आगामी शिक्षा सत्र से लागू की जाएंगी। भारतीय सेना द्वारा अग्निवीर भर्ती के तहत अग्निवीर लिपिक और स्टोर कीपर टेक्निकल पदों के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में छत्तीसगढ़ के 20 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। परीक्षा परिणाम भारतीय सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है और सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया गया है। उत्तीर्ण उम्मीदवारों को कल 21 मई को सुबह 9 बजे सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ रायपुर स्थित सेना भर्ती कार्यालय में उपस्थित होना होगा। प्रारंभिक निर्देशों के लिए उपस्थित होना होगा। गौरतलब है कि सेना भर्ती कार्यालय द्वारा अग्निवीर लिपिक और स्टोर कीपर टेक्निकल पदों के लिए यह परीक्षा बीते जनवरी माह में धमतरी में आयोजित की गई थी। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में विभिन्न केमिस्ट संगठनों ने आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान पर छत्तीसगढ़ सहित देशभर में दवा दुकानें बंद रखीं। बिलासपुर में जिला औषधि विक्रेता के संघ के बैनर तले दवा व्यापारियों ने रैली निकाली। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि बिना जांच पड़ताल के ऑनलाइन दवाएं बेची जा रही है, जिससे मरीजों की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। वहीं छोटी दवा दुकानों के व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। इस बीच विभिन्न जिलों के प्रशासन ने आज सरकारी अस्पतालों, जन औषधि केंद्रों और धन्वंतरी मेडिकल स्टोर के माध्यम से दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ के शहरी नागरिक सहकारी बैंकों में आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इस संबंध में सहकारिता आयुक्त और पंजीयक सहकारी सेवाएं संस्थाएं महादेव कावरे ने रायपुर में समीक्षा बैठक ली। बैठक में राज्य के 12 शहरी सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सहकारिता आयुक्त ने बैंकों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और आधार आधारित भुगतान प्रणाली जैसी सुविधाएं शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकों से तकनीकी सहायता के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने को भी कहा। इस पहल से प्रदेश के सहकारी बैंकों में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज बिलासपुर में आकाशवाणी केंद्र द्वारा वाकथन का आयोजन किया गया। इसमें आकाशवाणी के कर्मचारी, उद्घोषक, कंपियर, श्रोता और शहर के नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बदलते समय में रेडियो की पहुँच और उसके महत्व के संबंध में अपने विचार साझा किए।
13: लोगों के दिल से किस तरह से कनेक्ट हुआ जा सकता है, ये आकाशवाणी ने हम सब लोगों को बताया है। और हम लोग पब्लिक सर्विस में है, हमारी लोगों की क्या जरूरत है, लोगों के कल्याण के लिए क्या चीजें बढ़िया है, लोगों के सुखी होने के लिए क्या बढ़िया है, जिसका मोटो ही इतना बढ़िया हो, भोजन सुखाए भोजन हिताए, तो वो तो अच्छे काम करेंगे ही।
11: वहीं आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर की कार्यक्रम वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने कहा कि रेडियो जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा है और लोगों को लगातार जोड़ रहा है।
14: आज 90 साल होने जा रहा है। हर श्रोता मनोरंजन के लिए सिर्फ आकाशवाणी नहीं सुनता है, बल्कि अपने समग्र विकास के लिए भी जो योगदान होता है अपने जीवन के माध्यमों का, उसी तरीके से आकाशवाणी हमारे जीवन में उपयोगी है। प्रामाणिकता, मौलिकता इस कार्यक्रमों में रहती है। इस जिले में लोगों को, कम्युनिटी को जोड़ने के लिए कि पुलिस और पब्लिक किस तरीके से समाज में अपराध को कम कर सकती है, उसका भी एक माध्यम आकाशवाणी के माध्यम से हम लोग बात करते रहे हैं।
11: वहीं आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर की कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन ने रेडियो के महत्व के बारे में जानकारी दी।
15: कैसी स्थिति रही होगी देश की स्वतंत्रता के बाद, चाहे हरित क्रांति की बात हो, चाहे श्वेत क्रांति की बात हो, चाहे जन जन तक फिल्मी गीत पहुंचाने की बात हो, शास्त्रीय संगीत को सहेजने की बात हो, या जो भी हमारी कला संस्कृति और जो सामयिक चीजें, चाहे समाचारों की बात हो, रेडियो ही एक माध्यम रहा जो उस समय भारत को एक दिशा दे पाया। लेकिन आज जब आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है, हर हाथ में मोबाइल है, तो रेडियो भी आज आपके साथ न्यूज ऑन एयर ऐप के साथ आपके हाथ में है।
11: वक्तन आज सुबह आकाशवाणी परिसर से शुरू हुआ, जो नूतन चौक सीपत चौक होते हुए लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी तय कर वापस आकाशवाणी परिसर में संपन्न हुआ। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 29 से 31 मई तक राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में आम की 250 से अधिक किस्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान आम की विभिन्न किस्मों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी, जिसमें छत्तीसगढ़ और विभिन्न राज्यों के आम उत्पादक शामिल होंगे। इस अवसर पर आम से बने विभिन्न व्यंजनों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। आम महोत्सव में पंजीयन और प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क है। यह महोत्सव इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़ शासन तथा प्रकृति की ओर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा पश्चिम बिहार और उसके आसपास बना हुआ है। वहीं एक द्रोणिका उत्तर प्रदेश से उत्तर तेलंगाना तक विस्तारित है। साथ ही प्रदेश में गर्म और शुष्क हवाएं आ रही है। इसके असर कल मध्य छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म लहर जैसी स्थिति बने रहने और एक दो स्थानों पर ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा के आदर्श उत्तर जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी किसी प्रश्न या उसके आदर्श उत्तर पर अपना दावा आपत्ति 25 मई तक माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय रायपुर में जमा करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में वेटलैंड संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को मजबूत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी और दुर्ग स्थित महात्मा गांधी उद्यानिकी तथा वानिकी विश्वविद्यालय के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। धमतरी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में सिहावा चौक के पास बीती रात गश्त के दौरान चारपहिया वाहन की चपेट में आने से एक प्रधान आरक्षक की मौत हो गई, वहीं एक नगर सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। और दुर्ग स्थित छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 22 मई को जिला स्तरीय रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के विभिन्न जिलों में आज डायल 112 सेवा का शुभारंभ किया गया। मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए स्थानीय शुल्क में बढ़ोतरी की। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में केमिस्ट संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आज छत्तीसगढ़ में भी दिखा असर। और अग्निवीर भर्ती के तहत लिपिक और स्टोर कीपर टेक्निकल पदों के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7 बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहले सुनिए दिल ही दिल में, इस फिल्म का ये गीत अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में। गीतकार हैं महबूब, संगीतकार हैं ए आर रहमान।

AIR at 90. कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए डोली सजा के रखना इस फिल्म का गीत एमजी श्रीकुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। महबूब के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है एआर रहमान ने।

कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए चित्रा की आवाज में महबूब का लिखा ये गीत। संगीतकार हैं आर रहमान, फिल्म का नाम है बॉम्बे।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए ए हरिहरन और साधना सरगम की आवाज़ों में ये गीत। गीतकार हैं महबूब, संगीतकार हैं ए आर रहमान। फिल्म का नाम है सपने।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। लीजिए सुनिए किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

0: विनीता दीदी राम राम।
1: राम राम सरिता, और संगे संग चौपाल सुनैया जम्मू संगवारी मन लग हलो हमर दुनो के
0: राम राम, राम। दीदी
1: हाँ,
0: जेठ के गर्मी अब्बड़ जनात है और मौसम अपन रंग दिखाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहे सरिता भाई, अब मौसम तो अपन रंग दिखावे कर ही, और जेठ के महीना है तो ये गर्मी तो दिनों दिनों बढ़ते जावत है ना।
0: हाँ।
1: माने देखा अभी विशेषज्ञ मन इसे कहा थे कि अभी ग्रीष्म लहर चली गई तो अतिक गर्मी बढ़ी है ना। फिर देख सरिता, मौसम तो अपन रंग दिखावे करते, और कहूँ थोड़ी लइकपन में अपन जावन तो है ना, हर मौसम के अपन मजा रही थे, और लइका मन तो गर्मी के अगोरा रही थे है ना। काबर कि गर्मी की छुट्टी है तहन नाना नानी दादा दादी घर जाए मिलते है, और सब मम्मा मौसी सबो जन सकलाए रही थे, सब जन संग भेंट घाट होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगते। ए पाए के मन अगोरा करत रहते हैं, अब हमार परीक्षा हो गए, अब हमार रिजल्ट निकल गए, तब हम मम्मा घर जाबो तो बाबा घर जाबो, ऐसा ढंग ले है नहीं।
0: सही कहा था दीदी, और हम मन नान नान रहे ना तब बड़ मजा करें है नहीं, और गर्मी की छुट्टी माने मजा च मजा, भरा बाटी गोटा तिरिपासा इसे खेल में तो मंझनिया बीत जाए, और अमरैया माँ आमा टोरे बर जावन, तरिया माँ बुड़ बुड़ के नहावन।
1: फिर अब ये सब नंद आ गए सरिता है ना, लइका मन जो है घरे घर में अपन जो भी खेल खेलते हैं ये सब नंद आ गए। सही कहते हैं सरिता, फिर बचपना के आनंद अगले अलगे रही थे है ना। और देख बात है अभी जैसे गुड बात है है ना, गुड बात करत हन आगू हम ऊ करबो सरिता, संगवारी मन के जौन शोर संदेश आए है ना हमार तक पहुँचे तेन ल पहली पहुँचा, ओखर बेरा है, आज क्रम है चिट्ठी मिलिस।
0: बिल्कुल सही कहा था, सब हमार संगवारी मन के चिट्ठी पाती सक लागे है, तो शुरू करथन क्रम चिट्ठी मिलिस, और ये पहली पाती आए है 13 तारीख बर। 13 तारीख बुधवार के चौपाल कार्यक्रम में आज के सलाह क्रम में देगे जानकारी के संबंध में ये ईमेल भेजे हैं हमार संगवारी मन, और लिखते हैं कि ये दिन गर्मी में स्वास्थ्य वर्धक पे और खाद्य पदार्थ ये संबंध में डॉक्टर रेखा सिंह द्वारा देगे जानकारी हमला बड़ बढ़िया लागिस, उपयोगी लागिस, और एकर खातिर चौपाल प्रभागला विशेषज्ञ जिला गाड़ा गाड़ा बधाई, और ये बधाई ला भेजे हैं हमर संगवारी मन मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू, योगेश राहुल साहू, देवरी भाटापारा ले गन्नूलाल रजक, मुकेश कुमार रजक, युवान नेहा नव्या, तनु रजक मन, बठेना पाटन ले बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति पार्थ, राजेंद्र मनहरन मुरली, सुजान वर्मा मन, पथरिया भरेवा ले चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल मन।
1: तो देख सरिता, ऐसे गर्मी में ना पानी गजब सुहाते, अब पानी

0: संगे संग जौन ठंडा ठंडा जौन पेय पदार्थ हे शरबत हे तेन गजब सुहाथे। और शरीर में पानी के जौन संतुलन है ओला ये बना कर रखते, जैसे आम पना है, हैं कच्चा आम के पना है, नींबू पानी है, दही लस्सी है ना, भी तो बेल घल जब आते तो बेल के शरबत है, सत्तू है, ये सब हमारे शरीर ला ठंडा बर ठंडा बना कर रखते और ये हमारे शरीर पर बहुत फायदा करते, फायदेमंद होते है ना। तब ऐसा पेय पदार्थ लेवत रहना चाहिए। एक अलावा पानीदार फल जैसे कि तरबूज है, खरबूज है, खीरा है ना, संतरा अंगूर, ये सब खावत रहना चाहिए। काबर के दिन में भोजन ज्यादा नहीं खवावे है ना, तो ऐसा चीज ला खात रहना चाहिए ताकि हमारे शरीर में जो पुष्टि के पानी के कमी मत हो और शरीर हमारे स्वस्थ रहे। तब इसने ही सब बात रहे दिन जो है विशेषज्ञ द्वारा फरियार के बने बताया गया रही है ना, तो संगवारी मन लिखे कि मन बहुत उपयोगी लगी से तो चिट्ठी लिखी निखर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इसने 14 मई बृहस्पत के किसानवाणी में आज के सलाहक्रम में पालतू जानवरों से मनुष्य में होने वाली बीमारियां और सावधानियां और कर देखभाल ये विषय में बहुत बढ़िया जानकारी और जरूरी जानकारी रही से जिला देवत्रहीन डॉक्टर संजीव राय ये जानकारी उपयोगी रही। सो एकर खातिर डॉक्टर साहब उप चौपाल प्रभागला बहुत बहुत बधाई भेजे हमारे जी संगवारी मन दहान बांधा बाजार ले रविशंकर निषाद, मंगलिन पवन, प्रेमिन दुर्गेश, तेंदु भाटा ले उमेंद कुमार निषाद, महेश्वरी देविका निषाद, यशस्वी भास्कर, नूतन सुरेंद्र और किशन निषाद।
0: तो सरिता देख पशुधन तो किसान के बल बहिया होते है नी, तब किसान में पशुधन तो रहते छे वो रखबे करते है ना। एक अलावा देख पालतू जानवर भी रखते हैं लोगन सब है ना, कुकुर है, बिलई है, मिट्ठू बदक और कतकुन जन पालतू जानवर है ओला रखते हैं। जो उन का है संग में रहत रह तो एक प्रकार ले परिवार के सदस्य सही हो जाते, मया हो जाते कर है ना। तो ऐसा में का है ओखर बरोबर जतन करेल पड़ते है ना, जतन करत करत कोनो वही हाथ में छूते लइका मन घलोक खेलते है ना, तो वो प्रकार ले वो घर के मन के सदस्य असन हो जाते। ऐसा ढंग ले रहत रहत पशुधन जन्य जन रोग होते ना सरिता, वो रोग बीमारी है मन के तक पहुंच
1: सकते
0: है ना। तब एकरे बारे में विस्तार ले डॉक्टर राय द्वारा जो जानकारी दे गई रही बहुत बढ़िया ढंग ले बताइने मन है जो बहुत जरूरी भी रही आज के बेरा में है ना। तो संगवारी मन एला उपयोगी लगी से इसे लिखे हैं तो ये दिन की जानकारी भर तो चिट्ठी लिखी ने खर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अगला जो मेल है ओला भेजे है गर्रा पार बांधा बाजार ले मानवेंद्र साहू, गंगा राम साहू, सुलोचना राकेश साहू, कसडोल वार्ड 10 लेहे समेलाल साहू, कौशल्या देवी साहू मन। ये मन लिखते 15 मई शुक्रवार के चौपाल मा हलो चौपाल के विषय रही से फसलों में समेकित कीट प्रबंधन एवं रोग प्रबंधन।
0: हाँ।
1: विशेषज्ञ रहीन डॉक्टर एस एम अली हुमायूं जन विषय ले संबंधित समस्या के तुरते समाधान जो है वो फोन के द्वारा करीन और बहुत बढ़िया जानकारी दिन। एकर उपयोगी जानकारी बर चौपाल अनुभागला और विशेषज्ञ जिला गाड़ा गाड़ा बधाई।
0: ऐसे तो किसान देख सरिता ऐसे कोनो भी फसल लेते है ना, तो यही चाह रखते ही सोच रखते कि वाला अच्छा उपज मिले है ना, और वही प्रकार ले वो मेहनत करते वही प्रकार ले उदिम घला करते। फिर देख फसल में का है कीड़ा बीमारी के प्रकोप घला होते है ना, जो स्वाभाविक है जेकर का है समय में ओकर समाधान जरूरी हो जाते, समय रहत कहूँ समाधान हो गए तो फसल बांच जाते। तो एक संगे संग फसल में का है समन्वित जो कीट है और रोग है ओकर प्रबंधन एक बार जरूरी हो जाते। तो जेकर बारे में ये दिन विस्तार ले जो विशेषज्ञ है वो मन बहुत बढ़िया ढंग ले बताई ने जो उन संगवारी मन बर उपयोगी लगी से मन जो बेरा के लगी से मन मेल भेजिन संगवारी मन ला बहुत बहुत धन्यवाद।
1: 16 मई के परंपरागत तरीका से मछली प्रसंस्करण ये विषय में विशेषज्ञ देवती जायसवाल द्वारा बढ़िया जानकारी उपयोगी जानकारी बताई गई रही से क्रम रही आज के सलाह अतका सुघर जानकारी बर एमन बहुत अकन बधाई भेजे हैं चौपाल प्रभागला और विशेषज्ञ जिला और ये हमार संगवारी मन हरे कर ही भदर ले पुरुषोत्तम निर्मल कृष्ण कुमार भूपेश ब्रिजमोहन निर्मल मन सिर मुड़ा ले हैं सूरज कुमार दामले हेमा दामले कांतिबाई दामले मन।
0: तो देख सरिता मछली ला तो भाई पानी के छिपे धन कहे जाते हैं, है ना। काबर की मां भरपूर मात्रा में प्रोटीन होते हैं और पानी भी भरपूर होते, तो एकर देखबे सुक्सी बना के भी रखते हैं, है ना। तो और आज के समय वैज्ञानिक दृष्टि से कहूँ देखे जाए तो एला एमा प्रिजर्वेटिव मिला के एक एला ज्यादा लंबा समय तक रखे जा सकते हैं, है ना। और यही सब बारे में बने फरियार के कैसे प्रसंस्करण होकर करना चाहिए, कौन प्रकार ले उपयोग करना चाहिए, ये सब बोला दिन की जानकारी में बताई गई रही से, तो संगवारी मन भर ये उपयोगी लगी से और चिट्ठी लिखी निकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: 17 मई के कार्यक्रम पर ये ईमेल भेजे हैं लोरमी चचेड़ी ले कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी मन, नागर कोहरा ले जगर राम साहू, जामुन देवी, राजू लल्ला, पूजा प्रांजा, समीक्षा और आराध्या साहू मन, परसा टोला अम्बागढ़ चौकी ले हैं ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी तुसारनी, खुमेंद्र मसिया मन। ये मन लिखते कि 17 मई रविवार के चौपाल माँ जानकारी के विषय रही से फसलों में रोग के पहचान और एकर आसान घरेलू तरीका से निदान है। ये विषय में बड़ सुंदर ढंग ले बड़ उपयोगी जानकारी दे गे रही से और जानकारी देवत रहीन डॉक्टर सोनल कुमार मन, जानकारी बड़ बढ़िया लाभदायक रही से, एकर बर चौपाल प्रभागला बहुत बहुत बधाई।
0: तो देख किसान फसल लगाते हैं ना तब कीट व्याधि कीड़ा बीमारी एकर प्रकोप तो होबे करते हैं ना, जो स्वाभाविक है। फिर देख जरूरी है किसान जो उन्हें समय रहत ओला ओकर रोग ला पहचान लेवे, है ना, और रोग ला पहचान के ओला तुरते ओकर उपाय कर लेवे तो फसल जो है वो बांध जाते, है ना। तो यही प्रकार ले कुछ घरेलू जो उपाय है ओला करके रोग ला कैसे पहचाने जाए यही उपाय के बारे में जो है विशेषज्ञ दिन बता रही है ना, और सीर्तोन में आज के समय में ये बहुत जरूरी है ना। तो ये जानकारी जो है बहुत उपयोगी लगी से संगवारी मन चिट्ठी लिखी एकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरिता ये तो रही से क्रम चिट्ठी मिली।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चर ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: दीदी भाई, गर्मी माँ रुख राई के छहिया और जुड़ जुड़ करसी के पानी अंतसला तृप्त कर देते हैं। और पहली सियान मन पुन कमाए बर कुआं खनवाए, तरिया बनवाए, रुख राई लगाए, ताकि लोगन के प्यास बुझे और पंथिल छाव मिले। बाग बगीचा लगावे ताकि फल फलिहाई मिलत रहे, है नहीं। और सियान मन के सीख ला हमला अपनाना है और रुख राई लगाना है और जल भी बचाना है।
4: बिल्कुल,
3: नहीं का हो ही ये बतावा थे चतुर राम साहू और संगवारी मन अपन गाना के द्वारा।
4: वाह, तो गीत में सुनबन की का बोलते है ना।

0: कतका सुघ्घर बात जोन हे चतुर राम साहू संगवारी मन ये गीत के माध्यम ले बताइन सरिता है ना, पानी ला अवैया पीढ़ी बर बचाओ, कतका बढ़िया बात बोलिन है गीत में।
1: और दीदी सुघ्घर गीत ले यही संदेश मिलत है कि हम जल संरक्षण करन, जल बचावन, काबर की जल है त कल है,
0: बिल्कुल
1: जल है त जीव जंतु है, जल है त रुख राई है, जल है त हमर फसल है।
0: हाँ।
1: और गर्मी के दिन में जिन भाई बहनी

0: एखरे सेती कहां तो पौधा के जोन पानी के जरूरत ह बाढ़ जाते हैं। हम फसल के जैसे बात करत हन तो फिर ये समय में का है कहूं हम जैसे धान के अलावा कहूं दिगर फसल लगाए हन है ना और सही तरीका में जल जोन पानी को मांग है ओकर अनुसार हम लोग सिंचाई करत हन कहूं तो निश्चित रूप से हमारे फसल अच्छा हुई और वही रिकिमला हम लोग करना भी है।
1: बिल्कुल सही कहा था दीदी, गर्मी में सिंचाई फसल के मांग के अनुसार होना चाहिए। ज्यादा पानी फसल ला सड़ा सकते और कम पानी सुखा सकते। एकरे सेती कुछ बात के ध्यान रखना बड़ जरूरी है, जैसे कि भाई गर्मी में सिंचाई के समय सुबह 6 से 8 बजे के सिंचाई यदि हम करत हन तब वो समय सबले बढ़िया होते, काबर की घाम तेज नहीं हुए है नी और घाम तेज नहीं हुए है और घाम तेज हुए के पहली जड़ में जब पानी पहुंच जाते तब वाष्पीकरण कम होते और या फिर सवेरे नहीं कर पाथन तो शाम के समय 5 से 7 बजे के बीच बढ़िया होते।
0: माने कुल मिला के विहनिया के बेरा जो है वो है सिंचाई करना ज्यादा अच्छा होता है गर्मी के दिन में है ना। का है दोपहर या मंझनिया कन कहूँ सिंचाई कर ले तो एखर ले गड़बड़ हो जाते। का है कहूँ सिंचाई करे सभी मंझनिया कुन चल पानी डाल दे था अभी विहनिया नहीं कर पाए तो इसी के तो एखर का तापमान ज्यादा हो कि सेती ना सिंचाई के जो 80% पानी जो है वो भाप बन के उड़ा देते है ना तो पौधा के पत्ता मन घलक कहा तो वो जल जाते
1: भाप से जल सकते। और अब बात आते दीदी कि कौन फसल में कतका पानी के जल के मांग रहते हैं ना कैसे जानबो तो भाई एकर बर माटी में एक तरीका है कि हम जो सिंचाई करे हैं वो माटी में उंगली ला 2 इंच तक नीचे डालना
0: डाल
1: है
0: के देखन।
1: हाँ तब माटी यदि सूखा है तो जल के जरूरत है और यदि हमला लगा थे कि माटी के अंदर
0: माटी में तो पानी मत डाल।
1: यदि हमला 2 इंच तक नमी कि जनावत है तब पानी के जरूरत नहीं है। और पौधा के संकेत ले भी पहचानना है भाई दोपहर में तो पत्ता मन मुरझाते तेन तो स्वाभाविक है लेकिन सुबह भी पत्ता मुरझाए है माने पानी की कमी हुआ थे और कहूँ पत्ता मन पीला हुआ थे तब पानी ज्यादा हो जाते
0: तो यही सब बात लो देखना है।
1: और खेत में फसल अनुसार हफ्ता में 2 से 3 बार गहरी सिंचाई देना है। गहरी का मतलब है कि भाई 6 से 8 इंच तक पानी नीचे जाना
0: चाहिए।
1: हाँ रोज थोड़ा थोड़ा पानी देवा था ना जड़ के ऊपरे ऊपर पानी जावा थे ना तो जड़ घलो नीचे तक नहीं जावे काबर पानी मांगे बर जड़ नीचे तक जाते। और गर्मी में पानी के समस्या तो रहते ऐसन में साग भाजी उगाए हन तो सिंचाई के कारगर तरीका है ड्रिप सिंचाई। और ये विधि में भाई बूंद बूंद पानी सीधा पौधा के
0: जड़ में पहुंचते और काहे लगभग 50% तक पानी में बचा जा सकते ये टपक सिंचाई ला अपना के है ना।
1: बिल्कुल सही कहा था। और गर्मी में साग भाजी के फसल है तो नेट शेड के उपयोग भी कर सकते हैं। हरा रंग के जो नेट शेड आते तेला लगाथन तो तापमान 3 से 4 डिग्री तक कम हो जाते और पौधा में पानी के मांग जो है वो घट जाते।
0: देख इसने देख फवारा विधि है तो फवारा विधि ले भी सिंचाई के एक कहां तो एक अच्छा तरीका है एक अच्छा साधन है जैसे फूल लगे है या फिर साग भाजी है तो एमा तो यही विधि सिंचाई करके हम हाँ पानी बचा सकते हैं सरिता।
1: और गर्मी के दिन में पानी बचा और नमी बना के रखे बर मल्चिंग भी कर सकते हैं। पौधा के जड़ के आसपास सूखा पत्ता भूसा पैरा नारियल के बूचा ल ढांक देवन एकर ले पानी के वाष्पीकरण घट जाते और माटी ठंडा रहते जेकर ले 70% तक पानी बचाया जा सकते। तो संगी हो ये छोटे छोटे बात के ध्यान रखन और जो है पानी कम पानी में ज्यादा फसल ले सकथन है नी
0: अब पानी के सदुपयोग करन दुरुपयोग बिल्कुल
1: मत करन। और जल के बात आए है तो जल के रानी की बात घलो कर लेते
0: बिल्कुल
1: है नी। तो आज के सलामत संगवारी हो हमन सुनथन जानकारी किसानों के लिए मछली के लाभदायक प्रजातियों का सही चुनाव बतावत है बसंत सिंह सहायक प्राध्यापक फिशरीज पॉलिटेक्निक धमधा दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर पशु विश्वविद्यालय अंजोरा जिला दुर्गले एकर संग गोड बात करत है मोनिका जैन।
2: संगवारी हो खेती किसानी में बीजा के बड़ महत्ता होते तभी तो हमारे सियान मन कहते हैं कि जैसे वो बीज वैसे हो ही चीज तो भाई यही बात ला जानत हमन जानकारी ले वो हमारे आज के विषय में कि लाभदायक मछली प्रजाति हमारे किसान संगवारी मन खातिर कैसे सही रही थे और कैसे मन एखर चुनाव कर सकते और ये सारी जानकारी दे खातिर आज हमारे संग विशेषज्ञ आवे हैं बसंत जी। हाँ आप मन सहायक प्राध्यापक हैं फिशरीज पॉलिटेक्निक धमधा

0: दाऊश्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्गमा। बसंत सर आपन के स्वागत है वर्क्रम मा।
1: धन्यवाद मैम।
0: बसंत जी सबले पहली तो आपन हमन ला ये बताते हो कि जैसे कि आज हमर विषय है कि लाभदायक मछली मन की प्रजाति जन है, हमर किसान संगवारी मन एखर चुनाव कैसे कर सकते, तो मछली प्रजाति के चुनाव करत बखत हमन ला हमर किसान संगवारी मन ला का बात के ध्यान रखना चाहिए।
1: मैं किसान भाई एवं बहनों को यही बताना चाहूँगा कि मछली प्रजाति का सही चयन मछली पालन का सफलता के लिए जरूरी है। इससे मछली का बढ़ना, स्वस्थ और आर्थिक लाभ तय होता है। सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसे प्रजाति का मछली का चयन करना है जो मछली का ग्रोथ फास्ट हो, रोग प्रतिरोध क्षमता हो, बाजार में अच्छे दाम हो। पालन के लिए जल का उपयुक्त होना बहुत ही जरूरी है। अगर मछली तेजी से बढ़ेगा तो हमें कम समय में ज़्यादा मुनाफा होगा। रोग प्रतिरोग क्षमता, अगर उस मछली में रोग प्रतिरोग क्षमता है तो कोई भी बीमारी उसे आसानी से नहीं लगेगा, और बाज़ार में अच्छे दाम या अच्छे मांग, इससे किसान का आर्थिक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा।
0: जी, मैंने आर्थिक लाभ ला बढ़ाए खातिर हमन अगर सही प्रजाति के मछली के चुनाव करथन तो हमन ला फायदा होही।
1: जी मैडम,
0: ये बड़ सुघर बात की हो आप मन। अब हमन मछली पालन की अगर बात करथन तो भाई पानी के बड़ महत्ता होते, काबर की मछली तो पानी में होते।
1: जी,
0: अब बात पानी की है तो ताजा पानी और खारा पानी, ये दोनों प्रकार के पानी हमन ला देखब मा मिलते, तो इमा कौन कौन से जिन मछली है ओखर प्रजाति प्रमुख होते।
1: सबसे पहले मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा, पानी एक होता है ताजा पानी, एक होता है खारा पानी। ताजा पानी उसे कहा जाता है जिसको मीठा जल, और खारा पानी उसे कहा जाता है जिसमें सैलिनिटी का मात्रा ज्यादा हो, जैसे समुद्री पानी। तो इसमें सादा पानी में हम सभी किसान भाइयों को पता है हमारे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है, ऐसा स्टेट है जहाँ समुन्दर नहीं है, जहाँ सादा पानी है। तो इसमें जैसे कि मछलियों का महत्वपूर्ण चयन होता है, तो सादा पानी में जैसे कि एक अच्छा प्रजाति है कतला, रोहा, मिर्गल, कॉमन कार्प, तिलापिया, एक ऐसे प्रजाति है जो मीठे पानी में पाला जाता है और इसका ग्रोथ रेट बहुत फास्ट है, मार्केट में इसका दाम बहुत ज़्यादा है और इसको जो कस्टमर हैं ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। और खारा पानी, खारा पानी जैसे समंदर का पानी हो गया, उसमें जो प्रजाति के चयन करते हैं जैसे कि सी बास एक ऐसी प्रजाति है, मिल्क फिश या प्रॉन जिसे झींगा कहा जाता है, इसे खारा पानी में पाया जाता है और इसको खारा पानी में ही इसका उत्पादन होता है, या पालन बोल लीजिए या कल्चर बोल लीजिए।
0: जी, मछली पालन करत बखत का बात की हमला ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी होते।
1: सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, अगर आप मछली पालन कर रहे हैं अगर या आगे करना चाहते हैं तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो ध्यान रखना चाहिए, पहला चीज़ ये है कि पानी का गुणवत्ता। अगर पानी का गुणवत्ता सही नहीं रहा, जैसे कि हम इंसान हैं, अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, वैसे ही एक मछली भी एक जीव है, वो भी एक प्रजाति है, उसको भी जीने के लिए शुद्ध पानी, अच्छा गुणवत्ता का पानी चाहिए जिससे मछली अच्छे से ग्रोथ हो सके, अच्छे से रह सके। इसलिए पानी का गुणवत्ता बहुत ही अति आवश्यक है। स्वस्थ मछली का चयन, जैसे कि हम मछली लाते हैं खरीद के कहीं हैचरी से, तो मछली जो सिलेक्ट करते हैं वो स्वस्थ होना चाहिए, उसमें कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। तो स्वस्थ मछली का चयन से हमारा स्वस्थ तालाब रहेगा, अच्छे से अच्छा आमदनी होगा। सही आहार और पोषण, अगर हम मछली को सही आहार या उसको पोषण तत्व या भोजन देंगे तो उसका ग्रोथ रेट बहुत जल्दी होगा। रोग प्रबंधक और नियमित निगरानी, हमें हमेशा उसको निगरानी देखना है कि उसे डिसीज या कोई उसे बीमारी तो नहीं फैल रहा है। बस यही चीज़ ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है किसान भाई मछली पालन के लिए।
0: जी अच्छा बसंत जी, एक जो शब्द आते मिश्रित मछली पालन, तो ये विषय में थोड़कुन विस्तार ले बताते हैं हमारे संगवारी मल्ला कि मिश्रित मछली पालन का हरे और एकर का लाभ हमन ले सकथन।
1: जी जी मैम, मिश्रित मछली पालन में तालाब का विभिन्न प्रजाति का मछली एक साथ पाला जाता है। जैसे कि मैं आप किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, एक तालाब है उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन मछलियों की अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं, जैसे कुछ मछली सतह में रहती है, कुछ मछली मध्य या कॉलम में रहती है, या कुछ जो नीचे बॉटम में रहती है। तो अलग अलग प्रजाति की मछली अलग अलग जगह में रहती हैं लेकिन एक ही तालाब में रहती है। एक तालाब मतलब एक पानी है भरा हुआ है, उसमें तीन लेयर, एक सतह बोल लीजिए, एक कॉलम बोल लीजिए, एक बॉटम बोल लीजिए। तो हम विभिन्न मिश्रित मछली मतलब अलग अलग, जैसे हम लोग 100% मान लीजिए, 100% को अगर हम किसी पानी में कुछ उसको परसेंट में बांट दें तो कतला, रोहू, मिर्गल ये अलग अलग प्रजाति है, लेकिन हम लोग को एक ही तालाब में मछली पालन करना है तो 30% हम रोहू मछली को डाल लेंगे, 30% हम कतला मछली को डाल लेंगे, 40% हम मिर्गल मछली को डाल लेंगे। तो इससे क्या फायदा होगा कि तालाब का जगह और भोजन का सही उपयोग होता है और उत्पादन भी बढ़ता है। मतलब एक ही तालाब में हम 3 प्रजाति का मछली को एक ही साथ पालन करते हैं तो तालाब का जगह के साथ साथ भोजन का सही उपयोग होता है और हमारा किसान भाइयों का उससे उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो सकता है।
0: जी बसंत जी, अभी जैसे आपन बड़ सुघर तरीका ले बताया कि हम एक ही जगह में 3 अलग अलग प्रकार के मछली के पालन करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकतन। अब बात आती है मछली मन के प्रजाति के चयन की, तो आपन अभी बीच में गोट करे हो संगवारी मतलब बतात रहे हो, तो बताया कि भाई रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले जन मछली मन होते हो मन मैंने रोग बीमारी ले लड़ सकते, तो ये विषय में बताते हो कि मछली मन में रोग प्रतिरोधक क्षमता होना काबर महत्ता रखते।
1: रोग प्रतिरोध मछली बीमारी से बचाता है जिससे मछली पालन सफल और नुकसान कम होता है। मैं आप किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, मछली पालन एक ऐसी तकनीकी है, ऐसा एक पालन है जिसमें बीमारी आमतौर पर बहुत ही जल्दी लगता है। मछली एक नाजुक होता है या सेंसिटिव बोलना चाहिए, उसको बहुत ही जल्दी बीमारी पकड़ लेता है। अगर उसको बीमारी से बचने के लिए तो हमें सही चीज या सही मछली का चयन करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि कुछ कुछ मछली में प्रजाति होती हैं जो हार्डी नेचर के होते हैं, जिससे उनमें बहुत ही सहनशीलता होता है, छोटे मोटे रोग प्रतिरोध या बीमारी बोलना चाहिए उससे वो उस मछली को कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसलिए हम जब मछली का चयन करते हैं तो ऐसे मछली का चयन करना चाहिए जो हार्डी नेचर का मछली हो, जैसे कतला हो गया, तेलापिया हो गया, पंगास हो गया, ये सब मछली जो प्रजातियां हैं ये बहुत ही हार्डी नेचर की हैं। इनको ये सब प्रजाति के मछली इनके में रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत ही ज़्यादा होता है।
0: जी अब बसंत जी, जाती बिराती हमारे संगवारी मल्ला आप मन का विशेष बात बताना चाहूँ जिन किसान संगवारी मन मछली पालन करा थे या करना चाहते।
1: मैं किसान भाइयों को यही चीज़ बताना चाहूँगा, मछली पालन महत्वपूर्ण क्यों है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मछली तो पहला चीज़ ये है, मछली में प्रोटीन युक्त भोजन प्रदान करता है। पहला चीज मछली सभी को प्रोटीन के रूप में लेना चाहिए, उसमें प्रोटीन का भरपूर मात्रा होता है और मछली पालन करने से रोजगार उत्पन्न होता है, आमदनी बढ़ता है, किसान का आय को दुगना करता है, पर्यावरण और जीव विविधता को सुरक्षा में मदद करता है और इससे किसान का उज्जवल भविष्य भी हो सकता है मछली पालन करने से, कम लागत ज़्यादा मुनाफा।
0: जी बसंत सेन जी, आप मन आयो बड़ सुघर तरीका ले बड़ विस्तार ले हमारे संगवारी मल्ला ये विषय में बताए कि भाई लाभदायक मछली प्रजाति कौन कौन से है जेकर हमारे किसान संगवारी मन चुनाव करके लाभ ले सकते हैं। ये सारी जानकारी खातिर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैडम।
2: संगवारी हो, अभी आज के सलाह में हमन सुनिन जानकारी किसानों के लिए मछलियों के लाभदायक प्रजातियों का सही चुनाव। बतावत रहिन बसंत सिंह, सहायक प्राध्यापक पॉलिटेक्निक मत्स्य पालन धमधा। इकर संग गोट बात करत रहिन मोनिका जैन।
3: सरिता, अब संगवारी मैंने बता देते ये सूचना। संगवारी हो, अवैया शुक्रवार 22 मई के प्रसारित हो या हेलो चौपाल कार्यक्रम के विषय हो ही खेती किसानी के समय किसान मनला देवैया होइया चर्म रोग और सावधानी, ये संबंध में आप मन के समस्या और जिज्ञासा के समाधान पर हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हुई डॉक्टर मृत्युंजय सिंह, चर्म रोग विशेषज्ञ मेकाहारा रायपुर। आप मन के जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए पर आप मन हमारे तीर फोन कर सकते हो। हमारे फ़ोन नंबर है 4003482, 4003483 और तीसरा फ़ोन नंबर है 4003484। रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग शुक्रवार 22 मई के 11:30 ले 12 बजे तक करे जाही और ये कार्यक्रम के प्रसारण शुक्रवार के संझा 7:30 में करे जाही। हमला आप मन के फ़ोन कॉल के अगुरा रही संगवारी हो, सूचना समाप्त हुई। सब का विचार है सरिता तेलना
2: भाई, अब बेरा हो गया प्रश्न मंच।
3: हाँ, संगवारी मन लागू रहे कृषक प्रश्न मंच क्रम के,
2: तब बता देथन हमार पहली सवाल।
3: हाँ
2: संगवारी हो, हमार सवाल है आज के, छत्तीसगढ़ में मछली पालन पर लाभदायक प्रजाति कौन कौन से
3: है। एक बेरा वो पढ़ ले सरिता कहूँ संगवारी मन के छूट गई हुई तो मिला ली।
2: संगवारी हो, छत्तीसगढ़ में मछली पालन पर लाभदायक प्रजाति कौन कौन से है। ये प्रश्न के सही जवाब आपला एक हफ्ता के भीतर हमला भेज देना है अवैया बुधवार तक,
3: ताकि बेरा में आपन के नाम जो है शामिल हो सके। हाँ।
2: पिछले हफ्ता जो पूछे गए प्रश्न रही से वो रही गर्मी में पारंपरिक पेय पदार्थ कौन कौन से हरे, और एक सही उत्तर है संगवारी हो आम पना, गन्ना रस, दही, मही, छाछ, पुदीना, शरबत, जलजीरा। और ये सही जवाब लिख के हमर तीर भेजे हैं मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू, ग्राम चचेड़ी लोरमी ले हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी, बठेना पाटन जिला दुर्ग ले हैं बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, मुरली, नीरा वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, कांकेर संबलपुर ले हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव मन।
3: ये सब संगवारी मैंने बहुत बहुत बधाई, इखर जवाब जो है सही है। अब सुनथन गीत उमेन मोहबटिया और उखर संगवारी मन के स्वर में।

0: और सरिता अब ये गीत के संग अब होते जाए के बेरा तो जाए के पहली काली कार्यक्रम बता देते हैं संगवारी मल्ला काली चौपाल में हो ही डेयरी संयंत्र निर्माण पर आवश्यक जानकारी बताही डॉक्टर सुभाष कुमार वर्मा और संगे संगीत संगीत भी हो ही क्रम कृषक प्रश्न मंच क्रम भी हो ही तो संगी हो देव अविता कार्यक्रम सुनिए जम्मू संगवारी मल्ला विनीता
1: और सरिता के
0: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं, लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहले सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा ये गीत। संगीतकार हैं जतिन ललित, फिल्म का नाम है यस बॉस।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की आवाजों में। जावेद अख्तर का लिखा गीत है, संगीत है जतिन ललित का।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए चलते चलते फिल्म का ये गीत अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं जतिन ललित।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का। ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं कमलेश शर्मा। कार्यक्रम में पहले सुनिए कमलेश शर्मा की आवाज में ये रचना।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आगामी शुक्रवार 22 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा खेती किसानी के समय किसानों को होने वाले चर्म रोग एवं सावधानियां। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मृत्युंजय सिंह, चर्म रोग विशेषज्ञ, मेकाहारा, रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा पहला फ़ोन नंबर है 4003482। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 4003483। हमारा तीसरा फ़ोन नंबर है 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 22 मई 2026 को 11:30 बजे से लेकर 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही संध्या 7:30 में किया जाएगा। हमें आपकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कमलेश शर्मा का की आवाज़ में ये रचना।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार थे कमलेश शर्मा। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 होने को हैं। स्पोर्ट्स कैन कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

नमस्कार, मैं हूं शक्ति सिंह और स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का ताजा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की पूरी खबर और सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं खेल की हर बात स्पोर्ट्स कैन के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। कल राजस्थान रॉयल्स ने जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने सेपक टकराव विश्व कप के क्वाड्रेंट में रजत पदक अपने नाम किया। आर्सेनल एफसी ने प्रीमियर लीग फुटबॉल का खिताब जीता। रूपा बायन ने 9वीं एशियाई टाइकंडो पुमसे चैंपियनशिप 2026 में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अश्मिता चाहिला, देविका सिहाग और मालविका बंसोड़ मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची।

0: आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता के ईडन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जा रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक मुंबई ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अपने दोनों मैच जीतना भी चाहती है और उसके बाद उसको अन्य कुछ टीमों के परिणामों पे भी काफ़ी हद तक निर्भर रहना पड़ेगा। और इससे पहले कल राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा कर जीत अपने नाम की। सुनते हैं इस मैच पर एक विस्तृत रिपोर्ट।
1: जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कल युवा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जमकर गरजा। राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज कर राजस्थान अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। इस जीत के साथ आरआर प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बनने की सबसे मजबूत दावेदार बन रही है। मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 220 रन बनाए। मिचेल मार्श ने जॉश इंग्लिस के साथ पहले विकेट के लिए 50 गेंदों में 109 रन की शानदार साझेदारी की। इंग्लिश 29 गेंद में 60 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद मिचेल मार्श थोड़े दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुए और सिर्फ 4 रन से शतक से चूक गए। मार्श ने 57 गेंद में 96 रन की पारी खेली। आरआर से यश राज ने 2 और जोफ्रा आर्चर ने 1 विकेट लिया। करो या मरो के मुकाबले में इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स को भी यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 39 गेंदों में 75 रन की साझेदारी की। जायसवाल 23 गेंद में 43 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद सूर्यवंशी ने ध्रुव जुरेल के साथ दूसरे विकेट के लिए 45 गेंद में 105 रन जुटाए और टीम की जीत की राह आसान कर दी। सूर्यवंशी ने 38 गेंद पर 10 छक्कों और 7 चौकों की मदद से ताबड़तोड़ 93 रन की पारी खेली। इसके बाद ध्रुव जुरेल ने मोर्चा संभालते हुए 38 गेंद में 53 रन की नाबाद पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई। लखनऊ की ओर से आकाश महाराज और मोहसिन खान ने 1-1 विकेट लिए। वैभव सूर्यवंशी को उनके शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब अगर रॉयल्स की टीम 24 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत दर्ज करती है तो प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी और अंतिम टीम बन जाएगी, जबकि लखनऊ पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो कहा जा सकता है कि वैभव की तूफानी पारी ने प्लेऑफ की दौड़ को और रोमांचक बना दिया। और प्लेऑफ के सभी समीकरणों पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी कमल मौजूद हैं स्टूडियो में। कमल, अब तो इंतजार की इंतहा हो गई है और चौथी टीम अब तक आईपीएल को मिलती नजर नहीं आ रही है, क्या कहते हैं आपके समीकरण?
2: जी शक्ति, बिल्कुल, क्योंकि आईपीएल में जो जद्दोजहद इतने लंबे दिनों तक मैचों की होती है वो प्लेऑफ की ही रेस के लिए होती है, और प्लेऑफ की रेस के लिए हमारे सुनने वाले सभी इस बात को जानते ही हैं कि जो हमारी तीन टीमें हैं वो पहले ही इस प्लेऑफ में अपनी दावेदारी पूरी तरह से मजबूत कर चुकी हैं, लेकिन अब जो प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है, वो है चौथे पायदान के लिए। तो चौथे पायदान में जो मजबूत दावेदार है, जैसा कि अभी हमने इस खास रिपोर्ट में भी प्रशांत जी की सुना कि जो कल का मैच रहा, हालिया जो राजस्थान रॉयल्स की जीत रही और 14 अंक उन्होंने इस जीत के साथ हासिल कर लिए हैं, तो सबसे मजबूत दावेदार तो वही समझी जा रही है। और उसके बाद जो और टीमें बचती हैं, जिसमें पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स, ये भी गणितीय रूप से तो अभी दावेदार बनती ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि 13 अंक हमारे पास अभी पंजाब किंग्स के हैं और चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के 12-12 अंक हैं। तो देखना होगा शक्ति कि कौन सी टीम वे दावेदारी करती है, लेकिन हाँ, राजस्थान रॉयल्स की दावेदारी अभी मजबूत नज़र आ रही है। अगर हम ऊपर की टीमों की बात करें, तीन जो टीमें हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, तो उनके 18 अंक हैं, सबसे ऊपर की जो मजबूत टीम है वो पहले ही समझी जा रही थी और उनके प्रदर्शन के बाद अब उन्होंने अपनी मजबूत दावेदारी पहले नंबर पर हासिल की है। दूसरा जो सनराइजर्स हैदराबाद है, और उसके अलावा जो तीसरी टीम गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद है, ये दोनों टीमें बराबर बराबर 16-16 अंकों के साथ दूसरे और तीसरे नंबर यानी बराबरी पर ही हैं। तो खैर, अब देखते हैं कि आगे आने वाला जो चौथा नंबर का पायदान है वो कितना रोमांचक

0: रोचक होता है और कौन सी टीम प्लेऑफ में अपनी जगह बनाती है।
1: जी बिल्कुल कमल, 5 मैच बचे हैं और चौथी टीम की तलाश है, तो दिन तो ज़्यादा नहीं बचे हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि बहुत ही जल्दी इस सीज़न को अपनी चौथी प्लेऑफ की टीम भी मिलते हुए नज़र आएगी। और अब क्रिकेट के बाद चलते हैं एक ऐसे रोचक खेल की तरफ जिसने सबका ध्यान अपने उत्साह से अपनी तरफ मोड़ा है, और भारतीय टीम ने कल कुआलालंपुर में सेपक टकराव विश्व कप के क्वाड्रेंट में रजत पदक जीत कर इतिहास रच दिया।
2: कुआलालंपुर के टिटवांगसा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत को भले ही हार का सामना करना पड़ा, लेकिन टीम ने पूरी प्रतियोगिता में अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत रजत पदक अपने नाम किया। भारत को हराकर मलेशिया ने पहली बार सेपेक टकराव विश्व कप के क्वाड्रेंट का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले खेले गए ग्रुप मुकाबले में भी मलेशिया ने भारत को हराया था। भारत को फाइनल मुकाबले में मलेशिया से 15-17 और 10-15 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय खिलाड़ियों ने इस फाइनल मुकाबले में जुझारू प्रदर्शन दिखाया, लेकिन वे रजत पदक की चमक को सोने में बदलने में नाकाम रहे। हालांकि भारत ने पूरी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन दिखाया। भारत ने सेमीफाइनल में म्यांमार को 2-1 से हराया था, जबकि मलेशिया वियतनाम को हराकर फाइनल में पहुंची थी। वहीं क्वार्टर फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे पर 2-0 से जीत दर्ज की थी। किक वॉलीबॉल और फुट वॉलीबॉल के नाम से प्रचलित सेपक टकराव मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया का एक रोमांचक खेल माना जाता है। यह खेल वॉलीबॉल और फुटबॉल का एक अनूठा मिश्रण है, जिसमें खिलाड़ी हाथों का उपयोग किए बिना केवल अपने पैरों, घुटनों, छाती और सिर की मदद से गेंद को नेट के पार भेजते हैं। जहां मैदान पर खिलाड़ियों की ऊर्जा, संतुलन और शरीर के लचीलेपन का एक शानदार तालमेल देखने को मिलता है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: जी एक शानदार तालमेल जहां खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, हुनर और टैलेंट का भी तालमेल दिखाते हैं, और ऐसा ही कुछ तालमेल कल फुटबॉल के मैदान पर देखने को मिला, जहां आर्सेनल एफसी ने प्रीमियर लीग फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। सुनते हैं आर्सेनल की जीत पर ये डिटेल्ड रिपोर्ट।
3: आर्सेनल ने 22 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। मैनचेस्टर सिटी और बॉर्नमाउथ के बीच कल 1-1 से मैच ड्रॉ होने के बाद आर्सेनल को विजेता घोषित किया गया। कल इंग्लैंड के वाइटालिटी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पेप गार्डियोला की टीम को खिताब रेस में बने रहने के लिए हर हाल में जीत चाहिए थी, लेकिन बॉर्नमाउथ के शानदार प्रदर्शन ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैच का सबसे अहम पल 39वें मिनट में आया, जब 19 वर्षीय फ्रेंच खिलाड़ी एली जूनियर क्रूपी ने शानदार गोल कर बॉर्नमाउथ को बढ़त दिलाई। एड्रियन ट्रफर्ट के पास पर क्रूपी ने बेहतरीन पहला टच लिया और फिर एक कर्विंग शॉट लगाकर गेंद को गोल पोस्ट के अंदर पहुंचा दिया। एर्लिंग हॉलैंड ने बराबरी का गोल कर सिटी की वापसी के साथ ही जीत की उम्मीदें जगाई थी, लेकिन मैनचेस्टर की खुशी अधिक समय तक नहीं रह सकी। कुछ ही सेकंड बाद मैच समाप्त होने की घोषणा हुई। आर्सेनल और मैनचेस्टर को अब 1-1 मुकाबला और खेलना है, लेकिन 4 अंकों की बढ़त के कारण आर्सेनल को विजेता घोषित कर दिया गया है। आर्सेनल के मुकाबला हारने या मैनचेस्टर के मुकाबला जीतने से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिकेल आर्टेटा की अगुवाई में आर्सेनल ने शानदार खेल दिखाया। सीजन में आर्सेनल ने कॉर्नर से सबसे ज्यादा गोल करने का प्रीमियर लीग रिकॉर्ड भी बनाया। मैनचेस्टर सिटी और बॉर्नमाउथ के बीच हुए मैच के ड्रॉ होने की खबर आते ही एमिरेट्स स्टेडियम के बाहर हजारों आर्सेनल समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। अब आर्टेटा की टीम के पास इतिहास रचने का एक और मौका है। आर्सेनल 30 मई को बुडापेस्ट में यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल 2025 में पेरिस सेंट जर्मेन एफसी से मुकाबला करेगी। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो यही फुटबॉल की लीग की वो दुनिया है जहां पे रोज सैकड़ों कीर्तिमान बनते हैं और सैकड़ों कीर्तिमान टूटते हैं। और अब फुटबॉल के बाद चलते हैं बैडमिंटन की तरफ, जहां मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में भारत के लिए आज का दिन कुछ अच्छे परिणाम लेकर आता हुआ नहीं नज़र आया। और अगर देखा जाए तो अश्मिता चाहिला, देविका सिहाग और मालविका बंसोड प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए हैं। हालांकि भारत की मुख्य उम्मीद लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय का सफर आज इस प्रतियोगिता में समाप्त हो गया। और अब इस उम्मीदों की डोर को लेकर चलते हैं उलान बटोर की तरफ, जहां रूपा बायर ने मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित 9वीं एशियाई टाइकेंडो पुमसे चैंपियनशिप 2026 में कांस्य पदक अपने नाम किया है। इस पदक के साथ बायर ने एशियाई टाइकेंडो चैंपियनशिप में लगातार 2 पदक जीतने वाली

0: को।
1: किस तरीके का आपका अनुभव रहा जब आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता?
0: एक्सपीरियंस तो मेरा काफी अच्छा रहा था क्योंकि मैंने बैक टू बैक इस बार मारा था। मैंने तो क्योंकि 8 एशियन चैंपियनशिप में भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल मारा था और आफ्टर 2 इयर्स बैक अब ये 9 एशियन चैंपियनशिप में भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल मारा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो और मेरा कॉन्फिडेंट लगता है नेक्स्ट टाइम और मैं अच्छे कर सकता हूँ, तो मुझे थोड़ा ऐसा फील बहुत अच्छा आ रहा है।
1: किस तरीके से आपकी तैयारी रही है?
0: तैयारी तो मेरे लिए बहुत लंबा प्रोसेस था, बट इसमें मेरा सिर्फ फिजिकल या मेंटल सिर्फ नहीं था, मेरा बहुत और बहुत जनों का कंट्रीब्यूट भी था, क्योंकि मेरे लिए भी ये आसान नहीं था, इजी नहीं था इतना लंबा जो आना, तो इसीलिए उसपे काफी मेहनत रहा है मेरा कोच का, और हमारा फोकस एक जगह पे टिका रहा कि हमें ये करना है।
1: आप थोड़ा सा ताइक्वांडो खेल के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि किस तरीके से ये खेल बाकी खेलों से अलग है।
0: टेकोंडो जो है कोरिया का नेशनल गेम्स है, इसमें डिफरेंट वही है कि टेकोंडो में क्यूरिगी और फुमसे जो है डिफरेंट वही है कि क्यूरिगी में वो फाइटिंग होता है, एक दूसरे को फाइट करता है, बट फुमसे का डिफरेंट वही है कि हम परफॉर्म करता है एक दूसरे में।
1: इस साल आपको एशियन गेम्स भी खेलने हैं, तो किस तरीके की आपकी
0: जी
1: तैयारी है?
0: अभी तो फिलहाल मेरा तैयारी है, वापस जाएंगे इंडिया, इंडिया जाने के बाद मेरा तैयारी तो 21 से मैंने स्टार्ट कर दिया था, 2021 से अभी होपफुली हमारे जो प्लानिंग का हिसाब से अभी होंगे तो और अच्छा रहेंगे। अभी जाएंगे वापस, फिर वापस अपना ट्रेनिंग चालू करेंगे, तो अपना जो प्लानिंग है शेड्यूल है उस हिसाब से करेंगे, तो उसके लिए और ज्यादा मुझे डबल काम करना है।
1: आपकी ट्रेनिंग और तैयारियों के लिए सरकार आपकी किस तरीके से मदद कर रही है?
0: भारत सरकार मुझे काफी हेल्प कर रहा है, क्योंकि मुझे अभी हमारे लिए सबसे वो होता है कि फाइनेंशियल में मुझे काफी इश्यू होता है, तो हम चैंपियनशिप में आना जाना, मुझे रहना खाना और मुझे ट्रैवल करना या टिकट, ये सब में काफी हेल्प कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं बहुत थैंक यू हूँ।
2: जी बिल्कुल, बहुत बहुत आभार आपका भी रूपा। और स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम से जुड़ी आप और आपने अपने अनुभव साझा किए, और ये दूसरा मौका है जब आप जुड़ी हैं और ये दूसरी उपलब्धि है जब आप हमारे साथ जुड़ी इस कार्यक्रम में, और हमें उम्मीद होगी कि आप आगे भी ऐसे ही कुछ और पदक जिनकी चमक इससे और ज़्यादा उज्ज्वल हो उनके साथ देश का नाम रोशन करें और हमारे कार्यक्रम के साथ अपने अनुभव साझा करती रहें। और इसी तरह की एक उपलब्धि हॉकी की फील्ड से कोच बलदेव सिंह ने हासिल की है, जिनको 25 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत करेंगी। 75 वर्षीय बलदेव ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के पास स्थित एक छोटे से शहर शाहबाद मारकंडा को हॉकी का एक एपिसेंटर बना दिया है, जहां से खिलाड़ी आ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ओलंपिक पे, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और शानदार प्रदर्शन लेकर के इस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इन पर भी बात की जाएगी हमारे आने वाले अंक में। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com यानी sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन,

0: और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 96 रुपए और 83 पैसे पर बंद हुआ।

0: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defence and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honour, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
3: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
2: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-29 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Center and noted that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defense sector.
3: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
2: Mr. Modi stressed that India and Italy are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and underlined the need for strong action against terror financing networks.
3: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
2: Speaking on the occasion, Italian Prime Minister Meloni emphasized the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific and strengthening cooperation across key sectors.
4: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our time, existing rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom on navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
2: Prime Minister Modi also called on Italian President Sergio Mattarella and held discussions on further expanding the bilateral partnership in areas such as trade, technology, clean energy and culture. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization FAO at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Chu Dongyu. Receiving the award, Mr. Modi dedicated the honor to India's millions of farmers, livestock rearers, fish farmers, agricultural scientists and workers. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
3: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
2: The Agricola Medal is the highest honor conferred by the Director General of the FAO. It is awarded to distinguished world leaders and individuals for exceptional and long-term contributions to global food security, sustainable agriculture, poverty reduction and improved nutrition. Mr. Modi reached Italy yesterday on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Defence Minister Rajnath Singh has termed Operation Sindoor as a testament to India's transformation into a strong, confident and capable nation. Interacting with the Indian diaspora of South Korea in Seoul, the Defence Minister said the operation was proof that India will not tolerate terrorism in any form.
5: India's policy today is not reactive but proactive. Personally, I also believe that national security will not be compromised at any cost. With this vision, India is rapidly promoting indigenous defense manufacturing. Before 2014, our total defense production used to be approximately worth 44,000-55,000 crores. Today, it has increased to 1,54,000 crores, and within the next month, it is expected to reach nearly 1,75,000 crores.
6: 1,75,000 crore aap dekhne ko milega.
2: The Defence Minister also chaired the India-South Korea Defence Industry Business Roundtable in Seoul. Speaking on the occasion, Mr. Singh said the two countries can jointly develop and produce advanced technologies and defence systems for the future. During the event, two agreements were also signed, signalling a promising future for India-Korea Defence Innovation and Technology Partnership. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at the rate AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari announced immediate initiation of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under the Citizenship Amendment Act or CAA. The Chief Minister made the announcement at State Secretariat Nabana during a land handover ceremony to the Border Security Force BSF for border fencing. He said infiltrators identified in the state would now be directly handed over to the BSF for further action in coordination with the Border Guards Bangladesh. Mr. Adhikari clarified that no action would be taken against members of the seven communities protected under the CAA, provided they had entered India before 31st of December 2024. Repolling in the Falta Assembly constituency of South 24 Parganas district in West Bengal will be held tomorrow. Six candidates, including two independents, are in the fray. Trinamool Congress candidate Jahangir Khan yesterday withdrew his nomination from the contest. However, his name will remain on the ballot as the deadline for withdrawal of nominations has already passed. The Election Commission had earlier declared the polling held on 29th of April in Falta void over allegations of large-scale malpractice and ordered a fresh poll in all 285 booths. The counting of votes will take place on the 24th of this month. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has stressed the need for heightened vigilance and foolproof security arrangements to ensure a safe, secure and fair conduct of the upcoming NEET UG re-examination. Mr. Pradhan said this while chairing a high-level review meeting with Central Security and Intelligence Agencies in New Delhi today. The NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical education will be held on the 21st of June. During the meeting, serious concerns were also raised over the growing spread of misinformation related to competitive examinations through anonymous online groups. Mr. Pradhan directed a focused crackdown on such networks, including proactive identification, blocking and taking down of channels spreading fake information. Meanwhile, a Delhi court has sent the five accused in the NEET paper leak case to judicial custody till the 2nd of next month. India is set to remain the world's fastest growing major economy as the United Nations, UN in its report, projected a growth rate of 6.4% this year for the country despite global uncertainty caused by the West Asia conflict. UN senior economist Ingo Peterle, briefing reporters on the media update on the World Economic Situation and Prospects report yesterday, said India's strong consumer demand, public investment and growth in services exports continue to support its economy. Director of UN's Economic Analysis and Policy Division, Shantanu Mukherjee, also noted that India's diversified energy sources, strong refining capacity, large foreign exchange reserves and

0: अस्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: कार्यक्रम में लीजिए सुनिए रांझणा फिल्म का गीत जावेद अली और कीर्ति सगठिया और पूजा की आवाजों में। इरशाद कामिल के लिखे बोल हैं, संगीत है यार रहमान का।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए तमाशा फिल्म का गीत अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाजों में। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है AR रहमान ने।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:30 होने को हैं। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम। कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: चर्चा का विषय है।

0: बीते कुछ वर्षों में दुनिया ने एक बदलाव महसूस किया है, एक ऐसा बदलाव जहां भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक आवाज बनकर उभरा है। कूटनीति के नए आयाम, विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य और विश्वसनीयता का प्रतीक हैं। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है, मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। मई 2026 का महीना भारत के राजनयिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे, तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: कहानी यही नहीं रुकी, इसके ठीक अगले ही दिन यानी 18 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का शाही महल एक और इतिहास का गवाह बना। नॉर्वे के राजा किंग हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से विभूषित किया। दो नॉर्डिक देशों से मिले इन सम्मानों ने साबित कर दिया कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच की साझेदारी अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2014 में शुरू हुआ ये कूटनीतिक सफर साल 2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों को वैश्विक पहचान मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया। इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। वर्ष 2019 तो जैसे वैश्विक पुरस्कारों का वर्ष बन गया। दुनिया के नक्शे पर भारत की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा था ये इन पुरस्कारों की सूची देखकर समझ आता है। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन और बहरीन का किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा शामिल रहा। 2019 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। जब साल 2020 में पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही थी तब भारत की वैक्सीन मैत्री ने दुनिया का दिल जीता। इसी दौरान अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 2021 में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से भारत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। साल 2023 में जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था और उसी वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पैर छूकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा। इसी तरह फिजी ने कमियान ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और मिस्र ने अपना ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। वर्ष 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद ग्रीस ने भी उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया। साल 2024 और 25 में तो ये फहरिस्त और लंबी हो गई। नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान और कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर उन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद साल 2025 में बारबाडोस श्रीलंका का मित्र विभूषण, मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन उन्हें प्रदान किया गया। घाना ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ट्रिनिडाद और टोबैगो ने द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, और ब्राजील ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से भारत के बढ़ते कदमों का स्वागत किया। इसके अलावा ओमान की तरफ से फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान और इथियोपिया की तरफ से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। साल 2026 की शुरुआत में ही इसराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया। इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण संकट हो, वैश्विक शांति की बात हो या आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो, दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष मिले ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के कड़े परिश्रम, हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है। विदेशी कूटनीति में क्या 2014 के बाद भारत ने विशेष हासिल किया है जिसे भारत अब दुनिया के मानचित्र में अब एक मजबूत स्तंभ बन गया है, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
2: जी। धन्यवाद।
3: धन्यवाद आनंद जी।
0: अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है इसमें वो UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में हुए तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थ वर्ड टर्न है यानी उत्तर की ओर जो रुख है, उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा को आप?
4: हम अभी देख रहे हैं जो ये जो यात्रा है वो उनकी नॉर्डिक देशों में है, तो इसमें कहा जाए जो ये नॉर्थ वर्ड हम टर्न देख रहे हैं, परंतु ये तो हम जानते ही हैं जो भारत तो एक जिसे कहा जाए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए हैं जब भारत G20 की चेयर हमने संभाली थी 2023 में। परंतु इसको छोड़ते हुए मैं कहूंगा जो भारत की जो की कूटनीति है, अगर हम 2014 के बाद से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में लगी है और हम इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये नॉर्डिक देशों का संबंध है, आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं 2018 में जैसे कहा जाए पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपेनहेगन में, और अब तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु पहलगाम के इंसिडेंट के होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात हैं पूरे विश्व में विश्व की जो चुनौतियां हैं, जो चाहे हम जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आगे कैसे ले जाया जाए, और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, इनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू थे और इस पर बातचीत हुई। और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में।
0: चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत के विदेशी कूटनीति के आइकॉनिक मोमेंट्स की, और उसमें जो सबसे बड़ा मोमेंट्स था मदन जी वो G20 का जो हमने मेजबानी की। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 समिट नई दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से दुनिया भर में सराहा गया। आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम किया, उसने वैश्विक कूटनीति में भारत का कद किस तरह बढ़ाया?
2: अगर हम G20 की बात करें, एक तो ये बहुत बड़ा सफल आयोजन था, ये तो निश्चित रूप से था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हुई कि ग्लोबल साउथ की आवाज

भारत ने मजबूती के साथ बुलंद किया और जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीकी देश हैं, उनको G20 की सदस्यता दिलाने में सफलता हासिल की। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। दुनिया में एकमात्र देश है जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। इसमें करीब 100 से भी ज्यादा देश आ जाते हैं। पूरा अफ्रीका रीजन इसमें आ जाता है। नॉर्थ

0: आवाज बहुत पहले उठाए जाने की जरूरत थी, और ये पहल कायदे से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने एक बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है उसने इन देशों की आवाज को उठाकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जो वसुधैव कुटुंबकम, और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
1: Dr. Nkrumah had said, and I quote, I am not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me. In the same way, India carries Africa in its heart. India and Africa share a dream where every child gets opportunities. Where every voice is heard, where nations rise together, not apart. Let us build a partnership, not only for today, but for generations to come.
2: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को यह बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है। आतंकवाद को सिरे से ना करना, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर यह बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
3: भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे, और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया। परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में उन्होंने सोचा जो वो भारत को ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
2: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
1: आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है, और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
2: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
3: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था, और अब जैसे उन्होंने बताया 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने, और हम देख रहे हैं जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा सामने आया है तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसकी भारत ने शुरुआत की है, और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें

0: बायोफ्यूल्स अलायंस है, जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। एक तो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए। तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद विश्व में और भी इससे ऊंचा हुआ है।
1: This is the inaugural day of a defining global conference on climate change. We want to bring solar energy into our lives. We will share knowledge and exchange best practices. We will cooperate on training and building institutions. We will discuss regulatory issues and promote common standards. We will attract investment in the solar sector, encourage joint ventures, and develop innovative financing mechanisms. We will partner with other international initiatives on renewable energy. There is already a revolution in solar energy. Technology is evolving, costs are coming down, and grid connectivity is improving. It is making the dream of universal access to clean energy become more real.
2: मदन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं। COVID-19 और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही। जब COVID-19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई, वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत की इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया, उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
3: जब कोविड काल चल रहा था तो 100 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी। हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे और 100 से ज़्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उसमें से ज़्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी। तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूँगा। और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो, चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है। और लॉन्ग टर्म में अगर इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भारत ने उठाई, उसके बाद UN सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है। भारत को उतना फायदा नहीं होने वाला, दूसरे देशों को ज़्यादा होगा अगर UN में सुधार होते हैं। ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जब ये भरोसा बढ़ता है, और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है।
2: अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते। भारत ने हाल में UAE, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब FTA के नाम से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
0: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है, उनके साथ किए हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं। वो तीसरे नंबर पर है, जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है। और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है। यूरोपियन यूनियन, तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे, और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं जो इस साल के

0: शुरू में फरवरी में हमने देखा 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है, और इसको वहां की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेन, उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था। इसका इतना व्यापक रूप है। ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ जो चार देश हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जैसे मैं पहले बोल रहा था आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं है और ये एफ्टा के सदस्य हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिख्टेनस्टाइन, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है जिसमें $100 बिलियन भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में, जिससे 10 लाख जॉब यहाँ पर क्रिएट होंगे। इसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ये सब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं जो कि मेरे विचार से विन विन अग्रीमेंट्स होंगे, ये इन सभी देशों के लिए भी और भारत के लिए भी।
1: आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
2: अशोक जी, फॉरेन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी काफी चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का युग नहीं है, पूरी दुनिया में ये गूंजा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना भारत की परिपक्व होती कूटनीति का कितना बड़ा प्रमाण रहा।
0: डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक अटोनमी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे और हम किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे, जो वो हमें बताए, भारत को बताए जो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आप इसमें क्या करिए। तो इसीलिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा पहले भारत के ऊपर, जो आप तेल मत खरीदिए रूस से, परंतु भारत ने ये बता दिया, भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो इसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बनाए रखे और ये भी बनाए रखा, परंतु ऐसा नहीं किया जो हमने अपने संबंध और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खराब कर दिए। और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया, जो अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसीलिए भारत ने ये बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए, ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो केवल वो ट्रांजैक्शनल नहीं है जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
1: विद यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग ग्रेट पेन इन द रीजन, सिंस इट इन्वॉल्व्स मेजर पावर्स, द आउटकम्स are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
2: अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का, हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की भूमिका निभा रही है, कैसे देखते हैं आप?
0: भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है, भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में, क्योंकि सामने हमारे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमको देखना है जो किन देशों के साथ हमको अपना परस्पर सहयोग बढ़ाना है, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है, और वही हम

0: कर रहे हैं, चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु फिर भी हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सकें, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारत की कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
1: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।
2: कभी दुनिया के मंच पर भारत को सिर्फ एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों तक मदद पहुंचाने का संकल्प, भारत ने हर बार ये साबित किया है कि नई सदी की कूटनीति केवल ताकत से नहीं, विश्वास से चलती है। आज जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है, तो उसकी निगाहें हिंद महासागर के उस किनारे पर टिकती हैं जहां एक लोकतंत्र 140 करोड़ सपनों के साथ विश्व मंच पर आत्मविश्वास से कह रहा है, यह नया भारत है जो मित्रता भी निभाना जानता है और नेतृत्व करना भी जानता है। इसी विश्वास, इसी बढ़ते वैश्विक सम्मान और इसी नई कूटनीतिक यात्रा के साथ मदन जी आपका और अशोक जी आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आभार।
0: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
3: थैंक यू सर।
2: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।
5: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहले सुनिए गाइड फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं SD बर्मन।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए

बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

दिल अपना प्रीत पराई। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

किशोर कुमार की आवाज में लीजिए सुनिए किनारा फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का गाया राग बिहाग में ख्याल। विलंबित एक ताल में रचना के बोल हैं मेरो मन अटकोरी आली, और द्रुत तीन ताल में रचना के बोल हैं अब हो ललन। आपके साथ तबले पर संगतकार हैं गुलाम सुल्तान खान, सारंगी पर हैं लियाकत खान और हारमोनियम पर हैं मशकूर हुसैन। तो लीजिए सुनिए उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का गाया राग बिहाग में ख्याल।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां का गाया राग बिहाग में ख्याल। आपके साथ तबले पर संगतकार थे गुलाम सुल्तान खान, सारंगी पर थे लियाकत खान और हारमोनियम पर संगतकार थे मशकूर हुसैन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को हैं। समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए

0: गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defence, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said, both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Centre and noted that the India-Italy Defence Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defence sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Ki Dong-gyu. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
2: Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has congratulated Prime Minister Narendra Modi for being honored with the Food and Agriculture Organization's Agricola Medal. In a social media post, Mr. Goyal said, "This is an acknowledgement of the immense contributions of India's farmers, fisherfolk, scientists and other workers in the agriculture sector." Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has also expressed happiness over the conferment of FAO's honor to Prime Minister Modi. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today announced immediate initiation of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under the Citizenship Amendment Act or CAA. The Chief Minister made the announcement at State Secretariat Nabanna during a handover ceremony to the Border Security Force for border fencing. He said infiltrators identified in the state would now be directly handed over to the BSF for further action in coordination with the Border Guards Bangladesh. Mr. Adhikari clarified that no action would be taken against members of the seven communities protected under the CAA, provided they had entered India before 31st of December 2024. India is set to remain the world's fastest growing major economy as the United Nations in its report projected a growth rate of 6.4% this year for the country despite global uncertainty caused by the West Asia conflict. UN senior economist Ingo Pitele, briefing reporters on the mid-year update to the World Economic Situation and Prospects report yesterday, said India's strong consumer demand, public investment and growth in services exports continue to support its economy. Cyprus President Nikos Christodoulides, along with a high-level delegation, arrived in Mumbai this evening for a three-day official visit to the country. He was warmly received at the airport by Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma and Chief Minister Devendra Fadnavis. The swearing-in ceremony of the newly elected members of the 16th Puducherry Legislative Assembly was held today at the Assembly Hall. Pro-Tem Speaker A. Anbalagan administered the oath to the newly elected members of the Legislative Assembly. In IPL cricket, Mumbai Indians have set a target of 148 runs for Kolkata Knight Riders at the Eden Gardens in Kolkata tonight. In reply, KKR were 51 for 2 in 6 overs when reports last came in. Put into bat, Mumbai Indians posted 147 runs for the loss of 8 wickets in the allotted 20 overs. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and opted to bowl. Tomorrow, Gujarat Titans and Chennai Super Kings will clash at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad at 7:30 p.m. local time. And that is the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव 305.8 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:10 हुए हैं। हमारे इस सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। इसी फ्रीक्वेंसी पर कल प्रातः 5:53 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद।